0: वंदे मातरम
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 6 बजने को है समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के

0: सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए भोर की पुनीत बेला में अर्चन करें अपनी मातृभूमि और विश्वनाथ प्रभु का भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के माध्यम से। कार्यक्रम का आरंभ हमेशा की तरह मातृवंदना से, जिसे आप सुनेंगे समूह स्वर में।

स्वदेश प्रेम से परिपूर्ण ये रचना अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में। लीजिए अब सुनिए अटूट भक्ति और पूर्ण विश्वास व समर्पण भाव और निराशा को आशा में प्रतिफलित करती ये भक्ति रचना, जिसे स्वर दिया है हरिओम शरण ने।

ये भजन अभी आपने सुना हरिओम शरण के स्वर में। आइए अब करते हैं प्रभु से प्रार्थना जीवन को सार्थक और सफल बनाने की करुण पुकार के साथ। इस भजन के रूप में गायक हैं ओम व्यास।

जीवन के मर्म पर प्रकाश डालती ये वंदना अभी आप सुन रहे थे ओम व्यास के स्वर में। लीजिए अब सुनिए रघुनंदन प्रभु की आराधना हेमंती शुक्ला के स्वर में।

हेमंती शुक्ला के गाए इस भजन के उपरांत कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं महेंद्र कपूर की गाई अरुणेश प्रभु की आरती के साथ।

अभी आप सुन रहे थे दिनकर प्रभु की स्तुति महेंद्र कपूर की आवाज में। इसी के साथ वंदना कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी कार्यक्रम विवरण के पश्चात सुबह 6:35 पर किसान श्रोता सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम। विषय होगा एजेटो वेक्टर कल्चर का उपयोग। सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। गायिका होंगी सविता देवी, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा। चिंतन आप सुनेंगे सुबह 6:50 पर। हिंदी महक श्रृंखला में सुबह 7:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदी काव्य पाठ। कवि होंगे शकील खान। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 8:44 पर, शाम 5:30 पर और रात्रि 8:30 पर। सुबह 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे धारावाहिक गीत गीता। इसका आप सुनेंगे 9वां भाग। शीर्षक होगा राजविद्या राजगुरु योग। लोकरंग कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:00। कलाकार होंगे नंदराम तिवारी और रूपा तिवारी। ढोलक पर होंगे संजय भाटे, बैंजो पर लखनलाल। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और सुबह 10:30 पर सुनिए पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम

0: अवधीय। इन दोनों ही कार्यक्रमों में सहयोग होगा राजेंद्र कुमार अहिरवार का, प्रस्तुतकर्ता होंगे रविन्द्र कुमार प्रजापति। सुबह 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात। दोपहर 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल सभा, इसमें नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे गुलदस्ता क्रम में काव्य पाठ। कवि होंगी डॉक्टर गीतिका पाराशर। रोचक जानकारी में आप जानेंगे साइकिल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सायंकालीन सभा में 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। भजन संध्या में 6:00 सुनिए जगजीत सिंह को। तातु रेगबार और साथी कलाकार होंगे लोकधारा कार्यक्रम में 6:30 पर। ग्रामीण बंधुओं के लिए 7:20 पर होगा ग्राम सभा कार्यक्रम, इसमें आकर्षण होगा धारावाहिक अटकन चटकन। इसके अलावा सुनिए वार्ता हरी खाद का उपयोग एवं लाभ, वार्ताकार होंगे डॉक्टर मनोज कुमार। आज की नसीहत होगी जिसे समझा था हंस वो कौवा निकला। रात्रि 8:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में। रात 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारण करेंगे भारत की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम डगर विकास की। विषय होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार का होगा, प्रस्तुति एवं संयोजन होगा रविन्द्र कुमार प्रजापति का। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे स्पॉटलाइट। रात 9:30 पर होगा अनुगूंज और रात 10:00 अनुप्रसारण करेंगे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा का। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से दोपहर 12:00 आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम में बहने सुनेंगी महिला सभा। दिन में 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और दोपहर 2:00 आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, सुबह 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है खेती किसानी कार्यक्रम।
1: पंच भैया, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं एजेटो वेक्टर जैव उर्वरक के बारे में। कौन सा भैया? एजेटो वेक्टर जैव उर्वरक, जो भी एक ऐसा उर्वरक है भैया कि जो स्वतंत्र जीवी नत्रजन का स्थिरीकरण कर देते है, यानी कि खुद ही वातावरण में मौजूद जो नत्रजन है उखा पौधा की पत्तियों के माध्यम से अपने पौधा में जो गांठे बनाऊ उमे स्थिर करके फिर जमीन में पहुंचा देते है। तो ई की एक और विशेषता है भैया कि ई के 1 ग्राम जैव उर्वरक खा अगर अपन लें तो ई में 10 करोड़ जीवाणु हो। कितने भैया? 1 ग्राम में 10 करोड़ जीवाणु। तो जो बहुत ही अच्छे और तेज उर्वरक है जैव उर्वरक, कोनो भी फसल बस दलहनी भरना हुए दलहनी फसल का छोड़ के कोनो भी फसल में ई जैव उर्वरक एजेटो वेक्टर को अपन उपयोग कर सकते हैं। ई किराने वैज्ञानिक भैया ने जो बताओ है कि एजेटो वेक्टर जो जैव उर्वरक है ई की विशेषता जा है कि भैया 10 से लेकर 20% तक तो पैदावार बढ़ जात और जो अपने फल हैं या दाने हैं उनको जो प्राकृतिक स्वाद है वो बिल्कुल ज्यों को त्यों बनो रात। जो निया के अपन ने जैसे मान लो कचु किसान पंच रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों को प्रयोग करते हैं तो उसे फलन को जो प्राकृतिक स्वाद है वो कछु अलग ही सो लगन लगत। अकेले भैया अगर अपन कछु एजेटो वेक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करें तो प्राकृतिक स्वाद अपन जाको तो मिले। ई को सबसे बड़ा फायदा एक और है कि ई के प्रयोग से 20% से लेकर 30% नाइट्रोजन नत्रजन जो उनका होते ई की भैया बचत।

0: करी जा सकत है, मतलब उनको कम उपयोग अपन करने पड़े। ई के प्रयोग करवे से भैया जो अपनो बीज है उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ जात और ज्यादातर बीज इनको जमा हो जात और अपनी जो फसल फल के रूप में अपन को मिलत है वे स्वस्थ मिले, जड़न को विकास अच्छे हो गए और पौधा में बढ़वार भी अच्छी हो जाए। इन जो फसलन में अपन एजेटो वेक्टर उर्वरक को प्रयोग कर रहे उग फसल में भूमि से फास्फोरस को ज्यादा उपयोग कर लेती जिसे उग भैया कल्ले भी जैसे गेहूं में करें अपन धान में करें अपन तो जो फसल में कल्ला फूटत वे बहुत ज्यादा मात्रा में फूटने लगत, जब कल्ले ज्यादा फूटे तो उत्पादन भी ज्यादा हो गए। जो उर्वरकन के जीवाणु बीमारी फैलावे वाले जो रोगाणु होत उनका भैया नष्ट कर देते जिसे की अपनी फसल में बीमारियों से बचाव हुए और अपने पौधा के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा दी भैया। जो जो एजेटो वेक्टर उर्वरक है वो अपने पौधा के अंदर जाके रोग प्रतिरोधी क्षमता मतलब बीमारियों से लड़ावे की क्षमता बढ़ा दी भैया। ऐसे जैव उर्वरक को प्रयोग करवे से जो जड़े हैं तना हैं उनको खूब विकास हो जिसे पौधा में तेज हवा ज्यादा पानी सूखने की क्षमता और अच्छा उत्पादन अच्छे फूल बढ़ जाते हैं। जे जो उर्वरक हैं जैव उर्वरक जे सस्ते आउत हैं अकेले बस बीज में अपन उपचारित करके इनका प्रयोग करने हैं। इनमें जो सावधानी है वे भी यही है भैया के उखन जब अपन ई जैव उर्वरक से उपचारित करें तो अपन का 10-15 मिनट तक उखन छायरी में सुखा लेने है कि नहीं, धूप में नहीं जाने, ज्यादा गर्म स्थान पे नहीं रखने, नहीं तो इनके जो जीवाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इनमें जब अपन का बीज उपचारित करने हैं तो उके लाने विधि वही है कि अपनो पैकेट जो उनमें के एजेक्टो वेक्टर जो उर्वरक अपन ले हो वो पैकेट का खोले और अपने बीज में थोड़ा सा पानी छिड़क के और उके ऊपर डाल के 50 ग्राम गुड़ के संगे अच्छी प्रकार से उनको घोल तैयार करें, अच्छी बढ़िया साफ जांगा में जहाँ बीज डाले उके ऊपर से इको छिड़काव कर देवे, फिर बीज का अच्छी तरह से उल्टे पलटे जिसे के जोन भी बीज अपन बह रहे उके ऊपर ई एजेक्टो वेक्टर जैव उर्वरक की अच्छी परत जम जाए तो निश्चित है कि अपन का फसल में अच्छा उत्पादन जरूर मिले।
1: अभी किसान श्रोताओं के लिए खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था, विषय था एजेटो वेक्टर कल्चर का उपयोग। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दम भी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आपार चरित्र और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायिका थी सविता देवी, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब करते हैं वैचारिक मंथन आज के चिंतन के द्वारा।
1: आजकल जैसे देखो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग तो ये शिकायत करते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है। शांत रहने के हमारे प्रयासों पर क्रोध भारी पड़ जाता है। फिर भी कुछ धीर गंभीर समझदार लोग अपने क्रोध पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेते हैं। इनके सामने सवाल खड़ा होता है कि हमने तो अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन जब सामने वाला क्रोध करे तब हम कैसे स्वयं को नियंत्रित रखें। सामान्यतः क्रोध तब आता है जब जैसा हमने चाहा वैसा काम नहीं हुआ, अथवा अपनी पसंद और उम्मीद के विपरीत यदि कोई कार्य हो तो हमें सामने वाले पर क्रोध आ जाता है। आप घर पर हों या बाहर, अपने कार्यस्थल पर हों, कोई आप पर क्रोध कर रहा हो तो जो आदमी क्रोध कर रहा है उसके सामने की स्थितियों को हटाएं और क्रोध करने वाले आदमी के पीछे कुछ अज्ञात कारण हैं उन्हें देखें। हो सकता है कि घर से लड़कर आया हो, अथवा परिवार में मतभेद हुआ हो, अथवा परिवार में मतभेद हुआ हो, बच्चों से संबंधित कोई परेशानी हो, तब व्यक्ति कार्यस्थल पर भड़क जाता है। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, परेशानी कार्यस्थल पर होती है, भड़ास घर पर निकलती है गुस्से के रूप में। अच्छा होगा यदि गुस्से के पीछे का कारण ज्ञात कर खुद को समझाएं कि ये जो उबल रहा है गुस्से में हुआ है। वास्तव में व्यक्ति जब परेशानी में हो तो खुद को अकेला महसूस करता है एवं घबरा जाता है। जब उसे कुछ समाधान समझ में नहीं आता तो गुस्सा करके वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता है। वास्तव में क्रोध क्रिया नहीं प्रतिक्रिया है। जब दूसरा क्रोध कर रहा हो तो उसके क्रोध से स्वयं को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, वो है क्रोध के पीछे छिपे अज्ञात कारण को पकड़ा जाए तथा स्वयं के पास ज्ञात ऊर्जा को क्रोध के रूप में प्रकट न करके क्रोध के कारण को नष्ट किया जाए। अन्यथा उसके क्रोध से हमारा क्रोध जुड़ा तो नुकसान हमारी ऊर्जा का होगा और हो सकता है क्रोध की अवस्था में हम अपना और सामने वाले का अहित कर जाएं। तनाव आधुनिक जीवन शैली का अंग बन गया है। दरअसल तनाव एक ऐसी अवस्था है जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा नष्ट होने लगती है। मानव जीवन असीम ऊर्जा का भंडार है। ये ऊर्जा क्रोध के कारण नकारात्मक चीजों में खपने लगती है तथा रचनात्मकता के लिए ऊर्जा कम पड़ जाती है, इससे तनाव पैदा होता है। इस तरह तनाव के लिए हम स्वयं दोषी हैं। यदि ऊर्जा का संतुलन, नियमन एवं सुनियोजन होने लगे तो भी तनाव नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्रोध से हमेशा हानि या अहित ही होता है। इतिहास में कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां क्रोध से बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान, आविष्कार, अनुसंधान तथा कई रचनात्मक कार्य भी हुए हैं। एक बार गांधी जी से एक कार्यकर्ता ने पूछा, बापू मैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हूं।

0: कई बार इस हेतु मुझे ग्लानी भी होती है, परंतु क्या करूं, इस पर मेरा कोई पक्ष नहीं है। क्या करूं समझ में नहीं आता, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। गांधी जी मुस्कुराए, फिर बोले, ये तो विचित्र बात है, अच्छा जरा अभी क्रोध करके दिखाओ। तब कार्यकर्ता बोला, अभी तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर क्रोध तो अचानक आता है और थोड़ी देर में चला भी जाता है। तब गांधी जी ने समझाते हुए कहा, क्रोध तुम्हारी प्रकृति नहीं है, अगर ये तुम्हारे स्वभाव का अंग होता तो तुम आसानी से अभी क्रोधित होकर दिखा देते। अब तुम ही बताओ, जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसे तुम अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हो। कार्यकर्ता की बात समझ में आ गई। अब जब भी उसे क्रोध आता, गांधी जी की बात याद करते ही उसका क्रोध हवा हो जाता। इसी तरह जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध में हो तो हमें उसके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए, जिस तरह मशीन गर्म हो जाए तो उसे थोड़ी देर बंद करना ही उचित होगा। इस तरह क्रोध आने पर स्वयं को नियंत्रित कर सामने वाले के साथ नरमाई से पेश आना उसके वेग को कम करने में सहायक होगा। जीवन एक कला है और इस कला को बड़ी कुशलता के साथ जीना चाहिए। जिसे जीवन जीने की कला आ गई वो कभी तनावग्रस्त हो ही नहीं सकता। जो जीना चाहते हैं और जिनमें जीवन के प्रति अगाध निष्ठा है, उनके लिए तनाव एक चुनौती के रूप में आता है। ऐसे लोग तनाव से भयभीत नहीं होते, बल्कि उससे निकलकर कुछ नया और अच्छा करने की न केवल ठान लेते हैं बल्कि कुछ नया करके दिखा देते हैं। तनाव मुक्त जीवन के लिए जीवन में ऐसी छोटी चीजों की तलाश करनी चाहिए जो हमें खुशी प्रदान करती हैं। जीवन में इन चीजों की बढ़ोतरी करना चाहिए जो हमें खुशी प्रदान करती हैं। संबंधों में भी खुशी बांटने का प्रयास करना चाहिए। इंसान की दुखती रंग को न तो स्पर्श करना चाहिए और न करने देना चाहिए। यदि कोई ऐसी तनाव वाली बात करे तो भी शांत और चुप रहना चाहिए। जीवन में खुश एवं प्रसन्न रहने की कला सीखनी चाहिए, यही तनाव दूर करने का सर्वोत्तम माध्यम है।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी।

लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान। और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू, 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास

0: कार्यो का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉ यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अपने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता कई द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है।
3: हमारे देश की इतिहास में हिंदी पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से, महान पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान रहा है।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। आगरमालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के मिहिरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल समरसता व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने

घोषणा की कि तरणताल के डाइविंग पुल का नाम कैप्टन बजरंगी प्रसाद के नाम पर होगा। श्री शुक्ल ने तरणताल में नए स्प्रिंग बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि इस प्रतियोगिता से नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी और देश व प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगी। अब बात मौसम की। नौतपा के बीच राज्य में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। राजधानी भोपाल में देर रात तेज आंधी चली, जिसके कारण जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में रातें भी बेहद गर्म रहीं। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हो सकती है। खंडवा जिले में बादल छाए रहने से कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में दो महीने में पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े घटनाक्रमों में 4 लोगों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, सागर रेंज के आईजी, छतरपुर एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुनिव्रम मुरुगेसन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष में आयोजित अहिल्या उत्सव 2026 में आज इंदौर में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ। भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदा नीरा समागम के चौथे दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में 5वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हिंदी महक। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी काव्य पाठ। कवि हैं शकील खान। तो आइए सुने इनसे इनकी काव्य रचनाएं।
1: लीजिए गजल के कुछ शेर पेश है। दिल किसी का मत दुखाना चाहिए, दिल किसी का मत दुखाना चाहिए, हर किसी के काम आना चाहिए। दिल किसी का मत दुखाना चाहिए, हर किसी के काम आना चाहिए। लोग जैसे रहते थे सब प्यार से, लोग जैसे रहते थे सब प्यार से, फिर वही गुजरा जमाना चाहिए। लोग जैसे रहते थे सब प्यार से, फिर वही गुजरा जमाना चाहिए। और हो अंधेरे नफरतों की दूर सब, हो अंधेरे नफरतों की दूर सब, प्यार की शम्मा जलाना चाहिए। हो अंधेरे नफरतों की दूर सब, प्यार की शम्मा जलाना चाहिए। और कम नहीं ये भी इबादत से शकील, कम नहीं ये भी इबादत से शकील, रोते बच्चे को हंसाना चाहिए, रोते बच्चे को हंसाना चाहिए। लीजिए एक गजल है और है। ये आंगन और ये दर बेटियों से, ये आंगन

कितना है मुकद्दर बेटियों से जिताकर वर्ल्ड कप भारत का जग में, जिताकर वर्ल्ड कप भारत का जग में, जिताकर वर्ल्ड कप भारत का जग में, बहुत चाहुआ सर बेटियों से, चली सस

आई चली ससुराल तो माँ बाप भाई बहुत रो एल पट कर बेटियों से ये आंगन और ये दर बेटियों से महकता है मेरा घर बेटियों से। दीजिए गजल और पेश है। ये कभी मुझको हंसाए और रुलाए जिंदगी ये कभी मुझको हंसाए और रुलाए जिंदगी जाने कैसे कैसे मुझको दिन दिखाए जिंदगी ये कभी

दोस्तों मुस्कुरा कर जिंदगानी को गुजारो दोस्तों, क्या पता कब मौत।

0: कभी याद उन गुजरे दिनों की फिर दिलाए जिंदगी, याद उन गुजरे दिनों की फिर दिलाए जिंदगी। ओ अगर बाहों में मेरी सर मेरे महबूब का, हो अगर बाहों में मेरी सर मेरे महबूब का, हर घड़ी फिर क्यों ना मुझको गुदगुदाए जिंदगी, हर घड़ी फिर क्यों ना मुझको गुदगुदाए जिंदगी।
1: मक्तौर पे से
0: कि जिंदगानी के सफर में जो बिछड़ जाते शकील, जिंदगानी के सफर में जो बिछड़ जाते शकील।

ने कैसे कैसे मुझको दिन दिखाए जिंदगी, ये कभी मुझको हंसाए और रुलाए जिंदगी। ये गजल के चंद से रोपी से तुम्हारा

की है गजल जैसे किसी ने रेत पर लिख कर मिटा दी है। गजल जैसे किसी ने रेत पर लिख कर मिटा दी है। पता भी भूल बैठे हैं हम अपने।

में मैंने तो ये दुनिया भुला दी है, उसे मंजिल पे जाने से बताओ कौन रोकेगा, उसे मंजिल पे जाने से बताओ कौन रोकेगा, जिसे माने विदा करते हुए घर से दुआ दी है, जिसे माने विदा करते हुए घर से दुआ दी है, तुम्हारी याद मैंने

0: गजल जैसे किसी ने रीत पर लिख कर मिटा दी है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक श्रृंखला में शकील खान से उनका हिंदी काव्य पाठ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत शकील बदायूनी के लिखे इस गीत के साथ, जिसे हमने चुना है फिल्म पालकी से। नौशाद ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और इसे स्वर दिया है मन्ना डे ने।

श्रोताओ, ये आवाजें थी लता मंगेशकर और मन्ना डे जी की। फिल्म थी पालकी। शकील बदायूनी के लिखे गीत को संगीत से सवारा था संगीतकार नौशाद ने।

0: AIR at 90.
1: मिस मैरी लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना, संगीत हेमंत शुक्ला का।

0: संगीतकार हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत आपने सुना फिल्म मिस मैरी से। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को आवाजें दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म शराबी का ये गीत। गीत रचना प्रकाश मेहरा की, संगीत बप्पी लहरी का।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: आई एम हियर
2: दीप तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट लीजिए अब सुनिए फिल्म दुनिया का ये शीर्षक गीत गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने धुन बनाई है RD बर्मन ने

0: कहने वाले कहे माया जाल है।
1: ए ब्रदर, जरा जम के बजाओ। अच्छा मांगता है इंग्लैंड इंडियन टाइप है।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दुनिया से किशोर कुमार के स्वर में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, मौसम के उतार चढ़ाव से आप और हम सभी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। इस मौसम में कॉटन, जॉर्जेट, सीफोन जैसे हल्के कपड़े पहनें। घड़े के पानी को प्राथमिकता दें और नींबू पानी जिसमें सेंधा नमक पुदीना डालकर सेवन करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। सत्तू का सेवन करें जो शरीर के तापमान के संतुलन के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में जस्टिस चौधरी फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार के स्वर में आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म आन मिलो सजना।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इसी युगल गीत के साथ ही, जिसे हमने लिया था फिल्म आन मिलो सजना के इस गीत के साथ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। सुबह के 8 बजने को है, प्रतीक्षा कीजिए आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात की।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय

0: और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रूपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रूपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
3: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और

0: फोटो इन्होंने ली हुई है जो इन्होंने शेयर की है ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी।

0: पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू शेयर हिज थॉट्स इन मन की बात प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी एट 11 AM टुडे। Defense Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Center notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 AM today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pehelgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
4: हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद थी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गीता। आपने सुनी इसकी 9वीं कड़ी, शीर्षक राजविद्या राजगुरु योग। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं रुना लैला की आवाज में घरौंदा फिल्म का ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है संगीतकार जयदेव ने।

श्रोताओं, ये आवाज थी रोना लैला की और ये गीत आपने सुना फिल्म घरौंदा से, संगीत जयदेव का था। श्रोताओं, हम आपको बता रहे थे गर्मी से सुरक्षा के कुछ उपाय। घर से खाली पेट ना निकलें और इसके लिए भोजन करके ही बाहर जाएं, समय समय पर पानी पीते रहें, बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें और उन्हें सुपाच्य और हल्का आहार दें। रंगीन चश्मे और छाते का प्रयोग भी जरूर करें, जो आपकी आंखों और सिर को तेज धूप और रोशनी से बचाने का काम करेंगे। मिर्च मसाले वाले खाने और बासी खाने से परहेज करें और चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें या कम से कम करें। अधिक भीड़भाड़ वाली जगह में शारीरिक दूरी का पालन करें। लू के लक्षण पहचाने, जैसे चक्कर आना, उल्टी, थकान, सिरदर्द, बुखार, ऐसी स्थिति में घरेलू उपचार के साथ साथ सुधार न होने की दशा में बिना देर किए डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से, आवाज कविता कृष्णमूर्ति की।

1942 अ लव स्टोरी अभी आपने सुना। इस फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। इस समय हम आपके लिए लेकर आते हैं लोक संस्कृति का विविध रंगी कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं नंदराम तिवारी और रूपा तिवारी। सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये लेद। ढोलक पर हैं संजय भाटे, बैंजो पर साथ दे रहे हैं लखनलाल। तो आइए सुने ये लोक रचना।

अभी आप सुन रहे थे नंदराम तिवारी और रूपा तिवारी के युगल स्वर में ये लोक रचना। लीजिए अब इन्हीं से सुनिए ये विदाई गीत।

0: पार्टी एट 90।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: लीजिए, अब सुनिए नशा निषेध पर केंद्रित ये लोक रचना। गायक कलाकार हैं नंदराम तिवारी और रूपा तिवारी।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: लीजिए अब सुनिए ये विवाह गीत। गायक कलाकार है नंदराम तिवारी और कार्यक्रम है लोक रंग।

0: हाँ, ये देख
1: कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दिखा?
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये मल्हार गीत। कलाकार हैं नंदराम तिवारी।

समाप्त हुआ। आज इस कार्यक्रम में ढोलक पर थे संजय भाटे और बेंजो पर साथ दे रहे थे लखनलाल। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। इस कार्यक्रम में सहयोग है राजेंद्र कुमार अहिरवार का और प्रस्तुतकर्ता हैं रविंद्र कुमार प्रजापति।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपके दोस्त राजेंद्र अहवार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले बता देते हैं आपको हमारी फोन नंबर। हमारा पहला नंबर है 241588 यानी 241588 और हमारा दूसरा नंबर है 298029 यानी 2980 29। छगरपुर से बाहर के श्रोताओं के लिए हमारा एसटीडी कोड है 07682 यानी 07682। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 तक की जाती है। इसी बीच हमारे श्रोता लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: जी मैहर एमपी से सुनील कुशवाहा, बताइए सुनील जी क्या करते हैं?
1: बस सर आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं सर, और मशीन चलाते हैं जेसीबी सर।
0: बढ़िया, जेसीबी चलाते हैं तो क्या कुछ सावधानियाँ बरतते हैं सुनील जी?
1: जेसीबी चलाते हैं सर, बहुत सावधानी करते हैं सर, अपना कैसे है आदमी साथ में काम करते हैं तो उनको देखना पड़ता है, कोई अचानक कहीं से पास ना हो जाए, मतलब रास्ते से कहीं जा रहे हैं तो उसको सावधानी से देखना चाहिए, और नीचे काम कर रहे हैं तो उसको बचा के करना चाहिए सर, थोड़ा सा लापरवाही अपना भारी पड़ जाता है सर, तो तभी सावधानी से करना चाहिए सर सब काम सर।
0: जी सभी काम सावधानी से करें सुनील जी। और आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: आकाशवाणी सर बहुत अच्छा लगता है सर, सुनते रहते हैं सर रेडियो।
0: जी जी जी,
1: मोबाइल एप्लीकेशन
0: बढ़िया है, मोबाइल एप्लीकेशन से सुनते हैं और काम भी करते रहते हैं, है ना सुनील जी?
1: जी
0: बताइए फिर आज कौन सी फरमाइश हम आपको सुनवा दें?
1: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म चांदनी से, और गाने के बोल है तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी।
0: बिल्कुल अपनी प्रेम कहानी, हम आपको चांदनी फिल्म से ये गाना जरूर सुनवा देंगे, आप ऐसे ही आकाशवाणी छतरपुर सुनते रहें और खूब मनोरंजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: फरुखाबाद से सतीश बोल रहे हैं, बताइए सतीश जी।
1: हाँ जी, धन्यवाद सर जी,
0: बताइए।
1: मेरी कॉल रिसीव करी।
0: जी जी जी,
1: कॉल लगी
0: है। आपको भी धन्यवाद, आपने कॉल लगाया। क्या करते हैं सतीश?
1: मैं तो सर जी खेती किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी खेती में?
1: अच्छा, धान की तैयारी करने वाले।
0: मौसम कैसा है सतीश जी आपके यहाँ?
1: मौसम तो गर्मी वाला है।
0: अच्छा, फिर कैसे फसलें अभी कैसी हैं आपकी?
1: अभी तो फसलें सर जी सही है, सिंचाई करते हैं ट्यूबवेल से।
0: जी जी,
1: तो लाइट वाली समर होती है उससे सिंचाई करते हैं। अभी फसलें हैं, गर्मी तो ज्यादा पड़ रही है, लेकिन बारिश वगैरह हो जाए तो भगवान की कृपा से बारिश।
0: जब देखिए मानसून आएगा तो बारिश भी होगी और उसका भी आनंद हम सभी लेंगे। तो आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको सतीश जी?
1: कार्यक्रम सर जी छतरपुर के एक नंबर के बढ़िया लगते हैं, मीडियम बैंड पे आते हैं छतरपुर, तो वो भी अच्छा लगता है। और आपका जो भोपाल से रिले किया जाता है टारगेट, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अपने आपके जो नियम से आपके केंद्र से प्रोग्राम आते हैं वे अच्छे लगते हैं।
0: सतीश जी को हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं?
1: हाँ, कार्यक्रम सर जी पसंद आ रहे हैं। और आकाशवाणी के 90 वर्ष हो चुके हैं, तो 90 वर्ष पे ये कहना चाहता हूँ ऐसे चलता रहे आकाशवाणी, मनोरंजन शिक्षा सब चीज, ज्ञानवर्धक चीज आकाशवाणी सिखाया सब कुछ, तो ऐसे चलते रहे आकाशवाणी 90 वर्ष।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया है और ऐसे ही सुनती रहिए। देखिए, और आकाशवाणी के 90 साल हम मना रहे हैं।
1: हाँ हाँ,
0: चलिए कौन से गाने सुनवा दे सतीश?
1: आज ये सुनवा दीजिए, मूवी का नाम है महबूब की मेहंदी और उसमें गाने जाने लोग किया मोहब्बत किया करते हैं।
0: बिल्कुल, महबूब की मेहंदी लता मंगेशकर की आवाज में, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
1: हाँ, गाना बहुत प्यारा है।
0: बहुत बढ़िया, आपने पसंद किया, हम आपको सुना दें आपकी पसंद पर ये गाना।
1: कुछ मित्रों को नाम लेना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ प्रेम बाबा जी हेंगे आपके यही महोबा से, फूलचंद पाल हैं, दिनकर हैं, जितने तमाम सुनने वाले सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ सर जी।
0: हमने सबको डेडिकेट कर दिया, अब आपको सुनवा दीजिए गाना।
1: हाँ जी सुनवा।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: तो फरमाइश नमस्कार
0: नमस्कार कौन बोल रहे हैं?
1: पंडित शिवनारायण तिवारी जी बोल रहे हैं। स्वागत
0: जी। शिवनारायण तिवारी जी स्वागत है, बताइए तिवारी जी।
1: जी आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं राजीव नेहरवार बोल रहा हूँ आकाशवाणी छतरपुर से।
1: ठीक है सर।
0: क्या चल रहा है, क्या करते रहते हैं तिवारी जी?
1: पंडिताई
0: करते हैं। बढ़िया। तो मौसम कैसा है सागर में?
1: अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: अच्छा अच्छा, भागवत कथाएं अभी कम हो रही होंगी।
1: जी
0: चलिए, क्या क्या करते हैं?
1: सभी कार्यक्रमों में जाते हैं, जैसे शंकर जी बनते हैं, वेदी हवन होता है और विवाह पढ़ते हैं, लगन करते हैं, कथाएं वगैरह सब।
0: जी माने ईश्वर भक्ति में लगे रहते हैं।
1: जी
0: हम सब लगे हुए हैं, देखिए उनकी भक्ति में लीन है और आज भक्तिमय माहौल भी है। कौन सा गाना सुनाए तिवारी जी आपको?
1: गाना सुनना है खुली नंबर वन का।
0: खुली नंबर वन सुनवा देंगी, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: जब दिल ना लगे दिलदार।
0: अरे वाह, तिवारी जी ने बहुत अच्छा गाना पसंद किया है, हमारी गली आ जाना।
1: जी
0: बिल्कुल सुनवा देंगे। कैसे लगते तिवारी जी कार्यक्रम आपको?
1: कार्यक्रम बहुत पहले से सुन रहे हैं सर, वो लगभग 90-91।
0: अच्छा तिवारी जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाएंगे 12 जून को, क्या कहना चाहेंगे? योग के क्या मायने हैं और आप योग कर रहे हैं?
1: हम तो 4 बजे रात को उठते हैं, घूमने जाते हैं, फिर नहाते धोते हैं, उसके बाद मंदिर की पूजा करते हैं, मेहनत भी करते हैं बहुत।
0: और आकाशवाणी से ऐसे जुड़े रहे हैं, देखिए स्वस्थ तन में स्वस्थ मन होता है और जब मन स्वस्थ होगा तो काम करने में और अधिक मन लगेगा हमारा।
1: जी जी।
0: फिर आपको सुनवा दे तिवारी जी आपकी पसंद पर कुली नंबर फिल्म से ये गाना।
1: नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: ग्राम पल्लूखर धाम जिला दतिया से बलराम पाल बोल रहे हैं
0: जी। बलराम जी स्वागत है, बहुत दिनों बाद आपका फोन आया। बलराम जी बताइए, बलराम जी क्या कर रहे हैं, क्या करते रहते हैं?
1: खेती किसानी का काम है सर।
0: अभी क्या चल रहा है अपने खेती किसानी में?
1: खेती किसानी में अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, जो मखनी होनी थी वो कर दी है हमने एक महीना पहले।
0: गहरी जुताई हो गई?
1: जी सर
0: बिल्कुल। मिट्टी परीक्षण के लाने भी बहुत बढ़िया मौका है बलराम जी।
1: जी
0: माटी का परीक्षण करवा रहे हैं?
1: अभी तो नहीं करवाया सर।
0: अपने झांसी में लैब है तो वहाँ भेज सकते हैं और बढ़िया जांच करवा लें, उसके अनुरूप अगर अपन कृषि करेंगे तो आपको अधिक लाभ होंगे।
1: ठीक है सर।
0: कार्यक्रम कैसे लगते हैं बलराम जी?
1: बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं सर।
0: बचपन से लेकर जुड़े हुए हैं, कुछ यादें आपके बीच हो तो हम साझा करें।
1: पहले हमारे पिताजी बजाते थे रेडियो।
0: हाँ हाँ।
1: तो बिल्कुल हम छोटे से तभी से सुन रहे हैं और आपके यहाँ 2001 से हम मतलब पत्रों के द्वारा जुड़े हैं।
0: बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आपके पत्र लगातार पहुँचते हैं।
1: तथा लोकमाधवी कार्यक्रम अभी भी आ रहा है, पहले आता था दोपहर में।
0: जी जी।
1: और दोपहर में पहले हरमाश कार्यक्रम भी आता था।
0: जी जी जी।
1: काफी दिनों से सुन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही बढ़िया लगते रहे। और फिर आज कौन सा गाना सुना दें बलराम जी को?
1: गाना सुनवा दीजिए सर। फिल्म का नाम तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन गीत के बोल हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
0: ये गाना जरूर हम आपको सुनवा देंगे, कवि प्रदीप जी की रचना है, देख तेरे संसार की हालत।
1: बिल्कुल।
0: चलिए बहुत अच्छा गाना पसंद किया, हम आपको सुनवा देते हैं बलराम जी, और ऐसे ही सुनते रहें अपने पंडोखर धाम में हमारे आकाशवाणी छतरपुर।
1: बिल्कुल सर।
0: बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: ग्राम पोस्ट भंडरा थाना श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से भारत रेकवार बोल रहे हैं।
0: भारत रेकवार बोल रहे हैं भंडरा महोबा से।
1: हाँ जी सर,
0: बताइए भारत जी, क्या हालचाल है?
1: हालचाल बहुत अच्छे हैं सर जी। बारिश हो रही, कल बारिश हो रही थी तो आज ठंडा मौसम है।
0: अभी कहाँ है आजकल, क्या कर रहे हैं?
1: अभी गुड़गांव में है।
0: गुड़गांव में है, बढ़िया। तो गुड़गांव में भी आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं?
1: हाँ जी सर, प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: जी जी,
1: और देखा समय हो रहा है। हेलो फरमाइश का कॉल की कॉल लग गई।
0: लग गई, बढ़िया है।
1: हो रही है।
0: बढ़िया बढ़िया। और कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम भारत जी?
1: कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और भारत जी कार्यक्रम आता है ये भी बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कितने साल हो गए भारत जी आपको जुड़े हुए?
1: मुझे कम से कम 18-20 साल के आसपास हो चुका है आकाशवाणी छतरपुर सुनते समय।
0: आपने बताया 20 साल से जुड़े हैं, तो क्या बदलाव हुए आपके जीवन में? क्या आपको लगा कि रेडियो से हमें ये कुछ मिला हुआ है? 1936 से लेकर लगातार हमारे जीवन में आकाशवाणी रचा बसा है, कुछ आप अपने अनुभव बताएं हमें।
1: अनुभव यही है कि अच्छे अच्छे गीत मिलते हैं सुनने के लिए, और रेडियो में पता नहीं अचानक ऐसी बात बोल जाते हैं कि दिल में समा जाती है, बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, आपको अच्छे लगते रहें, और दिलों से दिलों तक आकाशवाणी छतरपुर पहुंचता है, आपके दिलों में बसा हुआ है, ये जानकर भी हमें खुशी हो रही है। तो आज गाना फिर हम आपको कौन सा सुनवा दें भारत जी?
1: आज गीत रहेगा तेरे नाम फिल्म का।
0: हाँ बिल्कुल, सुनवा देंगे। कौन सा गाना?
1: नाचूं ओढ़नी ओढ़ के यार दिल परदेसी हो गया।
0: अच्छा, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। चलिए भारत जी, ऐसे ही आकाशवाणी छतरपुर से जुड़े रहें, हम आपको सुनवाएं फिर आपकी पसंद पर ये गीत।
1: नमस्कार सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। हेलो फरमाइश, कौन हो, कहाँ से बोल रही हैं
1: जी? भैया मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, मनकारी से।
0: फूलचंद जी स्वागत है आपका, बताइए क्या चल रहा है इस गर्मी में आपके यहाँ?
1: बढ़िया है भैया, पसीना पहुँच रहा है, बहुत गर्मी है।
0: अच्छा अच्छा, अब फूलचंद जी जानना चाहेंगे खेती किसानी में क्या तैयारियाँ चल रही हैं खेतों की?
1: खेती किसानी में राजेंद्र भैया अभी जुताई चल रही है, अभी जुताई हो जाएगी तो फिर इसके बाद पानी गिरेगा, पानी गिरने के बाद जो है फिर फसल बुवाई होगी।
0: अपनी माटी का परीक्षण भी करवा रहे हैं फूलचंद पाल जी आप?
1: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, हम लोगों ने मिट्टी परीक्षण करवा लिया है नौगांव प्रयोगशाला से।
0: जी जी,
1: तो उसमें जितना तत्व जांच में आएगा उतना ही हम जो है पोषक तत्व डालेंगे उसमें।
0: बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा काम है। देखिए हर किसान को सबसे पहले मिट्टी परीक्षण करवाना है, उसके बाद जब हमारे वैज्ञानिक भैया बताते हैं उसी अनुरूप अगर अपन खेती कर रहे हैं तो अपन को दोहरे लाभ होते हैं फूलचंद जी।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल सही कहा है आपने, और ज्यादा यदि मिट्टी परीक्षण नहीं कराई आपने तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें पोषक तत्व कितने चाहिए, कितना खाद डालना है, यदि आप ज्यादा डाल देंगे तो नुकसान करेगा।
0: जी जी सही बात है, देखो हाँ जिस खेत में जो फसल हमें लेनी है वो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, उन्हीं के अनुरूप हम करते हैं तो देखो अधिक से अधिक लाभ अपन को मिलते हैं।
1: जी भैया,
0: आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको फूलचंद पाल जी?
1: आकाशवाणी के कार्यक्रम तो राजेंद्र भैया आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, जितनी तारीफ करी जाए वो उतना ही कम है।
0: लगातार रेडियो सुनते रहते हैं ना फूलचंद जी?
1: बिल्कुल, और जहाँ राजेंद्र भैया की प्रस्तुति है फिर तो हाँ तो लाजवाब है।
0: हम सबकी कोशिश यही है फूलचंद जी, हमारे श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा देखिए, हम जो भी मनोरंजन ज्ञान सूचना शिक्षा दे पाए हम सबका प्रयास यही है।
1: जी जी जी।
0: आज कौन सा गाना सुनेंगे फूलचंद जी आप?
1: बिल्कुल भैया, फिल्म का नाम है जवाब हम देंगे।
0: जवाब हम देंगे हम जरूर सुनवा देंगे।
1: और गीत के बोल है कि तेरी अखमस्तानी है अंगूर का पानी है, जरा बच के रहना गोरिया तेरी चढ़ती जवानी।
0: बिल्कुल जरूर हम आप तक ये गाना पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके फूलचंद पाल जी, ऐसे ही जुड़े रहे आकाशवाणी।
1: राजेंद्र भैया ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा और प्रेमदास बाबा जी के साथ सुनेंगे हम ये गाना।
0: बिल्कुल सभी लोग मिलकर सुनिए आकाशवाणी छतरपुर से अपनी पसंद पर ये गीत।
1: जी बहुत बहुत
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: अरवाल जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है।
1: पूरे यूपी से अशोक सिंह बोल रहा।
0: जी जी बहुत बढ़िया। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद सर जी, लगता नहीं बहुत दिनों बाद लगा है।
0: क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हैं आजकल?
1: ठीक है सर, मैं तो रिटायरमेंट हूँ।
0: तो इसके बाद तो जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई होंगी, क्या काम कर रहे हैं
1: सर? अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं और बस अपना और काम जो।
0: जी जी जी अशोक जी, देखिए जीवन देने का नाम है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोचता है कि हम कुछ दें। तो क्या सोचा आपने, अब ये जो रिटायरमेंट की लाइफ है, तो क्या सोचते हैं मन ही मन, क्या लगता है कि हम ये पर्यावरण के लिए काम करें, लोगों के लिए
1: काम करना चाहिए सर, पेड़ लगाना चाहिए, उसी का तो ये प्रतिरूप अपन भुगत रहे हैं, गर्मी का हाल बेहाल। पशु पक्षियों के लिए भी, उनका लिए भी दाना पानी वगैरह रखते हैं, उनको भी करना चाहिए ना सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जबलपुर में कैसा तापमान है अभी आजकल?
1: अरे 43-44 तो चल ही रहा सर।
0: तो सावधानी बरत रहे हैं?
1: सावधानी बरतते हैं ना सर, निकलते नहीं है, 10 से 4-5 बजे तक निकलते हैं तो कपड़ा वगैरह बांध के निकलते हैं, सुबह ही घूम के आ जाते हैं 5 बजे उठे।
0: बिल्कुल जरूरी है कि हम बचाव करें, और बचाव ही देखिए हम सबके लिए, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये मौसम जैसे बदल रहा है तो हमें भी थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। कौन सा गाना सुनेंगे अशोक जी?
1: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा ही सुना दे।
0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। चलिए, आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लगते हैं सर। अभी ये अपना युवाणी का कार्यक्रम कब आता है सर, इसका रिकॉर्डिंग?
0: शाम को 5 बजे आता है, आप जरूर सुने हमारा युवाणी कार्यक्रम।
1: रिकॉर्डिंग कल होती है, गुरुवार को।
0: हेलो फ्रेंड की रिकॉर्डिंग गुरुवार को होती है और गुरुवार को ही प्रसारण होता है।
1: 11 बजे होती है सर?
0: 12 बजे होती है ये रिकॉर्डिंग।
1: 12 बजे। थैंक यू सर जानकारी।

0: मुझे वही कर।
1: बिल्कुल, आप फोन लगाएं और अपनी पसंद के गाने सुने। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, हम आपको सुनवा देते हैं।
0: करते हैं सर, मेल शामिल नहीं होते ज्यादा।
1: मेल आप करें, आपके मेल शामिल जरूर होंगे। आप मेल करते रहें और खत भी लिखें हमें, तो हम उनपे भी विशेष रूप से देखें। सभी के मेल हो रहे हैं, आप लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: बरसात चल रही है, कल मौसम खराब था।
1: हाँ, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है।
0: मैं यहाँ पे गुम्मा बनाते हैं सर।
1: अच्छा, ईंटें बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। तो धूप में बच रहे भैया? धूप में बचना है अपन को,
0: धूप में बचते हैं। सुबह सर सुबह सुबह पाल लेते हैं, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक।
1: बढ़िया है, स्वरोजगार से जुड़े हैं हमारे किसान भाई भी। अपना जो खाली समय है उसमें एक अच्छा व्यवसाय है कि हम ये अतिरिक्त व्यवसाय करें, ईंटें बनाए। कितनी डिमांड हमारी है और देख ही रहे हैं कितनी जरूरतें रहती हैं। अच्छा काम है, करते रहें।
0: जी,
1: कितनी ईंटें बना लेते हैं एक दिन में?
0: सर यहाँ हम सुबह से लग जाते हैं तो कम से कम 2000 गुम्मा निकाल देते हैं।
1: अच्छा अच्छा, दुर्जन जी कच्ची ईंटें बेच देते हैं कि पका के बेचते हैं?
0: नहीं, हम ऐसे करते हैं, जैसे आप किसी को बनाना है भट्टे पे, जैसे किसी को 20,000, किसी को 50,000 ऐसे बनाते।
1: बढ़िया, स्वरोजगार से जुड़े हैं, अच्छी खासी आमदनी चल रही होगी अभी तो?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो रेडियो भी बजाते रहते हैं ना?
0: रेडियो सर मैं जुड़ा तो हूँ सन 2005 से, मेरा भाई है ना बारेलाल प्रजापति।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, उनका मैं बड़ा भाई हूँ।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा लगा बड़े भाई से बात करके, ऐसे ही जुड़े रहे। आपके खत भी मिलते रहे तो और खुशी होगी हमें।
0: ओके सर।
1: चलिए फिर, गाना कौन सा सुनवा दें दुर्जन जी आपको?
0: गाना सुनना सर मुझे, मैं तो मजदूर हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
1: चलिए फिर हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद पर ये गाना, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम खोजते हैं ये गाना, आप तक पहुँचाते हैं।
0: ओके सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश है
0: जी। नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम सेवड़ी, जिला छतर, मध्य प्रदेश से दुर्जन प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: दुर्जन जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या हाल चाल है?
1: हाँ जी, अभी तो

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। हाँ जी,
0: जी
1: नमस्कार। जी
0: नमस्कार।
1: जी हाँ सर, मैं ग्राम बजर जिला सागर मध्य प्रदेश से गोलू अरवर बात कर रहा हूँ।
0: जी,
1: सर जी
0: गोलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हाल चाल है गोलू जी?
1: बताइए राजेंद्र जी, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया हूँ मैं, आप सब कैसे हैं वहाँ पर?
1: बस सर बढ़िया हूँ, और हमने सोचा आज आकाशवाणी छतरपुर में कॉल हो गया।
0: और लग गया देखिए आपका फोन, है ना?
1: जी सर बिल्कुल।
0: जी बताइए, कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम गोलू?
1: बस सर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आते हैं और सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आकाशवाणी छतरपुर।
0: जी अभी क्या चल रहा है, क्या क्या काम कर रहे हैं अभी इस खाली समय में?
1: अभी तो सर जी हमारे गाँव में मूंग।
0: अच्छा अच्छा,
1: पत्ती तोड़ने के लिए।
0: जी स्वरोजगार से जुड़ चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं ना?
1: जी सर जी।
0: मौसम अभी थोड़ा सा तेज धूप है, तो इससे बचाव भी करना हमें गोलू।
1: हाँ सर, धूप तो तेज निकलते हैं, मगर जब हम लोग घर पे आते हैं खेत से तो बड़ी नींबू का शरबत बना के पीते हैं और मठा के पछेर पीते हैं।
0: ये जो 12 से 4 का समय है इसमें बचना है, बाकी मौसम ठीक है, काम भी जरूरी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है गोलू अपन सबको।
1: हाँ सर बिल्कुल, काफी धूप निकल इसमें चक्कर वगैरह का डर रहता है आने का।
0: बिल्कुल, देखिए आप सब मेहनत करते हैं, हम सब मेहनत आप सबके लिए कर रहे हैं, आपको अच्छे लगे। फिर आज गाना कौन सा सुनेंगे गोलू
1: जी? सर आपकी पसंद का सुनना चाहते हैं सर आज तो गाना हम।
0: ये कार्यक्रम देखिए गोलू आपकी पसंद का है, आपकी फरमाइशें हैं, अगर आप हमें सुनाएंगे तो हमें खुशी होगी।
1: दिलवाले।
0: दिलवाले का बिल्कुल सुनवा देंगे, जरूर सुनवा देंगे आपको।
1: हाँ सर,
0: कौन सा गाना सुनवा दें दिलवाले से?
1: जी सर इसमें ये गाना है क्या, जीता था जिसके लिए जिसे मैं प्यार करता था, ये गाना है ना इसमें?
0: हाँ हाँ, बहुत अच्छे गाने हैं इसमें, ये गाना भी जरूर सुनवा देंगे। अब आप जौन सा पसंद करेंगे हम वो सुनवा देंगे।
1: ये गाना सुनवा दीजिए आप मुझे,
0: फिर हम आपको ये गाना जरूर सुनवा देंगे। और ऐसे ही देखिए कार्यक्रम से जुड़े रहे,
1: आपसे बात करके
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमारे मित्र हमें फोन करते हैं और छतरपुर से जुड़े हुए हैं। ठीक है गोलू, हम आपको सुनाएं आपकी पसंद पर ये गाना।
1: ठीक है सर,
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर रिंकी बात कर रहे हैं, जगदीशपुर शिवगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली से। सर कैसे हैं?
0: बढ़िया, रायबरेली से रिंकी जी का फोन है। देखिए आपका फोन आ गया तो हम सब लोग और प्रसन्न हो गए हैं कि इतने दूर से आप हमें सुन रहे हैं।
1: जी सर बिल्कुल, आपके यहाँ के कार्यक्रम सर हम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं। खास करके सर आप लोगों की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब होती है।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं, यही एक खास बात है। और कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम रिंकी?
1: सर बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं आपके यहाँ के, सारे कार्यक्रम सुनते जी रहते हैं।
0: जी, योग दिवस आ रहा है रिंकी, क्या कहना चाहेंगी? हमारे जीवन में हम योग को अपनाएं और जीवन शैली हमारी अच्छी हो, हम स्वस्थ बने रहें, क्योंकि सबसे जरूरी है स्वस्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम भी अच्छे रहेंगे।
1: जी सर बिल्कुल, योग करें और स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
0: आप योग अपना रही हैं, करती हैं योग?
1: जी सर बिल्कुल, घर के कामों के साथ साथ हो जाता है हम लोगों का योगा।
0: सही बात है, आदमी अपने काम करते रहे तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती।
1: जी सर,
0: कौन सा गाना सुनाएं आज रिंकी आपको?
1: सर आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
0: मौसम बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, बीच बीच में तो लगता है कि अब बाहर कैसे निकला जाए। आपके यहाँ कैसा है?
1: सर हमारे यहाँ तो सर रात में बहुत जोरों शोरों से बारिश हुई है और आंधी भी आई है, तो ठंडा मौसम हो गया है।
0: अच्छा अच्छा, यहाँ भी बूंदाबांदी हुई है, लेकिन चलिए रायबरेली में हो गई, हमारे यहाँ भी उम्मीद है जल्दी हो।
1: जी

0: सर बिल्कुल, हम दुआ करेंगे कि आपके यहाँ भी बारिश हो जाए तो गर्मी से थोड़ा राहत मिले।
1: बिल्कुल, हम ये दुआ करेंगे कि आपकी दुआ कबूल हो जाए।
0: जी सर बिल्कुल।
1: चलिए फिर कौन सा गाना सुनाएं आज आपको?
0: सर मूवी का नाम है स्टेंट मैन और गीत के बोल है आज मिलो कल फिर मिलना। सर ये गाना आपके लिए और हमारी दोस्त है पूनम दीदी कानपुर से, गुंजन तिवारी और मेरी बहन है पिंकी और
1: बिल्कुल
0: सारे श्रोता सुन रहे उन सभी को दे
1: आज मिले हो कल फिर मिलना। हम आपको ये गाना जरूर सुना देंगे।
0: जी सर बिल्कुल, क्योंकि आज से हमारी ऐसे ही मुलाकात होती रहे।
1: जी जी बिल्कुल, ऐसे ही देखिए आकाशवाणी से आपकी मुलाकातें होती रहें, हर कार्यक्रम में आप जुड़ी रहें और खूब आनंद लें और खूब आगे बढ़ें।
0: जी सर।
1: चलिए फिर आपको सुनाएं आकाशवाणी से ये आपकी पसंद पर ये गाना।
0: जी सर नमस्ते।
1: नमस्ते।

श्रोताओं, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी फोन लगाकर अपनी पसंद आकाशवाणी छतरपुर से सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर है, हमारा पहला नंबर है 2415888 और हमारा दूसरा नंबर है 2980029। एसटीडी कोड है 07682 यानी 07682। तो श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का। इसी के साथ आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र हरवार को। नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रविंद्र कुमार प्रजापति।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। सहयोग था राजेंद्र कुमार अहिरवार का, प्रस्तुतकर्ता थे रविंद्र कुमार प्रजापति। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब

0: कार्यक्रम बहुत ही सुनने वाले सभी श्रोताओं को और राजेंद्र जी आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: हमारे सभी श्रोताओं को आदरणीय सर आपको बहुत बहुत नमस्कार। इस गर्मी भरे मौसम में सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
0: राजेंद्र जी आज है 31 तारीख, महीने का आखिरी रविवार भी है
1: जी। और श्रोताओं को बता दें सर, और हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का इंतजार करेंगे जो 10:55 से शुरू होगा।
0: बिल्कुल। एक और राजेंद्र जी आज विशेष दिवस रहता है जी, आज देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी रहता है
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो हमें देखिए तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसके फायदे कम नुकसान ज्यादा है
1: जी जी। हम श्रोताओं को बताना चाहें ये तंबाकू कई रूप में हमारे सामने आती है। तंबाकू जैसे गुटखा, खैनी, ये सुपारी जो हमारे श्रोता अनभिज्ञ रहते हुए भी देखा देखी में अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।
0: बिल्कुल, देखिए इसमें धनहानि तो है ही, स्वास्थ्य हानि भी है। तो किसी भी तरह से इसका जो रूप बताए हैं सेवन नहीं करना और ना ही करने देना है
1: जी।
0: तो जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का बहुदी कार्यक्रम और बहुदी कार्यक्रम के लिए राजेंद्र जी हमारे श्रोता भेजते हैं ईमेल और डाक से पत्र। तो ईमेल और डाक का पता बता दीजिए
1: जी। हमारे श्रोता नोट करें, ईमेल का पता है bhavdi.chhatarpur@gmail.com bhavdi.chhatarpur@gmail.com और पत्र भेजने के लिए डाक का पता है कार्यक्रम भवदीय द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001। तो आप सभी इसी कार्यक्रम के बाद तुरंत अपना मेल या अपना खत लिख के आज ही पोस्ट कर सकते हैं ताकि अगले रविवार में वो शामिल हो जाए।
0: बिल्कुल।
1: और अब हम उठाते हैं सर ये पहला मेल जो हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाया है, लिख भेजा है ग्राम पोस्ट गोना कुसमार थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे मित्र हैं कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल चाहना, आकाश रानी परी और सूरबी पायल नामदेव। आप लिखते हैं 21 मई को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो फ्रेंड्स सुना, काफी अच्छा लगा। रात्रि में 10 से रिकॉर्डेड कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष एवं आकाशवाणी छतरपुर की 50 वर्ष पर श्रोताओं की समीक्षा सुनी, काफी सुंदर रही। 22 मई 2026 शुक्रवार को सुबह 9 लोक रंग कार्यक्रम के अंतर्गत लोकगीतों का आनंद उठाया, बहुत अच्छे लगे। 9:30 पर फिल्मी कव्वालियां सुनी, बहुत सुंदर लगी। इसके बाद 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद सुना, कार्यक्रम बहुत ही सुंदर लगा। इसमें आदरणीय सर संतोष कुमार तामरकार जी ने बहुत ही सुंदर गीतों को सुनाया। फिर शाम की सभा में शाम 6:30 पर घनश्याम सिंह यादव से लोकगीतों का आनंद उठाया। इसके बाद शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में रामचरित मानस प्रवचन सुना, प्रवचनकर्ता राजकुमार उदयनिया जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद रात्रि 10 नाटक ऐसा भी होता है, इतना अच्छा नाटक बनाने के लिए दिनेश कुमार सक्सेना और प्रस्तुतकर्ता राकेश खरे जी को कोटि कोटि धन्यवाद। 23 मई को सुबह 9:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे सुना, बहुत अच्छा लगा। इसमें राजेंद्र अहरवार जी का वाचन और प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति सर की, आप दोनों को बारम्बार बधाई। शाम की सभा में हेलो लोक रंजन सुना, सुंदर लगा, साथ में आपकी पसंद का आनंद उठाया। और दिन में 1 महिला सभा कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। 24 मई को सुबह 6:35 पर खेती किसानी में नींबू वर्गीय कीट प्रबंधन विषय पर हमने बहुत अच्छी जानकारी सुनी, बहुत अच्छी लगी। फिर 7:20 पर सुबह बुंदेली सुगंध में काव्य पाठ सुना प्रमोद गुप्ता मृदुल जी से, बहुत अच्छा लगा। 8:30 पर बुंदेली धारावाहिक कार्यक्रम गीत गाता का भाग छठमा सुना, शीर्षक ध्यान योग, बहुत सुंदर लगा। 9:30 पर हेलो फरमाइश सुना, श्रोताओं की बातचीत सुनकर आनंद आ गया। 10:30 पर पत्रोत्तर कार्यक्रम भवदी सुना, कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, बीच में एक गीत का भी आनंद लिया गया। इतना अच्छा कार्यक्रम बनाने के लिए हमारे आदरणीय सर रविन्द्र कुमार प्रजापति जी और सहयोगी राजेंद्र जी को कोटि कोटि बधाई। 11 मध्य प्रदेश से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने के गीतों को सुना, फिर हमने 2 फिल्म संगीत का आनंद भी उठाया और कार्यक्रम डगर विकास की में जल जीवन मिशन पर कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। बच्चों की बाल सभा कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम पर चर्चा सुनी, बहुत अच्छी लगी। शाम को अटकन चटकन का भाग छठमा हमने ग्राम सभा के अंतर्गत सुना, बहुत अच्छी सीख दे गया। 25 मई को सुबह

0: खेती किसानी के अंतर्गत गर्भित पशु की देखभाल विषय पर जानकारी हमें बहुत अच्छी लगी। इसमें हमें बताया गया कि कैसे उनकी देखभाल करनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। सुबह 7:20 पर वार्ता सुनी, पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षियों का महत्व, वार्ताकार धीरेन्द्र सिंह घोष जी को हमारी तरफ से बारम्बार धन्यवाद। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम गीत गाता का एक और भाग सुना, शीर्षक था ज्ञान विज्ञान का योग। कार्यक्रम बहुत सुंदर लगा। 9:00 बुंदेली लोकगीतों में राम कृपाल शुक्ला जी से लोकगीत सुने, बहुत अच्छे लगे, सुनकर मजा आ गया। 10:30 पर फिर हमने आपकी पसंद कार्यक्रम का आनंद उठाया, बहुत अच्छा लगा। शाम को 7:20 पर पत्रों ईमेल एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम रमतुला, बहुत अच्छा लगा। इसमें पुष्पेंद्र कुमार वर्मा जी प्रस्तुत कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। और युववाणी में सवाल हमारे जवाब आपके में अंक 121 सुना, बहुत सुंदर लगा। इसके बाद रात्रि में मन भवन का आनंद उठाया, इसमें ज्यादा से ज्यादा ईमेल शामिल किए गए और सुंदर गीत बजाए गए। प्रस्तुतकर्ता सविता मिश्रा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। 26 मई मंगलवार को सुबह 7:20 पर कहानी संस्कार सुनी, बहुत अच्छी लगी। शाम के सभा में शाम 7:20 पर घरमी कार्यक्रम के अंतर्गत लोक मंजरी सुनी, बहुत अच्छी लगी। प्रस्तुतकर्ता बहन जी को हमारी तरफ से सादर नमस्कार। इसके बाद रात्रि में 10:00 से 11:00 तक मन भवन कार्यक्रम सुना, इसमें डॉक्टर प्रणति चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छे गीत बजाए और पत्र भी शामिल किए, इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। 27 मई को सुबह 6:35 पर खेती किसानी के अंतर्गत राइजोबियम कल्चर के उपयोग पर हमने बहुत अच्छी जानकारी सुनी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 7:20 पर काव्य पाठ सुना कमल किशोर कमल जी के मुख से, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद 8:30 पर धारावाहिक गीत गाता का 8वां भाग सुना, फिर 9:00 बुंदेली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग में कलाकार लाल सिंह यादव से लोकगीत सुने, बहुत अच्छे लगे। 9:30 पर एक ही फिल्म से के अंतर्गत फिल्म बागवान के गीतों का आनंद उठाया। 10:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन सुना, बहुत अच्छा लगा। और 10:35 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुना, उर्मिला यादव जी ने बहुत अच्छे गाने बजाए और हमारे पत्र भी शामिल किए, उन्हें बहुत बहुत बधाई। इसके बाद शाम 6:30 पर लोकधारा में राजकुमारी विश्वकर्मा जी की आवाज में लोकगीत सुने, बहुत अच्छे लगे। शाम 7:20 पर अटकन चटकन, बहुत अच्छा लगा। युववाणी में विद्यार्थियों के लिए नई राय तनाव से दूर, श्रीयांश दुबे से ये वार्ता सुनी, बहुत अच्छी लगी। रात्रि में मन भावन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, शिवेंद्र कुमार शुक्ला जी को कोटि कोटि धन्यवाद। बस इस पत्र में इतना ही, शेष समीक्षा जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार। और इसी के साथ हमारे मित्र अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: हमारे नियमित श्रोता हैं ये, और 21 मई से लेकर 27 मई तक कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं छोड़ा इन्होंने जिसका इन्होंने अपने पत्र में वर्णन ना किया हो। आपने अपनी जो अमूल्य प्रतिक्रियाएं शब्दों के माध्यम से हम तक भेजी है बिल्कुल सराहनीय है, और आपने सभी कार्यक्रम हमारे यहाँ के सुने हैं। विशेष रूप से आपने जो कार्यक्रम में प्रस्तुत करता है कलाकार हैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, उन तक बधाई देखिए आपकी रेडियो के माध्यम से पहुंच ही रही है। और ग्रामीण परिवेश से जुड़े होने के कारण देखिए आपको खेती किसानी और पशुपालन संबंधी जो कार्यक्रमों में उपयोगी चर्चाएं भेंट वार्ताएं सुनने को मिल रही है, और उसे अपने दैनिक जीवन में आप उतार भी रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको
0: जी।
1: इसी तरह से पत्र भेजते रहे हम तक, धन्यवाद।
0: और सर अगला ये हमें ईमेल प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है हमारे नियमित श्रोता है बाबू यादव, श्रीमती मनसा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अन्नू यादव और अरुणेश यादव का ये मेल मिला है देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से। आगे अपने पत्र में आप लिखते हैं, जब मेरा ज्ञान खुद अधूरा था तो किसी पत्रिका में एक लेख पढ़ा था, एक जीवधारी दूसरे पर निर्भर है, तो उस समय उस लेख का खूब अच्छे से मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन जब दिनांक 25 मई 2026 की सुबह 7:20 पर आपके केंद्र से हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता सुनी, पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षियों का महत्व, वार्ताकार थे धीरेन्द्र सिंह घोष जी, बिल्कुल सत्य है कि प्रकृति ने जितने भी जीव जंतु उत्पन्न किए हैं सभी का प्रकृति में कहीं न कहीं किसी रूप में उसका सहयोग होता है, क्योंकि यदि जंगल हिरणों से खूबसूरती है तो जंगल में शेरों की भी उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि जब हिरणों की ज्यादा संख्या होगी तो वे जंगल की वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाते हैं और शेर उनका शिकार करके उनकी संख्या को नियंत्रण करता है। इसी प्रकार आपने अनेक उदाहरण दिए इस ज्ञानवर्धक वार्ता के लिए, वार्ताकार को दिल से धन्यवाद। दिनांक 24 मई 2026 को सुबह 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ सुना, कवि थे प्रमोद गुप्ता मृदुल जी।

0: आपकी अच्छी रचनाएं बहुत अच्छी लगी। आपकी एक रचना पर्यावरण को बचाने, जन जन को ये समझाने बहुत ही अच्छी लगी, आपको दिल से धन्यवाद। इसी दिन 10:30 पर भव्य कार्यक्रम सुना, जिसकी सुंदर सी प्रस्तुति आदरणीय कार्यक्रम प्रमुख रविन्द्र कुमार प्रजापति जी और सहयोगी रहे हमारे राजेंद्र अहरवार जी, जिस राजेंद्र जी ने सभी श्रोताओं के ईमेल को शामिल किया उसे उसी खूबसूरती से रविन्द्र जी ने उत्तर भी दिया। इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आप दोनों को हृदय से धन्यवाद। दिनांक 27 मई 2026 को एक ही फिल्म से के अंतर्गत बागवान फिल्म की कहानी और गाने सुनने को मिले, बहुत ही बखूबी से कहानी को प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुतकर्ता को दिल से धन्यवाद। दिनांक 28 मई 2026 को एक ही गायक कलाकार में सोनू निगम के जीवन के बारे में और फिल्मी कैरियर के बारे में अच्छी जानकारी सुनने को मिली, उनके गाये सभी गाने सराहनीय लगे, प्रस्तुतकर्ता को दिल से धन्यवाद। और अंत में सभी कार्यक्रमों की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी छतरपुर की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। और एक संस्मरण भी आप लिखते हैं, रेडियो का सफरनामा आप लिखते हैं, बात उन दिनों की है जब रेडियो केवल बिजली से चलते थे और लकड़ी के एक कैबिनेट में उसका पूरा सिस्टम रहता था, और उस समय वाराणसी का केंद्र केवल 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम में प्रसारण करता था। हमारे घर में शाम का प्रसारण ज्यादा सुना जाता था क्योंकि वो कृषि जगत आता था, वो भी क्षेत्रीय भाषा में, और मेरे पिताजी पेशे से किसान थे और वो भोजपुरी में आता था, खूब पसंद किया जाता था। और दूर के केंद्रों में उस समय रेडियो सिलोन और ऑल इंडिया रेडियो बहुत प्रचलित थे, जो सुबह सुबह सभी घरों में सुने जाते थे, और उनको सुनने के लिए बड़ा सा एंटीना लगाना पड़ता था जो जालीदार तांबे की पट्टी की तरह होता था, तब दूर के केंद्र साफ सुनाई पड़ते थे। आज इतना ही शेष अगले पत्र में, और ये सर जो संस्मरण हमने श्रोताओं से निवेदन किया था akashvani@90 के अंतर्गत जो आपकी यादें हैं वो साझा करें, ये हमारे बाबू यादव जी ने साझा की हैं, और इसी के साथ ही अपने पत्र की समाप्ति करते हैं।
1: बिल्कुल याद है जरा जरा, और इनको देखे रेडियो की यादें याद हैं आज भी कि बचपन में किस तरह से रेडियो का आनंद लिया करते थे
0: जी।
1: आपका देखे भौदी कार्यक्रम की समीक्षा कहें या हिंदी में है कि एक ही फिल्म से एक ही गायक जिसको आपने ध्यान से सुना है सराहा है, और पर्यावरण संरक्षण और पशु पक्षियों का महत्व विषय पर जो आपने देखे विचार व्यक्त किए हैं वे बिल्कुल सारगर्भित हैं। वास्तव में प्रकृति का प्रेम जीव पर्यावरण संतुलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देखे निभाता ही है। आपके शब्दों से स्पष्ट झलकता है कि आप प्रकृति प्रेमी भी हैं। कवि प्रमोद गुप्ता मृदुल जी की रचनाओं को देखिए, आपने पर्यावरण बचाने की जो उन्होंने पंक्तियां कही थी उसके लिए आपने विशेष रूप से उनको बधाई दी है, और चाहे एक ही फिल्म से हो, बागवान फिल्म के जो आपने गाने सुने हैं और जो बागवान फिल्म की यात्रा वृतांत था हमारी उद्घोषिका बहन उर्मिला यादव जी ने उसका अच्छे से चित्रण भी किया था, वो आपने बखूबी सुना
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और आपने रेडियो की दिखे यादें तो साझा की हैं, इसी तरह आप समीक्षा से अवगत कराते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू यादव जी इस पत्र के लिए
0: जी। और सर अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है, ये लिख भेजा है हमारे नियमित श्रोता है कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता, हमें लिख भेजते हैं भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। आप लिखते हैं, नमस्कार, आकाशवाणी छतरपुर की एक पुरानी परंपरा है कि वो राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण हम श्रोताओं को सुनवाकर उस महत्वपूर्ण घटना का प्रत्यक्षदर्शी बना देता है। 25 मई 2026 को इसका सबसे नवीनतम उदाहरण आपने सोमवार 5 बजे शाम को पेश कर दिया, जब पूरे 1 घंटे तक पद्म अवार्ड 2026 समारोह का सीधा प्रसारण आपने हमें सुनवा दिया। हमने प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स पर पुरस्कार विजेताओं को देखा और उसका वॉल्यूम बंद करके आकाशवाणी के उन प्रसारकों का प्रभावशाली वर्णन सुना जो उन्होंने पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में बताया, क्योंकि शब्दों के माध्यम से किसी भी घटना या व्यक्तित्व का वर्णन करने की अनूठी शैली केवल और केवल आकाशवाणी के पास ही है और हम इसके कायल हैं। आपसे उम्मीद है कि जब भी इन पद्म पुरस्कार 2026 के विजेताओं की दूसरी सूची में शामिल महानुभावों को राष्ट्रपति जी सम्मान प्रदान करेंगे तो उसका भी लाइव प्रसारण आप जरूर सुनवाएंगे। इस प्रसारण हेतु आकाशवाणी परिवार और हमारे करीबी एआईआर छतरपुर का हृदय से आभार और धन्यवाद। 23 मई के गीत गुंजन में जैव विविधता संरक्षण हमारे बदलते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए कितना आवश्यक है, प्लास्टिक प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर कितना दुष्परिणाम पड़ रहा है, हमारी साइकिल पर 2 कपड़े के थैले हमेशा रहते हैं, हम प्लास्टिक की थैली की मांग किसी भी दुकानदार से नहीं करते हैं। कार्यक्रम पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण, वन संरक्षण के प्रति जन जागरूकता का सर्व कल्याणकारी प्रेरक संदेश देने में सक्षम रहा और गीतों ने प्राकृतिक सुषमा का जो मनोहारी वर्णन किया उससे इस भीषण गर्मी के मौसम में हल्की ठंडी बयार का ऐसा

0: पास करवा दिया। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं और मन कहीं मैं झूमू मैं गाऊं, गीत अभी भी कानों में मधुरता बिखेरे हुए हैं। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति जी और सहयोगी भाई राजेंद्र अहिरवार जी को हार्दिक धन्यवाद। रेडियो धारावाहिक गीत गाता का काव्यात्मक गान सुनकर 24 मई को भाग 6 में ध्यान योग पर विस्तार से जान सके। इसी तरह 25 मई को भाग 7 में ज्ञान विज्ञान योग को, 27 मई को अक्षर ब्रह्म योग को सहज और सरल भाषा में समझ सके। कार्यक्रम सुनने में असीम आनंद की अनुभूति होती है, इसके लिए AIR छतरपुर को धन्यवाद। कार्यक्रम संग्रहालय में पंचतंत्र के सभी भागों की कहानियों का प्रसारण सुनकर शिक्षाप्रद और जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त हुआ। 22 मई शुक्रवार को महिला सभा में बहन प्रतिभा चतुर्वेदी जी द्वारा जैव विविधता दिवस और राजा राम मोहन राय जी की जन्म जयंती पर उल्लेखनीय बातें जान सके। शशि प्रभा अर्जरिया जी का काव्य पाठ, उनकी दोनों कविताएं मन को खूब भाई। मैंने सच अगर कहा तुम ना सुन पाओगे, भावनाओं में तुम भी तो बह जाओगे। सुना है ये घर और इस घर का आंगना, कुछ मन को भाए ना की याद बहुत आती हो माँ। उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
1: हमारे देखिए कृष्ण कुमार गुप्ता जी का पत्र हर कार्यक्रम में लगभग प्राप्त हो ही जाता है,
0: बहुत शिद्दत के साथ आप लिखते हैं।
1: पत्र के शुरुआत में अपने प्रकृति से जुड़े हुए चरित्र चित्रण का वर्णन किया है, विशेष रूप से आपका जो प्रकृति प्रेम है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में व्यक्तिगत भूमिका क्या हो सकती है उसका भी आपने विशेष रूप से जिक्र किया है। और आपने अपना खुद का वर्णन किया है कि जब भी हम दुकान जाते हैं तो हम प्लास्टिक की थैली नहीं मांगते हैं। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प देखिए हम सभी को व्यक्तिगत रूप से करने पड़ेंगे, छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम प्रकृति संरक्षण में सहयोग दे सकते हैं। आज के दौर में देखिए रेडियो की कितनी उपयोगिता है और आज के समय में आप इतनी प्रेम और आत्मीयता से सुनते हैं और लोग भी सुनते हैं। देखिए यही रेडियो की पहचान है और यही रेडियो का साथ है जो आज हम सबके साथ बना हुआ है। और आपने देखिए गीत गुंजन की भी बात कही है, जैव विविधता की बात कही है, इसके अलावा आज के समय में जो लोकगीत हैं वो शिक्षा सामाजिक जागरूकता में कितना महत्व रखते हैं इसकी भी बात कही हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर समीक्षात्मक पत्र के लिए।
0: जी और सर अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है ग्राम पोस्ट तालगांव तहसील भांडरी जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नागल, प्रताप सिंह नागल और इनके परिवार वालों ने। आप लिखते हैं दिनांक 24 मई की कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनी भूपेंद्र वर्मा जी, इसमें थे हमारे कॉल को शामिल किया, बहुत अच्छा लगा। भूपेंद्र वर्मा जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। 23 मई को गीत गुंजन सुना, प्रस्तुति राजेंद्र अहिरवार की थी, कार्यक्रम शानदार गया, इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए उन्हें बधाई। और आगे आप लिखते हैं 26 मई को हमने एक भेंट वार्ता सुनी धर्मेंद्र लोधी जी से और इसमें बातचीत राजेंद्र जी कर रहे थे, अच्छी वार्ता सुनवाने के लिए धर्मेंद्र लोधी जी को बहुत बहुत बधाई। 26 तारीख को कार्यक्रम मनभावन सुना, प्रस्तुति डॉक्टर प्रणति चतुर्वेदी जी की थी, ईमेल और पत्र बड़े ध्यान पूर्वक पढ़े गए, हमारे ईमेल को भी शामिल किया गया, इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ ये अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। हमारे मेहरबान सिंह नागल जी
1: हमारे नियमित श्रोता हैं और इन्होंने देखिए 23 मई से लेकर 26 मई तक के कार्यक्रमों का जिक्र है। विशेष रूप से देखिए आपने जो फरमाइशी कार्यक्रम है, चाहे हेलो फरमाइश हो या आपकी पसंद मनभावन कार्यक्रम हो, उनका जिक्र किया है और आपने एक भेंट वार्ता का भी उल्लेख किया है जो आपको बहुत पसंद आई है। इसी तरह आप कार्यक्रम सुनते रहें और हमें अपनी प्यारी समीक्षा से अवगत कराते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: कार्यक्रम का ये एक और ईमेल हमें हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा है, लिख भेजा है अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर जी ने। लिखते हैं महोदय जी एक पेड़ माँ के नाम, माँ के लिए धरती के लिए, माँ हमें जीवन देती है, पेड़ जीवन बचाते हैं, दोनों का रिश्ता बेहद ही मजबूत होता है। आपके केंद्र से हमने दिनांक 24 मई 2026 को कार्यक्रम बाल सभा में मिथुन भारती की कहानी एक पेड़ माँ के नाम सुनी, प्रस्तुत कहानी बहुत ही प्रेरणास्पद और शिक्षाप्रद लगी। इसी दिन कार्यक्रम हिंदी महक में प्रमोद गुप्ता का हिंदी काव्य पाठ सुना, बहुत ही अच्छा लगा। इसी दिन का हेलो फरमाइश का प्रसारण मन को भा गया, कार्यक्रम भव्दीय में एक से बढ़कर एक समीक्षात्मक पत्रों के कारण और उतनी सरलता और सहजता एवं आत्मीय भावों के द्वारा उन पत्रों का वाचन और उत्तर सुनकर मन आनंदित हो उठा। दिनांक 25 मई 2026 को कार्यक्रम हिंदी महक के अंतर्गत हमने धीरेन्द्र सिंह घोष की वार्ता पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षियों का महत्व विषय पर बहुत ही समसामयिक और सार गर्भित वार्ता सुनी, जो बहुत ही पसंद आई। कार्यक्रम युववाणी में आशीष यादव जी की वार्ता

0: गर्मियों में जल संरक्षण विषय पर बेहद ही महत्वपूर्ण वार्ता सुनी। गर्मी आते ही जल स्तर घटने और सूखने लगता है। हम जल बचाएंगे तो गर्मी घटेगी, वरना पसीना भी नहीं बचेगा। याद रखें, हम जल की आखिरी पीढ़ी हैं जो नल खोलते ही पानी पाते हैं। अगली पीढ़ी को शायद बोतल खरीदनी पड़े। जल है तो कल है, इस महत्व को समझना होगा। इसी दिन हमने कार्यक्रम ग्राम सभा में एक वार्ता सुनी जिसका विषय था गर्मियों में कुक्कुट पालन प्रबंधन कैसे करें। प्रस्तुत वार्ता बहुत ही लाभप्रद लगी। दिनांक 26 मई को हमने बुंदेली सुगंध में कहानी संस्कार सुनी। कहानी बहुत सीख दे गई। इसी दिन हमने कार्यक्रम युववाणी में वार्ता धूम्रपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव और दूसरी वार्ता पेड़ों का प्राकृतिक महत्व बहुत ही शिक्षाप्रद एवं ज्ञान से परिपूर्ण लगी। दिनांक 27 मई को कार्यक्रम हिंदी महक में कमल किशोर जी का हिंदी काव्य पाठ एवं युववाणी कार्यक्रम में प्रसारित कॉफी हाउस ग्राम सभा में प्रसारित वार्ता विद्यार्थियों के लिए एक नई पहल तनाव से सफलता तक बहुत ही अच्छी लगी। उपरोक्त सभी वार्ताकारों को हमारा दिल से आभार। दिनांक 28 मई को कार्यक्रम बुंदेली सुगंध में हमने एक बुंदेली कहानी देर है अंधेर नहीं सुनी। कहानी हमें बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक लगी। समस्त कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ता, सहयोगियों, संकलनकर्ताओं, वार्ताकारों और उद्घोषकों को हमारा दिल से साधुवाद स्वीकार हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय रविंद्र सर जी ने खुले मन और सार्वजनिक रूप से आपका आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा कि अगर किसी भी श्रोता के कार्यक्रम संबंधी कोई भी शिकायत आप तक पहुंचती है तो आप उसका त्वरित निदान करते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि दिनांक 28 मई को सुबह की सभा में प्रसारित कार्यक्रम आपकी पसंद के लिए लगभग अधिकांश श्रोताओं की शिकायत थी कि उनके मेल शामिल नहीं किए गए, सिर्फ पत्रों को शामिल किया गया। ये शिकायत आपके संज्ञान में आते ही आपने उन शिकायतों का त्वरित निदान किया और रात्रि में ही कार्यक्रम मन भवन में लगभग अधिकांश श्रोताओं के मेलों को स्थान दिया गया। आपके इस निर्णय का हम सभी श्रोता सम्मान और स्वागत करते हैं। शेष अगले पत्र में, तब तक के लिए आप हमारा अभिवादन स्वीकार करें। इसी के साथ हमारे चंद्रेश जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: नियमित श्रोता है हमारे, आपका देखिए आत्मीय और भावनात्मक पत्र हम तक देखिए प्राप्त हो ही जाता है
0: जी।
1: एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह की जैसे प्रेरणादायक जो कहानी आपने सुनी है और ऐसे ही कुछ पर्यावरण से संबंधित चर्चाएं, वार्ताएं युवाणी ग्राम सभा बुंदेली सुगंध कॉफी हाउस मन भवन जैसे कार्यक्रमों में भी आपने देखिए रुचि दिखाई है। आपने पर्यावरण संरक्षण हो, जल संरक्षण हो, पशु पक्षियों का महत्व हो या धूम्रपान के दुष्प्रभाव या विद्यार्थियों के तनाव जैसे प्रबंधन, इस पर महत्वपूर्ण वार्ताएं आपने सुनी है। विशेष रूप से आपने देखे जल है तो कल है की बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी ये आखिरी पीढ़ी होगी जो नल से जल ले रही है। आने वाले समय में अगर हम नहीं चेते तो जल संकट की समस्या बिल्कुल हो सकती है। इसी प्रकार कार्यक्रमों में प्रसारित देखे आपने कहानी हो, काव्य पाठ हो, लोकरंग में बुंदेली लोकगीत हो, सबकी सराहना की है, विशेष रूप से वार्ताकारों कलाकारों की। आपकी बधाइयां रेडियो के माध्यम से देखिए पहुंच ही रही है और आपने बहुदी के संबंध में भी बात कही है कि जो भी समस्याएं होती हैं उनका त्वरित समाधान होता है। तो देखिए हम और श्रोता एक दूसरे के पूरक हैं। हम जो भी करते हैं हम श्रोताओं के लिए करते हैं, तो श्रोता अगर हमसे कोई गुजारिश करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसको अमल में लाना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसी तरह आकाशवाणी के प्रति अपना स्नेह बनाए रखें, सुझाव और प्रतिक्रियाएं समय समय पर भेजते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए
0: जी। और सर, अब माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का समय हो रहा है, तो अब कार्यक्रम को हम समेटते हैं।
1: बिल्कुल, और जाने से पहले जैसा कि हम बताते हैं बहुत ही कार्यक्रम में डाक का पता और ईमेल का पता
0: जी। डाक का पता है कार्यक्रम भवदीय द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001 और ईमेल bhavdiyachhatarpur@gmail.com bhavdiyachhatarpur@gmail.com।
1: तो सुनते रहे कार्यक्रम
0: भवदीय
1: आकाशवाणी
0: छतरपुर।
2: अभी आप सुन रहे थे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार का था। प्रस्तुतकर्ता थे रविंद्र कुमार प्रजापति। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारा विशेष प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
4: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट

0: करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
2: कोई बोले राम राम।
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किड बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किड बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है।

0: आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा

0: ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूं तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो

0: स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है। ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो,

युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो,

या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत

और लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की

शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मन

इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने, नेपाल बैलेंस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। इसी गीत को सुनना चाहा था सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता भावना और प्राची नीमा ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सिलसिला से, स्वर है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है शिवहरी ने।

इस गीत को सुनना चाहा था कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबरा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत को सुनना चाहा था शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुर्बानी से। आवाजें कंचन, मनहर उदास और आनंद की। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। गांधी चौक रोपड़ से हरदोबी का, बलविंदर मीका, ज्योति बिरक और मीका बिरक ने।

0: कुर्बानी फिल्म के इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो ये फटा है।
3: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां की पांचवी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकिया। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना मुश्ताक सायरा को लिए बिना वापस लौट जाता है। फजी मुश्ताक से सायरा को ना लाने की वजह पूछती है। कुछ दिनों बाद लोगों की कानाफूसी सुनकर वो मुश्ताक को दोबारा भेजती है। और अब आगे।

0: अरे फाता, करीम ने खबर भेजी है कि सारे को भेज दूं।
1: सारे को भेज दूं? वो क्या बोझ है हम पर? भेज दूं? अरे सारे को बुलाना ही है तो खुद आते या मुश्ताक को ही भेजते?
0: फाता, तुम हर बात उल्टी ही क्यों लेती हो? सारे उनकी बहू है और उन्होंने मुश्ताक को भी भेजने की बात कही है। मुश्ताक आए तो सारे को भेज देना।
2: सलाम अब्बू।
0: अरे अरे आओ बेटा, आओ, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी।
2: सलाम अब्बी।
0: सलाम, खुदा सलामत रखे। फाता, सारे को बोल चाय बना लाए।
1: बोलती हूँ।
2: आपको अब्बू का पैगाम तो मिल गया होगा?
0: हाँ बेटा, हाँ, मिल गया, और अभी उसी पर बात हो रही थी।
2: अच्छा।
0: इशारे को कैसे भेजा जाए? अब तुम आ ही गए हो तो साथ ही लेते जाना।
1: कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अभी ऐसी भी क्या जल्दी है कि सारे को ले जाओगे? कुछ दिन मायके में रहती तो उसे भी थोड़ा आराम हो जाता। वहां जाकर तो गृहस्थी की चक्की में पिसना ही है।
0: पाता, सारे को बोल तैयार हो जाए।
1: अरे मुश्ताक पहले सारे से तो मिल ले, फिर जाने की बात तो हो ही जाएगी।

0: लीजिए, चाय लीजिए।
1: सारे, तुम ठीक हो?
0: हाँ ठीक हूँ।
1: तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है।
0: मुझे मुझे आपसे बात करनी है।
1: क्या?
0: मेरी बात को जरा आराम से सुनना होगा।
1: अरे पहले बात तो कहो।
0: मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
1: क्या मेरे साथ नहीं जा सकती? पर क्यों?
0: अब मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूँ, पर उस घर में नहीं।
1: उस घर में नहीं का क्या मतलब है तुम्हारा?
0: मुश्ताक, हमारी उम्र ही कितनी है कि मैं अपने को घर गृहस्थी में झोंक दूं?
1: सारे, घर गृहस्थी संभालने को तुम एक भार समझ रही हो? हमारा घर ही कितना बड़ा है, 4 लोगों का परिवार है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं?
0: मुश्ताक, मैं परिवार का विरोध नहीं कर रही, लेकिन अपना परिवार होना।
1: अपना परिवार? तो क्या वो हमारा परिवार नहीं है जिसमें हम रहते हैं?
0: परिवार तो मियां बीवी से बनता है मुश्ताक।
1: सारे, तुम्हें क्या हो गया है?
0: देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें

0: मेरी बात माननी ही होगी।
1: सारे बात मानने या ना मानने की नहीं है, तुम जो कह रही हो वो मुमकिन नहीं है।
0: इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते।
1: सारे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
0: तो तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? हम एक अलग घर में प्यार से रहेंगे मुश्ताक।
1: सारे क्या हम उस घर में प्यार से नहीं रहते? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है और तुम ये कैसे सोच सकती हो?
0: मुश्ताक, मैं कुछ और नहीं जानती, तुम्हें अलग घर लेकर रहना ही होगा।
1: सारे ये जिद गलत है, तुम शायद परिवार की अहमियत को नहीं समझती। और जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा भी होती है और परिवार उसका आधार होता है।
0: मैं अपना परिवार चाहती हूँ मुश्ताक, सिर्फ मैं और तुम, बस।
1: सारे तुम्हें उस घर में क्या मेरे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते?
0: करते होंगे, पर मैं अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी मुश्ताक।
1: तुम समझने की कोशिश करो।
0: मैं बस इतना जानती हूँ मुश्ताक कि अगर तुम अलग घर लेकर रहने को तैयार हो तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, नहीं तो।
1: सारे मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूँ? मेरे अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी मुझ पर है और ऐसा करना मुझे किसी भी सूरत में पसंद नहीं।
0: तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं?
1: सारे क्या कि अम्मी अब्बू को संभालना अपने जीवन को नष्ट करना होता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? ये ख्याल तुम्हारे जहन में आ भी कैसे सकता है?
0: मुश्ताक, मैं तुमसे बहस नहीं करती। तुम अपने अम्मी अब्बू को कहां कैसे रखते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और एक बात और सुन लो कि जब तक तुम्हारे अम्मी अब्बू उस घर में हैं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।
1: सारे ये तुम नहीं कह रही, मेरी सारे ऐसी नहीं जो परिवार को ठुकरा दे, मुझे अपनों से अलग कर दे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कह सकती, वो नहीं कह सकती कि मैं उन अम्मी अब्बू को छोड़ दूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने को मेरी सारा नहीं कह सकती, वो मुझसे प्यार करती थी।
0: मुश्ताक, सारे आज भी तुमसे प्यार करती है, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
1: सारे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
0: अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर नहीं रुक सकते थे क्या? पर तुम नहीं रुके और अब भी तुम मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
1: सारे मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
0: तुम मुझे प्यार नहीं करते, अगर करते होते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर रुक सकते थे, पर तुम नहीं रुके और तुम अब भी मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते।
1: सारे समझने की कोशिश करो।
0: तुम्हें बताना होगा मुश्ताक कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं।
1: सारे

0: अरे ओ फाता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो?
1: मेरी फूल सी बच्ची।
0: अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो?
1: मार डाला, मार डाला।
0: किसको मार डाला? किसने मार डाला?
1: हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
0: साफ साफ बता कि हुआ क्या है।
1: सारे, हाय मेरी बच्ची।
0: क्या हुआ सारे को?
1: हाय, भाग फूट गए उसके। हाय मेरी बच्ची।
0: क्या हुआ उसे?
1: सारे का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं क्या जानती थी कि मेरे भाई का लड़का ऐसा निकलेगा। मेरे ही सारा को मारा।
0: सारे को मारा?
1: हाय या अल्लाह।
0: लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना?
1: अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों से सारे यहीं रह रही थी। मेरे बीमार होने पे आई थी, सो मुश्ताक को पसंद नहीं था।
0: अरे फाता, ऐसा भी क्या कि कोई इस बात के लिए अपनी ही बीवी को मारे?
1: अरे मर्दों का क्या है, वो तो चाहता ही है कि औरत उसकी गुलाम बन कर रहे।
0: सुना है कि मुश्ताक इससे पहले भी सारे को लेने आया था।
1: अरे इसीलिए तो नाराज हो गया और सारे को मार बैठा होगा।
0: लेकिन मुश्ताक तो सारे के अपने मामा का लड़का है, फिर भी ऐसा व्यवहार। छी छी।
1: अरे औरत मर्द का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ हर रिश्ता खत्म हो जाता है। नहीं तो कोई अपनी पत्नी को इस तरह मारे।
0: सारे कहाँ है?
1: अपने कमरे में रो रही है मेरी बच्ची। उसका सारा सपना चूर चूर हो गया। हाय, अब नहीं भेजूंगी उसे। हाय, जो मेरी बच्ची को मेरे सामने मार सकता है, वो मेरे पीछे उसके साथ कैसा बर्ताव करता होगा। जीते जी मर गई।
0: फाता, तू अपने भाई करीम को तो समझा ही सकती है कि मुश्ताक पर लगाम रखे। अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है, ये तो अच्छी बात नहीं।
1: अपने भाई से क्या बात करूं, उसे तो आराम ही है। एक नौकरानी मिल गई है जो सारा काम घर का करती है। नौकरानी की तरह हो गई है मेरी बच्ची वहां जाकर। अब मैं अपनी बच्ची को उस जालिम के साथ नहीं भेजूंगी।
0: लेकिन मुश्ताक मानेगा?
1: मानेगा नहीं तो क्या, अपनी बच्ची को मरने के लिए भेजूंगी नहीं, नहीं।
2: लेकिन औरत का असली घर तो शौहर का घर ही होता है।
0: लेकिन शौहर भी तो ऐसा नहीं होता कि हर बात पर मारे पीटे।
1: अब तुम ही लोग फैसला करो कि मैं अपनी सारे को उस जालिम मुश्ताक के साथ भेजूं या नहीं।
0: मियां बीवी के बीच झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसे में ना भेजना ठीक नहीं। पर पहले तू अपने भाई से बात तो कर ले और मुश्ताक से भी बात कर ले।
1: बात क्या करना, वो तो चाहेंगे ही कि सारे वहां आ जाए। उन्हें तो एक नौकरानी चाहिए, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
0: अब चलो री, बहुत देर हो गई है।
3: हाँ, चलो
0: चलो चलो चलो।

0: आखिर हुआ क्या है?
1: अरे मुश्ताक ने सारे को मेरे सामने जालिमों की तरह मारा।
0: फाता, तू ये क्या कह रही है? मुश्ताक ने सारे को मारा? नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।
1: अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है मुश्ताक को सारे को मारते हुए।
0: कहीं कुछ गलती हुई है, हमें उनसे बात करनी चाहिए और इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती।
0: अरे इस बात को फैलने से हमारी बदनामी ही होगी।
1: या खुदा, अब बदनामी क्या होगी? सारे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई।
0: ओफो, तुमसे बात करना भी? सारे कहाँ है?
1: अरे रो रो कर बुरा हाल है बेचारी का। जिसका पति इतना निर्दयी हो उसका क्या होगा? हाय रे मेरे बच्चे।
0: अरे फाता, अब तू चुप कर। तू इस बात को क्यों बढ़ा रही है? ये ठीक नहीं है। इससे उनके जीवन में दुख ही बढ़ेगा।
1: तुम चुप करो जी, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं खूब समझती हूँ। सारे मेरी बच्ची है और उसके सुख दुख को तुमसे ज्यादा मैं समझती हूँ।
0: फाता, तू जो कर रही है वो सारे को कभी खुशी नहीं दे सकता। तू इस तरह से शोर मचा कर उनके जीवन में समस्या को ही बढ़ाएगी। अरे हमें दोनों से बात करनी चाहिए जिससे इस बात को यहीं खत्म किया जा सके।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानबूझकर मैं अपनी बच्ची को उस मुश्ताक के साथ अब नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी।
0: फाता, तू बात को बढ़ा रही है, ये ठीक नहीं है। हमें इस बात को सुलझाना है ना कि।
1: चुप करो, चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब जो होगा मैं ही करूंगी। तुम्हें बीच में बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है।
0: या अल्लाह,

0: फादा
1: आ गए।
0: फादा, ये औरतें क्या बातें करते हुए जा रही थी?
1: अरे वही बातें करेंगी ना जो देखा है उन्होंने।

0: सारा, मेरी बच्ची इस तरह क्यों बैठी है?
1: अम्मी, अम्मी, ये तूने अच्छा नहीं किया।
0: अरे सारे, तू कह रही है कि मैंने अच्छा नहीं किया? अरे मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया है।
1: अम्मी ये ठीक नहीं हुआ है, ये घर की बात थी अम्मी, मेरे और मुश्ताक के बीच की बात थी, और तुमने इस बात को पूरे गांव में फैला दिया।
0: अरे सारे तू नहीं जानती, ये मर्द ऐसे मुट्ठी में नहीं आते। अब देख मैं कैसे उसे ठीक करती हूँ।
1: अम्मी तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे।
0: तू क्या समझती है मैं तेरी दुश्मन हूँ? मैं जो कर रही हूँ वो तेरे भले के लिए कर रही हूँ।
1: अम्मी इससे ना तो मेरा भला हो सकता है और ना ही किसी और का, इससे सिर्फ बदनामी और बर्बादी हो सकती है। अम्मी
0: सारे सारे तू अभी बच्ची है, दुनियादारी नहीं समझती, और सुन ले मैं जो कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ। बेटी
1: आज जो हुआ है उससे किसका भला होगा अम्मी, और ये सब तुमने ही कहा था करने को।
0: अच्छा ही हुआ कि जल्द उस जालिम की असलियत का पता चल गया, जो मेरे सामने एक माँ के सामने उसकी बच्ची को मारे, वो पीछे क्या कुछ नहीं कर सकता है।
1: अम्मी बस भी करो, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
0: ये सब क्या मुझे अच्छा लग रहा है।

0: मुझे भी दुख है, तू मेरी बेटी है और मेरे सामने तुझे कोई मारे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोल, तू ही बोल, ये अच्छा लग सकता है क्या?
1: मुश्ताक मेरा शौहर है अम्मी, और मैं उससे प्यार करती हूँ। और फिर एक परिवार में ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मुश्ताक ऐसा नहीं है अम्मी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
0: चुप कर तू, मैंने देख लिया अपनी आँखों से कि मुश्ताक कैसे प्रेम करता है, और अगर उसका प्रेम ऐसा ही है तो तुम्हें उसके पास दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्ताक और मुश्ताक जैसे मर्द औरत को सिर्फ घर की नौकरानी बनाकर रख सकते हैं, मार सकते हैं। और
1: छी अम्मी, तू नाहक परेशान मत हो, इस बात को यही खत्म कर दे, सब ठीक हो जाएगा अम्मी।
0: अब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें नौकरानी सा काम करने और मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। देर से ही सही, मुश्ताक का असली चेहरा तो सामने आ ही गया, और उस करीम और फजी की नियत का भी, जो तुझे महज एक औरत के रूप में नौकरानी समझते रहे हैं और उससे भी बदतर व्यवहार करते रहे हैं। अब देखना, मैं उन्हें बता दूंगी कि फाता की बेटी को दुख देने का मतलब क्या होता है। अगर मैंने उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम नहीं।
1: अम्मी, अब तू कुछ नहीं करेगी, जो तूने कर दिया वही बहुत है, और उससे जो कुछ भी हुआ उसे मैं कबूल कर लूंगी। अब और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी।
0: अब तू मुझे समझाएगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं तेरी दुश्मन हूं बेटी? तेरी माँ हूं मैं, जो कुछ भी करूंगी तेरे भले के लिए ही करूंगी। और मैं उन्हें समझा दूंगी कि औरत पर जुल्म करना इतना आसान नहीं होता। उन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे।
1: अम्मी, तू अब कुछ भी नहीं करेगी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे तू इतना तूल दे रही है। एक परिवार में ऐसा होता ही रहता है अम्मी, हमें इसे संभालना है, ना कि बिगाड़ना। मैं बात करूंगी मुश्ताक से।
0: अब तू उस जालिम से नहीं मिलेगी
1: अम्मी,
0: और तुझे संभालना होता कब का संभाल चुकी होती, और इतने दिनों में मुश्ताक तेरी मुट्ठी में होता, जैसे खजरी अपने शौहर को अपने इशारों पर रखती है। तुझसे कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो मैं करूंगी, और इस बीच में तुम्हें बोलने या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है
1: अम्मी।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिस्किया की पांचवी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे हरीश, लोकेश, सुप्रिया, नीलम और अंशु। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 134वें संस्करण में कहा कि नीदरलैंड में विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई हैं और यह ऐसा क्षण था जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। इस दिशा में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनका पालन करें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुजालपुर में आज से कॉलेज चलो अभियान एवं महाविद्यालय में प्रवेश का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अहिल्याबाई का जीवन सुशासन, देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का अनुकरणीय आदर्श है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस महीने की 29 तारीख को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एप्लीकेशन के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। और आईपीएल क्रिकेट में फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की।

महिला सभा सुन रही सभी सखियों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे कुछ ठंडा ठंडा। बहनों, कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे धूम्रपान निषेध दिवस पर। आज 31 मई को पूरा विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मना रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए धूम्रपान से दूरी बनाना कितना आवश्यक है। आज आधुनिकता भरी जीवन शैली में कई लोग तनाव और दिखावे के कारण धूम्रपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शुरुआत अक्सर शौक से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत का रूप ले लेती है। यह लत केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। बहनों, धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लाखों लोग इस लत की वजह से असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि आज युवा वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है। कई बार लोग इसे आधुनिकता और

व्यक्तित्व का प्रतीक मान बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि धूम्रपान व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य तीनों को कमजोर करता है। सखियों, धूम्रपान का प्रभाव केवल सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। घर परिवार के सदस्य, छोटे बच्चे और आसपास के लोग भी इस धुएं से प्रभावित होते हैं। इसे हम निष्क्रिय धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इससे बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां और महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आज आवश्यकता केवल जागरूकता की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की भी है। यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो वह इस आदत को छोड़ सकता है। परिवार का सहयोग, सकारात्मक वातावरण, योग, व्यायाम और अच्छी दिनचर्या व्यक्ति को नशे से दूर रखने में सहायक बनते हैं। हम बहने भी कोशिश करें कि हमारे परिवार में आसपास ऐसी व्यक्ति हैं जो इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो हम भी इस मुहिम में उनका साथ अवश्य निभाएं। सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। माता पिता हमारे जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है। वे केवल हमें जन्म ही नहीं देते बल्कि अपने अथक परिश्रम, स्नेह और मार्गदर्शन से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। एक बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक। वे हमें चलना, बोलना, अच्छे संस्कार अपनाना और जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। सखियों, प्रत्येक वर्ष 1 जून को पूरे विश्व में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। यह दिन उन महान आत्माओं को सम्मान देने का अवसर है जिनके प्रेम, त्याग, संघर्ष और संस्कारों से हमारा जीवन संवरता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ममता, करुणा और स्नेह का अथाह सागर होती है। वह स्वयं कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को खुश रखने का प्रयास करती है। बच्चे की छोटी सी तकलीफ भी माँ को बेचैन कर देती है। उसकी दुआओं में हमेशा अपने बच्चों का सुख और सफलता ही शामिल होता है। वही पिता परिवार की वह मजबूत नींव होते हैं जो अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे रहते हैं। पिता का प्रेम अक्सर कठोर अनुशासन और जिम्मेदारियों के पीछे छिपा होता है, लेकिन उनका हर संघर्ष अपने परिवार की खुशियों के लिए ही होता है। माता पिता का जीवन त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। सखियों, आज के समय में व्यस्त दिनचर्या, मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवारों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। कई बार बच्चे अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। वृद्धावस्था में माता पिता को सबसे अधिक आवश्यकता अपने बच्चों के साथ सम्मान और अपनत्व की होती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही माता पिता जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। बहनों, भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन लोगों ने हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमें हमेशा संकल्पित होना चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि जीवन में सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माता पिता का आशीर्वाद उससे कहीं अधिक मूल्यवान होता है।

0: फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

बात करते हैं 1 जून को मनाए जाने वाले वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस की। इस दिवस का उद्देश्य दूध के पोषण महत्व, स्वास्थ्य लाभ और मानव जीवन में उसके योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास से लेकर बुजुर्गों की हड्डियों की मजबूती तक दूध हर आयु वर्ग के लिए लाभकारी माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में दूध का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही दूध और दुग्ध उत्पाद हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हमारे पर्व त्योहारों, पूजा पाठ और पारंपरिक व्यंजनों में भी दूध का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। बहनों, दूध केवल पोषण का स्रोत ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल है। लाखों किसान और पशुपालक दुग्ध उत्पादन से अपनी आजीविका चलाते हैं। दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज के समय में बच्चों में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। ऐसे में दूध और उससे बने पौष्टिक पदार्थों को दैनिक जीवन में शामिल करना आवश्यक हो गया है। दूध शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन उचित मात्रा में दूध का सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं, दांत स्वस्थ रहते हैं तथा शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। दूध से बने दही, पनीर, छाछ और घी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सखियों, दूध स्वास्थ्य का आधार है। यदि प्रतिदिन संतुलित मात्रा में दूध का सेवन किया जाए तो शरीर स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बना रहता है। इसलिए हमें अपने दैनिक भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थों को अवश्य शामिल करना चाहिए। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बढ़ते तापमान की। ग्रीष्म ऋतु अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लेकर आती है और इस समय तो सबसे ज्यादा गर्म दिन नौतपा चल रहे हैं। इस मौसम में यदि सावधानी न रखी जाए तो शरीर में पानी की कमी, थकान, लू लगना और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का रस शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। अधिक देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए और हल्का, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम जैसे मौसमी फल शरीर में ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो इनका सेवन भी हमको करते रहना चाहिए। गर्मी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बासी भोजन और खुले में रखी खाद्य सामग्री से दूरी बनानी चाहिए क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने से बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। उन्हें समय समय पर पानी पिलाना चाहिए और अत्यधिक गर्म वातावरण से बचाना चाहिए। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। यदि हम थोड़ी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाएं तो ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते हुए स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। सखियों।

बात तो हुई गर्मी के मौसम में हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, और अब चलते हैं उन सात बातों की तरफ, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सात बातें यानी सात वचन की तरफ। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से राष्ट्रहित में सात महत्वपूर्ण बातें कही। यह बातें उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ते तेल दाम, विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के संदर्भ में की थी। सर्वप्रथम, एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक सोना आयात करने वाले देशों में है। सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदा जाता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है, इसलिए हम लोगों को एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदना। दूसरी बात, विदेश यात्रा ना करें। विदेश यात्रा में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अभी आपको पर्यटन पर जाना है तो भारत में कई ऐसी सुंदर सुंदर जगह है, आप वहाँ जा सकती है। पेट्रोल डीजल की बचत करें। भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए पेट्रोल डीजल की बचत करें। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। कहीं जाना है तो एक दूसरे के साथ एक गाड़ी पर जाएं। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएं। विदेशी वस्तुओं की जगह भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। स्वास्थ्य और आयात दोनों कारणों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्राकृतिक खेती और ईवी को बढ़ावा दें। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, प्राकृतिक खेती अपनाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही गई। कोविड काल की तरह जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स अपनाने की बात कही गई, ताकि ईंधन की बचत हो सके। देशवासी इन सात बातों यानी इन सात वचनों का पालन करें तो भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रह सकते हैं। तो हम सबको भी कोशिश करनी है कि हम इन सात वचनों का पालन करें।

सचियों, गर्मी की तपती दोपहर में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए तो कितनी राहत महसूस होती है। आज खाना खजाना में हम लाए हैं आपके लिए गोंद कतीरे का शरबत बनाने की विधि। वैसे तो यह हमारे दादी नानी के समय से बनता चला आ रहा है, पर इस समय यह काफी ट्रेंड में है। तो चलिए नोट कीजिए गोंद कतीरा शरबत में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए गोंद कतीरा 2 छोटे चम्मच, ठंडा दूध 1 गिलास, चीनी या मिश्री स्वादानुसार, गुलाब का शरबत 1 बड़ा चम्मच, बर्फ के टुकड़े, इलायची पाउडर थोड़ा सा। शरबत बनाने के लिए रात भर गोंद कतीरा को पानी में भिगो दें। सुबह तक यह फूलकर जेली जैसा हो जाएगा। अब 1 गिलास ठंडा दूध लें, उसमें चीनी या मिश्री मिला लें। भीगा हुआ गोंद कतीरा डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें गुलाब शरबत, इलायची पाउडर और साथ ही बर्फ के टुकड़े डाल दें। लीजिए, ठंडा ठंडा गोंद कतीरा शरबत बनकर तैयार है। बहनों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू और गर्मी से बचाता है, पेट की जलन कम करता है। सखियों, गर्मी की दोपहर ज्यादा बड़ी होती है। इस समय दोपहर का भोजन करने के बाद 3 से 4 बजे तक हल्की भूख लगने लगती है, तो उसके लिए कुछ ठंडा चटपटा खाने का मन करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं चटपटे मूंग दाल के पानी बड़े। इनको बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल धुली वाली 1 कप, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, हींग चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार और साथ ही चाहिए थोड़ा तेल पकौड़े तलने के लिए। और चटपटे पानी के लिए हमें चाहिए पानी 1 लीटर ठंडा, पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, हरा धनिया थोड़ा सा, अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, भुना जीरा पाउडर और साथ ही चाहिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और सादा नमक। सबसे पहले मूंग दाल बड़ों को बनाने के लिए जो दाल हमने ली है, आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। अब उसको धो लें अच्छे से, उसका पानी निकाल दें और मिक्सर में इसको पीस लें। इसका हमें बारीक पेस्ट तैयार नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है। अब इसमें आप हींग, हरी मिर्च और नमक मिला लें और अब इस घोल को 2 मिनट अच्छे से फेंट लें ताकि यह हल्का और फूला हुआ हो जाए। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और छोटे छोटे पकौड़े सुनहरे होने तक सेक लें। अब इसका पानी तैयार कर लें। एक बर्तन में ठंडा पानी लें, इसमें नमक, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर और बाकी सब मसाले मिला लें। अब इस पानी में जो हमने बड़े सेके थे उनको डाल दें। इनको 15 से 20 मिनट आप इस पानी में भिगोकर रखें। अब यह सर्व करने के लिए तैयार है। तो इस गर्मी आप भी यह ठंडे चटपटे मूंग दाल के बड़े बनाइए और खाइए। सखियों, गर्मी में अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।

0: स्वस्थ रहिए और अब अपनी कार्यक्रम
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स ग्वालियर।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु गीत।

मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार है संगीता राय।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासिया एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान

0: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: फिल्म हेल्का जमुना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं

चलती रही, कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सेमरी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मादा चीता निरवा और उसके 3 शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर क्रूलो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। इससे अब यहां चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांडिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की तीन पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि

0: पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहे।

0: रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रूपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के

0: दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर लक्षद्वीप केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर प्रसार भारती और मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। जय हिंद बाल साथियों। बाल मित्रों, सफलता इस बात में नहीं कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, बल्कि इस बात में है कि आपने क्या बदलाव किया। इसी प्रेरक विचार के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का अंक लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अर्चना दीदी। प्रजा का पालन पोषण संतान की तरह करना ही सच्चा राज धर्म है। बाल साथियों, ये विचार है मालवा साम्राज्य की महान वीरांगना और लोकमाता के रूप में प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई होलकर का, जिनकी आज यानी 31 मई को है 301वीं जयंती। महारानी अहिल्याबाई ने 18वीं सदी में अपने कुशल सुशासन, जन कल्याण और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए कई अद्वितीय कार्य किए। रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई वर्ष 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। इनके पिता मानकोजी शिंदे किसान और गांव के मुखिया थे। बाल साथियों, मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह मालवा के संस्थापक मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडीराव के साथ हुआ था। वर्ष 1754 में कुमेर के युद्ध में पति की मृत्यु के बाद और इसके बाद ससुर व पुत्र की मृत्यु के बाद इन्होंने शासन की बागडोर बखूबी संभाली, महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और 28 वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। बाल साथियों, इन्होंने भारत भर में मंदिरों, धर्मशालाओं, घाटों, कुओं आदि का निर्माण कराया। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और ये ही नहीं, अयोध्या, मथुरा व सोमनाथ जैसे पवित्र स्थलों का उद्धार भी कराया। बाल साथियों, भगवान शिव की परम भक्त थी और सदैव शिव की प्रतिमा अपने हाथों में लिए रहती थी। उन्हें प्रजावत्सला और न्यायप्रिय शासिका माना जाता है। उनके सिक्कों पर नंदी और बेलपत्र अंकित होते थे जो उनकी शिव भक्ति को दर्शाते थे। उनका नाम इतिहास में एक परोपकारी और धर्मपरायण शासक के रूप में दर्ज है। इन्होंने अपने राज्य के धन को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बल्कि उसे जन कल्याण और ईश्वर की धरोहर समझा। बाल साथियों, वे न्यायप्रिय शासिका थी। उनके दरबार में अमीर हो या गरीब, सभी को समान न्याय मिलता था। वे स्वयं प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनती और उनका समाधान करती थीं। ऐसी महान महारानी अहिल्याबाई को उनकी जयंती पर हमारा शत शत नमस्कार।

मन और बाल साथियों, अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं। जन स्वास्थ्य सलाह के चलते हम कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को सूचित कर रहे हैं। बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए आप सभी बिना आवश्यकता के घर से ना निकलें। यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो सर को, हाथों को व चेहरे को सूती कपड़े से ढककर निकलें। घर से निकलने से पूर्व ठंडा पानी या कोई शीतल पेय पदार्थ का सेवन करें। हल्के रंगों के सूती कपड़े पहने। दोपहर में 11 बजे

0: लू के लक्षण दिखने पर चिकित्सक से परामर्श लें और आपात स्थिति पर इन नंबरों यानी 108 और 102 पर संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। बाल मित्रों, जीवन अनमोल है और इसे संभालना हम सबका परम कर्तव्य है, परंतु कुछ आदतें या यूं कहें कुछ ऐसी गलत आदतें होती हैं जो इसे छोटा करती हैं, जैसे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन। ऐसी ही एक लत है तंबाकू सेवन की। बाल साथियों, बड़ों की बात करें तो सिगरेट, ई सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा जैसे उत्पादों के माध्यम से भी तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 13 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के 38 मिलियन से अधिक किशोर किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ये आंकड़ा दर्शाता है कि जागरूकता की आवश्यकता पहले से अधिक है, इसीलिए तंबाकू के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में तंबाकू की खपत को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों की वकालत करने के लिए मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। बाल साथियों, प्रत्येक वर्ष तंबाकू नियंत्रण में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नया विषय निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2026 का विषय है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। बाल साथियों, लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस का नारा है जीवन को हाँ कहें और तंबाकू को ना। इसका एक और प्रमुख नारा है आपका जीवन अनमोल है, इसे छोटा ना करने दें। बाल साथियों, तंबाकू के सेवन से शरीर का हर अंग प्रभावित होता है। इससे शरीर पर नकारात्मक व गंभीर प्रभाव होते हैं, जैसे श्वसन विफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, मस्तिष्क के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, ध्यान में कमी आती है, चिड़चिड़ापन व मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा हृदय गति व रक्तचाप में भी असामान्य परिवर्तन होता है। लंबे समय तक सिगरेट के सेवन से याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसके अलावा फेफड़ों का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो बाल साथियों, तंबाकू के सेवन से जीवन प्रत्याशा औसतन 10 साल कम हो जाती है। तो जब तक इसकी लत के शिकार व्यक्ति से छोड़ने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक एक लंबी स्वस्थ जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इसीलिए संकल्प लें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तभी सार्थक होगा इस दिन को मनाना। बाल साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुलदस्ता के अंतर्गत सुनवाते हैं गीतिका पाराशर से उनका काव्य पाठ।
1: मैं अम्मा की बगिया से कुछ कविताएं आप लोगों को सुनाने आई हूँ। मेरी पहली कविता है अम्मा चली गई मामा घर। अम्मा चली गई मामा घर, अम्मा कुछ दिन वहीं रहेंगी। अम्मा चली गई मामा घर, अम्मा कुछ दिन वहीं रहेंगी। चौका पूछे, आंगन पूछे, पूछे शगुन चिरैया, शेरू बिल्ला तितली पूछे और पूछे गौरैया। चौका पूछे, आंगन पूछे, पूछे शगुन चिरैया, शेरू बिल्ला तितली पूछे और पूछे गौरैया। बाबा दादी बुआ पूछती पूछे छोटा भैया, बाबा दादी बुआ पूछती पूछे छोटा भैया, बूढ़ी ग्वालन चाची पूछे पूछे श्यामा गैया। अम्मा की बगिया भी पूछे खिले फूल कुम्हलाए, अम्मा की बगिया भी पूछे खिले फूल कुम्हलाए, कहते हम तो तभी खिलेंगे जिस दिन अम्मा आए। नॉन तेल सब कहाँ धरा है, नॉन तेल सब कहाँ धरा है, चुप चुप पूजा का कमरा है, चून खत्म हो गया टीन में, पीने पानी नहीं भरा है। घर में चुपके बिल्ली आई, बिल्ली खा गई दूध मलाई, आधा खाया आधा छोड़ा, थोड़ा इधर उधर बिखराई। घर में चुपके बिल्ली आई, बिल्ली खा गई दूध मलाई, आधा खाया आधा छोड़ा, थोड़ा इधर उधर बिखराई। बगिया के पौधे हैं प्यासे, कल तक थे हंसते मुस्काते, फूल खिलाना आज हाथ से गिरकर छूटे ढेर बताशे। कुछ दिन चलो संभालूं घर को, मैं भी देखूं भालूं घर को, कुछ दिन चलो संभालूं घर को, मैं भी देखूं भालूं घर को, वस्तु सभी व्यवस्थित कर दूं, सुथरा साफ बना लूं घर को। तब तक घर का ध्यान रखूंगी जब तक अम्मा नहीं रहेगी, तब तक घर का ध्यान रखूंगी जब तक अम्मा नहीं रहेंगी। अम्मा चली गई मामा घर, अम्मा कुछ दिन वहीं रहेंगी। दो दिन की तो बात है बिटिया, फिर मैं वापस आ जाऊंगी, दो दिन की ही बात है बिटिया, फिर मैं वापस आ जाऊंगी, दो दिन की ही बात है बिटिया, फिर मैं वापस आ जाऊंगी, मामा मामी नाना नानी सबसे भी मैं मिल आऊंगी। कच्ची अमिया आम पाल के मीठे खाना इसी साल के, कच्ची अमिया आम पाल के मीठे खाना।

इसी साल के। गुजिया खस्ता माड़ा इमली भी तुमको खाने लाऊंगी, गुजिया खस्ता माड़ा इमली भी तुमको खाने ले आऊंगी। कहकर गई आएंगी अम्मा, कहकर गई आएंगी अम्मा, फिर तो अम्मा यहीं रहेंगी। अम्मा चली गई मामा घर, अम्मा कुछ दिन वहीं रहेंगी। मेरी एक और कविता है जिसका शीर्षक है आई गर्मी। आई गर्मी और हाट में आए मीठे आम, आई गर्मी और हाट में आए मीठे आम, मैंने कहा पिताजी से आ जाना लेकर शाम, मैंने कहा पिताजी से आ जाना लेकर शाम, लेकिन आज पिताजी को था खूब ढेर सा काम, लेकिन आज पिताजी को था खूब ढेर सा काम, काम किया था देर शाम तक किया नहीं आराम, तुम बतलाओ फिर वे कैसे लेकर आते आम। आई गर्मी और हाट में आए मीठे आम, मुझे पिताजी बाग ले गए कुछ था उसका नाम, मुझे पिताजी बाग ले गए कुछ था उसका नाम, ठंडी हवा घनी छाया थी वहाँ नहीं था घाम, ठंडी हवा घनी छाया थी वहाँ नहीं था घाम, हवा चली थी आम गिरे थे मिले मुझे बिन दाम, हवा चली थी आम गिरे थे मिले मुझे बिन दाम, घर में आए सबने खाए मीठे मीठे आम, घर में आए सबने खाए मीठे मीठे आम। अब मैं आप लोगों को ठंडी ठंडी आइसक्रीम वाली कविता सुनाऊंगी। सूरज दादा आग जलाते गर्मी है भरपूर, सूरज दादा आग जलाते गर्मी है भरपूर, इतनी जल्दी आया पसीना सूरज फिर भी दूर। चंदन चाचा लेकर आए टंटन कुल्फी ठेला, चंदन चाचा लेकर आए टंटन कुल्फी ठेला, सबने खाई बर्फ मलाई उमस को दूर धकेला, सबने खाई बर्फ मलाई उमस को दूर धकेला, आह मलाई आह मलाई चंदन चाचा बोले, आह मलाई आह मलाई चंदन चाचा बोले, उनकी मीठी बोली जैसे कोई शिकंजी घोले, उनकी मीठी बोली जैसे कोई शिकंजी घोले, दोपहर जैसे तैसे निकले और शाम आएगी, सूरज दादा आग बुझाओ गर्मी ठंडाएगी, दोपहर जैसे तैसे निकले और शाम आएगी, सूरज दादा ताप बुझाओ गर्मी ठंडाएगी। दूर खड़ी थी बूढ़ी काकी चुप चुप सी होती थी, दूर खड़ी थी बूढ़ी काकी चुप चुप सी होती थी, देखी ठंडी मीठी कुल्फी मन मन में रोती थी। चंदन चाचा बोले काकी खा लो अब की बार, चंदन चाचा बोले काकी खा लो अब की बार, पैसे फिर चुकता कर देना खा लो आज उधार, पैसे फिर चुकता कर देना खा लो आज उधार, ना ना भैया मैं ना खाऊं कुल्फी कभी उधार, ना ना भैया मैं ना खाऊं कुल्फी कभी उधार, वस्तु के बदले में पैसा यह विनिमय व्यापार, वस्तु के बदले में पैसा यह विनिमय व्यापार। चंदन चाचा हंस के बोले बात कही ये निकी, चंदन चाचा हंस के बोले बात कही ये निकी, इसी बात पे ठंडी कुल्फी खाओ अम्मा फ्री की, इसी बात पे ठंडी कुल्फी खाओ अम्मा फ्री की। अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी रोटी बनाने वाली। मैंने आज बनाई रोटी, मैंने आज बनाई रोटी चार बड़ी छह छोटी छोटी, मैंने जब चूल्हा सुलगाया आँखों में था धुआं समाया, मैंने जब चूल्हा सुलगाया आँखों में था धुआं समाया, रोटी एक तवे के ऊपर एक गोल बैठी चौके पर, रोटी एक तवे के ऊपर एक गोल बैठी चौके पर, एक हवा से फूल रही थी चूल्हे में वो झूम रही थी, फिर चूल्हे में आलू भूने आ स्वाद में पोषण दूने, फिर चूल्हे में आलू भूने आ स्वाद में पोषण दूने, बाटी चटनी हरे आम की खट्टी खट्टी बिना दाम की, बाटी चटनी हरे आम की खट्टी खट्टी बिना दाम की, बैगन भरता मीठी खीर खाकर सोजा बारे बीर, बैगन भरता मीठी खीर खाकर सोजा बारे।

0: रोटी पर घी साथ मही है, रोटी पर घी साथ मही है, गर्जन बोले स्वास सही है, खेल खेल में बनी रसोई भोजन को आया ना कोई, खेल खेल में बनी रसोई भोजन को आया ना कोई, अम्मा ने तब टेर लगाई भोजन कर लो बहना भाई, अम्मा ने तब टेर लगाई भोजन कर लो बहना भाई, तेज भूख थी हम सब दौड़े खेल खिलौने पीछे छोड़े।
1: बाल साथियों, अभी आप गुलदस्ता के अंतर्गत सुन रहे थे गीतिका पाराशर से उनका काव्य पाठ। बाल साथियों, आप सभी बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और किसी भी देश के बच्चे उस देश के कर्णधार होते हैं। बच्चे भोले, मासूम और नादान होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बच्चे कई सारे गंभीर अपराधों का शिकार हो रहे हैं और बाहर ही नहीं वे घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। युद्धों से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे प्रतिदिन अकल्पनीय भयावहता का सामना कर रहे हैं। बाल साथियों, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 2 में से 1 बच्चा यानी 1 अरब बच्चे किसी न किसी प्रकार की हिंसा के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार 11,649 बच्चे मारे गए या अपंग हो गए, 8,655 बच्चों को भर्ती किया गया और उनका इस्तेमाल किया गया, और यही नहीं 4,356 बच्चों का अपहरण किया गया, वहीं 1,470 बच्चे यौन हिंसा का शिकार हुए। बाल साथियों, अपहरण के सर्वाधिक मामले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया और नाइजीरिया में दर्ज हुए हैं। पीड़ितों में लगभग 30% लड़कियां थीं। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए आक्रामकता का शिकार हुए बच्चों को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष 4 जून को मनाया जाता है आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1982 में की गई थी। इस दिन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय संगठन सेमिनार, अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा सशस्त्र संघर्षों, युद्धों और हिंसा का शिकार हुए बच्चों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना है। ये दिन सरकारों व समाजों को याद दिलाता है कि वे बच्चों को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से बचाएं। पर्यावरण को बचाना है, कुछ करके दिखाना है, पर्यावरण के हित में सबको जगाना है। पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, न सिर्फ पर्यावरण बचाना है, जग को सुंदर बनाना है। जी हां बाल साथियों, पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि यदि हमने इसे सुरक्षित नहीं किया तो निकट भविष्य में इसके भयंकर परिणाम हम सभी को भुगतने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समूचे विश्व में पर्यावरण पर एवं मानव विकास की सतत प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बाल साथियों, पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आगामी 5 जून को संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों को प्रकृति का सम्मान करने और जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। बाल साथियों, इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। इसे स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। इस दिवस को दुनिया के 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख आयोजन है। बाल साथियों, प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम की मेजबानी के लिए एक देश का चुनाव किया जाता है। ये देश मुख्य वैश्विक समारोह का आयोजन करता है। प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई थीम निर्धारित की जाती है। वर्ष 2026 की थीम जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है, जो पृथ्वी द्वारा दिए जा रहे संकेतों और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर जोर देती है। बाल साथियों, ये दिन ग्लोबल वार्मिंग, अत्यधिक जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और जैव विविधता के नुकसान जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा करने का मुख्य विषय है। केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों, स्कूलों, कॉरपोरेट जगत को व्यक्तिगत स्तर पर पेड़ लगाने और सफाई अभियान जैसे जमीनी कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये दिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए विकास करने का संदेश देता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ हवा, पानी और उपजाऊ भूमि पर्यावरण की देन है, जिनके बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो संकल्प लें, एक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। तो आगामी विश्व पर्यावरण

दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बाल साथियों, इस पर्यावरण को जब भी हम सभी देखते हैं तो हम सभी के मन में ये सवाल उठता है ना कि ये सुंदर सुंदर पेड़, ये सुंदर सुंदर फूल, ये पंछी, ये सब कहाँ से आए हैं। तो आइए सुनते हैं इस गीत के माध्यम से, पेड़ ये कहाँ से आए हैं।

बाल साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया था फिल्म काश से। गायक स्वर थे किशोर कुमार, साधना सरगम और साथियों के। फारूक केसर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। बाल साथियों, किसी भी चीज की अति हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा व नकारात्मक प्रभाव डालती है। यदि हम किसी भी चीज का इस्तेमाल उसके जरूरी होने तक करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि उसी की आदत दिन रात करते रहें तो ये ठीक नहीं है। जैसे मोबाइल व इंटरनेट, इनका आविष्कार हमारे समय की बचत व अन्य फायदों के लिए किया गया है, लेकिन आज हम सभी इसका दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो आइए आज इस चर्चा के माध्यम से बात करते हैं कि मोबाइल एवं इंटरनेट के इस्तेमाल से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाल साथियों, मोबाइल एक ऐसा गैजेट है जिससे बहुत अधिक रेडिएशन निकलता है और इस कारण बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास धीमा हो जाता है या कभी कभी रुक भी जाता है। बच्चा स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, साथ ही वो कई भावनात्मक समस्याओं से जूझता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम शेयर करने से दिमाग की ग्रे टिश्यू सिकुड़ जाती है। छोटे बच्चे जल्दी बोलना नहीं सीख पाते हैं और उनकी बात करने की क्षमता व रचनात्मकता में कमी आ जाती है। इसके अलावा उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। बाल साथियों, बच्चे जिद्दी और आक्रामक होते जा रहे हैं और जैसे ही उनसे मोबाइल छीन लिया जाता है तो कई बार वे हिंसक भी हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे वास्तविक दुनिया से, दोस्तों से दूर होकर अकेले रहना पसंद करते हैं। बाल साथियों, स्क्रीन शेयर न कर पाने पर वे एंजाइटी और तनाव जैसी मानसिक समस्याओं की गिरफ्त में आ जाते हैं। और यदि स्वास्थ्य की बात करें तो ब्लू लाइट के कारण आंखों में सूखापन, जलन और निकट दृष्टि दोष जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक जगह बैठकर स्क्रीन देखने, शारीरिक गतिविधि ना होने से बच्चों का वजन बढ़ जाता है। बाल मित्रों, फोन से निकलने वाले रेडिएशन और देर रात तक मोबाइल के इस्तेमाल से अनिद्रा की समस्या भी पैदा हो जाती है। बाल साथियों, इंटरनेट एक शैक्षणिक उपकरण, संसाधन और समुदाय प्रदान करता है जो बच्चे के सीखने और विकास में सहायक होता है। वहीं इसके उपयोग में जोखिम भी है, जैसे अनुचित सामग्री का सामना करना, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन गेमिंग के शिकार होने और अन्य गलत आदतों के लगने की संभावना का बढ़ जाना। बाल साथियों, अधिक चिंताजनक बात ये है कि डिजिटल मीडिया छोटे बच्चों पर माता पिता और बच्चे के बीच की बातचीत को बाधित करके प्रभाव डालता है, जो स्वस्थ भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो बाल साथियों, कोई भी चीज हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है तो उससे दूर हटने के लिए किसी पॉजिटिव एक्टिविटी से खुद को जोड़ें, क्योंकि किसी आदत से बाहर निकलना विल पावर से ज्यादा एक सिस्टम और अनुशासन बनाने की प्रक्रिया है। और बाल साथियों, अब इस चर्चा को विराम देते हैं और ले चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है रोचक जानकारी। बाल साथियों, आगामी 3 जून को है विश्व साइकिल दिवस, जिसको मनाने का उद्देश्य परिवहन के इस किफायती, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल साधन को बढ़ावा देना है। तो आज रोचक जानकारी में कुछ रोचक तथ्य बता रहे हैं सबके चहेते परिवहन के साधन के बारे में। बाल साथियों, इस पहली जानकारी में हम बताते हैं कि शुद्ध हिंदी में साइकिल का नाम क्या है। तो इसका नाम है द्विचक्र वाहिनी और अंग्रेजी में से बाईसाइकिल कहते हैं। बाल साथियों, आधुनिक साइकिल की नींव वर्ष 1817 में जर्मनी के बैरन कॉल वॉन ड्रेस द्वारा रखी गई थी। प्रारंभ में इसका नाम था लॉफ मशीन और इसके अलावा इसे ड्रेसाइन भी कहा जाता था। इनकी रनिंग मशीन में पैडल नहीं होते थे, इसे पैरों से धक्का देकर चलाया जाता था। और इस अगली जानकारी में बात करते हैं, साइकिल में घूमने वाले पैडल पहली बार वर्ष 1860 के दशक में फ्रांस में जोड़े गए थे। वर्ष 1885 में जॉन कैंप स्टर्ली ने आधुनिक साइकिल का निर्माण किया था, जिसे सेफ्टी बाईसाइकिल कहा गया था। बाल साथियों, चीन और नीदरलैंड्स ऐसे दो देश हैं जहां साइकिल लोगों का परिवहन का मुख्य साधन है। नीदरलैंड्स की कुल आबादी से ज्यादा वहां बाईसाइकिल मौजूद हैं। और इस अगली जानकारी में, बाल साथियों, एक मील साइकिल चलाने में उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है जितनी पैदल चलने में, परंतु ये पैदल चलने की तुलना में तेज गति प्रदान करती है। और बाल साथियों, हम ये भी बता दें कि साइकिल पर्यावरण के लिए सबसे बेहतरीन परिवहन का साधन है, क्योंकि साइकिल से पूरी

पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन होता है। ये ईंधन और प्रदूषण मुक्त होती है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इस जानकारी में बात करते हैं साइकिल की औसत स्पीड के बारे में। तो हम आपको बता दें कि एक औसत साइकिल की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमारे भारत में पहली साइकिल वर्ष 1890 में मुंबई की सड़कों पर चली थी। तो बाल साथियों, ये तो थी रोचक जानकारी साइकिल के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अवश्य पसंद आएगी। हमें बड़ा खेद होता है आप सभी कार्यक्रमों से संबंधित समीक्षात्मक पत्र भवदी कार्यक्रम में भेज, लेकिन बाल सभा कार्यक्रम के लिए आप कोई पत्र प्रेषित नहीं करते हैं। तो हम इस कार्यक्रम के बाद आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बाल सभा को भी सुने और उसके लिए भी समीक्षात्मक पत्र भवदीय कार्यक्रम तक प्रेषित करें। आज आपका और मेरा साथ बस इतना ही। चलने का समय हो रहा है, तो अनुमति दीजिए अपनी अर्चना दीदी को। जय हिंद बाल साथियों। अभी बच्चे अपना कार्यक्रम बाल सभा सुन रहे थे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती और मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से।

यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। युवा श्रोता युववाणी कार्यक्रम शाम 5:02 पर सुनेंगे, जो आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:00 से। 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें गीत संगीत और चर्चा के साथ ही सजीव फोन इन कार्यक्रम

सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम में 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बज रहे हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। नमस्कार।

0: के आरंभ में सुनिए न्यूज हेडलाइंस जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स कल नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। यह संवाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा रक्षा और सुरक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 181 करोड़ लाख रूपये की राशि के सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर अकोदिया सुंदरसी और पोचानेर के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। साथ ही हमारा दूसरा विषय है नेट बैंकों के उपयोग में सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। दोस्तों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखें खास ख्याल पर। दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने और समाज में तंबाकू से जुड़ी समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। इस दिन को मनाने की पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सन 1987 में की गई थी। दोस्तों, तंबाकू का सेवन आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसमें मुख्य रूप से धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट आदि शामिल हैं। तंबाकू का सेवन किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन युवाओं और किशोरों में इसका प्रचलन अधिक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तंबाकू के सेवन से शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सबसे आम बीमारी फेफड़ों का कैंसर है, जो कि तंबाकू सेवन करने वालों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा हृदय रोग, दांत और मसूड़ों की समस्या, अस्थमा, उच्च रक्तचाप और पेट संबंधी रोग भी तंबाकू के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, तंबाकू का धुआं केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सरकारें, गैर सरकारी संगठन, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दिन रैली, सेमिनार, जागरूकता अभियान और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को तंबाकू के

हानिकारक प्रभावों से अवगत कराया जाता है। स्कूलों कॉलेजों में छात्र छात्राओं को तंबाकू से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका संदेश पहुंचाया जा सके। दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और देश के लिए मूल्यवान योगदान दे सकता है। तंबाकू से दूरी बनाकर हम न केवल अपनी सेहत बचा सकते हैं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण भी स्थापित कर सकते हैं। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है बल्कि यह हमें हमारे जीवन और समाज की सुरक्षा की याद दिलाता है। तंबाकू से दूर रहना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी सेहत, परिवार और समाज की भलाई के लिए इस हानिकारक आदत से पूरी तरह बचना चाहिए। यदि हर व्यक्ति तंबाकू से बचता है तो समाज स्वस्थ, मजबूत और खुशहाल बन सकता है। इसलिए हमें इस दिवस का महत्व समझना चाहिए और इसे जागरूकता और परिवर्तन का अवसर बनाना चाहिए। आइए साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचे पर चर्चा करने का। साथियों आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। अब लोग घर बैठे ही बिजली बिल जमा कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तथा खरीदारी भी कर सकते हैं। इन सभी सुविधाओं में नेट बैंकिंग का विशेष महत्व है। नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक से जुड़े अधिकांश कार्य बिना बैंक जाए आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी अर्थात ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। साथियों नेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। लोग किसी भी समय अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और विभिन्न प्रकार के भुगतान कर सकते हैं। परंतु यदि उपयोगकर्ता थोड़ी भी लापरवाही करता है तो साइबर अपराधी उसका बैंक खाता खाली कर लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ऑनलाइन सुरक्षा के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग कई तरीकों का उपयोग करते हैं। वे नकली कॉल, फर्जी वेबसाइट, ईमेल, मैसेज या मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं। साथियों कुछ लोग लालच देकर लिंक भेजते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते ही व्यक्ति की सारी निजी जानकारी चोरी हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नेट बैंकिंग का सुरक्षित उपयोग करने के लिए मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हो। जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या सरल शब्दों को पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। साथियों समय समय पर पासवर्ड बदलते भी रहना चाहिए। इसके साथ ही मोबाइल में स्क्रीन लॉक और बैंकिंग ऐप में सुरक्षा सुविधाएं चालू रखनी चाहिए। साथियों सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई का उपयोग करके नेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते। साइबर अपराधी इन नेटवर्क के माध्यम से आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। हमेशा अपने निजी और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग कार्य समाप्त होने के बाद खाते से लॉग आउट करना अवश्य चाहिए। साथियों आजकल OTP फ्रॉड बहुत सामान्य हो गया है। बैंक हमेशा ग्राहकों को चेतावनी

चेतावनी देते हैं कि ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। ओटीपी, एटीएम पिन और पासवर्ड पूरी तरह गोपनीय होते हैं। यदि किसी व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर भी इन्हें पूछे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंक ऐसे फोन कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करते। साथियों, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो उसे तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए और साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समय पर कार्रवाई करने से नुकसान कम हो सकता है। साथियों, सरकार और बैंक भी लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। दोस्तों, नेट बैंकिंग आधुनिक जीवन की एक उपयोगी सुविधा है, लेकिन इसका सुरक्षित उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता हमें बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखे खास ख्याल पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की जनता से 7 प्रमुख अपील की गयी जिनको मानना हमारा दायित्व है। दोस्तों उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो सके। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को कहा, इसके लिए आप निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करें। दोस्तों सोने की खरीदारी ना करें, देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रखने के लिए ऐसा करें। सोना विदेशों से मंगाया जाता है जिसे आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च होगी, इसलिए अपील की गई है सोना नहीं खरीदें। दोस्तों उन्होंने कहा विदेशी यात्राएं ना करें, अगले एक वर्ष तक इससे बचें ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। साथियों स्वदेशी अपनाएं, वोकल फॉर लोकल को अपनाने को उन्होंने कहा है। दोस्तों खाने की तेल की खपत घटाएं क्योंकि तेल का ज्यादा उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, साथ ही विदेशों से तेल मंगाने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। प्राकृतिक खेती अपनाएं, कृषि क्षेत्र में आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती और जैविक खाद की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों इन सभी बातों का हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी विदेशी मुद्रा की बचत करनी है। दोस्तों अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का, आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर चर्चा करने का। साथियों, भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ परिवार, संस्कार और रिश्तों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हमारे समाज में माता पिता को भगवान के समान सम्मान दिया गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का संदेश हमें यही सिखाता है कि माता पिता का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथियों, वास्तव में माता पिता का सम्मान ही हमारी संस्कृति का आधार है। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। वे हमें जन्म देने के साथ साथ जीवन जीने की सही शिक्षा भी प्रदान करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी खुशी के लिए वे अनेक कठिनाइयों और त्यागों का सामना करते हैं। दोस्तों, भारतीय परंपरा में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा करके आदर्श प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के आधुनिक युग में भौतिकवाद और व्यस्त जीवन शैली के कारण कई लोग अपने माता पिता को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, लेकिन हमें हमारे माता पिता का ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यस्ततम जीवन में समय निकालकर कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए। यह हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, माता पिता ने जिस प्रेम और समर्पण से हमारा लालन पोषण किया है, उसी भाव के साथ हमें भी उनके साथ रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, माता पिता का सम्मान करने से परिवार में प्रेम, शांति और एकता बनी रहती है। जिन परिवारों में बड़ों का आदर किया जाता है, वहाँ बच्चों में भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। दोस्तों, माता पिता का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। हमें उनके विचारों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, कठिन समय में उनका साथ देना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सच्चे सम्मान का वे प्रतीक हैं। हमें कभी भी उनसे कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और यही हमारी सभ्यता की पहचान भी है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए अब आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम युवाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और
1: मीडियो विपर्य आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र दीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: aquí, Somya.
1: अभी आपने सुना फिल्म मुस्कुरा के देख जरा का ये गीत। गीत महबूब का था, संगीत दिया था रंजीत बरोट ने, आवाज थी के और साथियों की।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज में फिल्म एक्शन रिप्ले का गीत। गीत इरशाद कामिल का था, संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ कि छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़ी गई, जाओ भाई।
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभी आप सुन रहे थे सत्य प्रकाश की शब्द रचना निखिल के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था डोंट नो वाई, न जाने क्यों। आवाज थी शान श्रेया घोषाल की। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म दबंग से। गीत जलीस शेरवानी का है, संगीत दिया है साजिद वाजिद ने, आवाज है सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की।

दबंग फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोता, हम आपको बता दें अपने यहां से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

पहले हमारी सभा के विशेष कार्यक्रम। हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद 6 बजे आप सुनेंगे विश्व तम्बाकू दिवस के अवसर पर छतरपुर में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा होगा शाम 6:30 पर। कलाकार होंगे तातू रेगवार व साथी। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर। रात 8:08 हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम नगर विकास की। ये तो थे हमारी सभा के शेष कार्यक्रम। अब हम आपको बता दें अपने यहां से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में सुबह 7:20 पर हिंदी महक क्रम में सुनिए वार्ता ईश्वरी के काव्य में श्रृंगार। वार्ताकार होंगे प्रभुदयाल श्रीवास्तव। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा सुबह 7:30 पर।

सुबह 8:30 पर होगा धारावाहिक गीत गीता, शीर्षक होगा विभूति योग। 9 बजे होगा लोक गीतों का कार्यक्रम, लोक रंग, कलाकार होंगी ज्योति राय। 9:30 पर आनंद लीजिए एक ही संगीतकार में विशाल शेखर के संगीतबद्ध किए हुए कुछ फिल्मी गीत। मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग होगा 10:75 पर, आपकी पसंद श्रोता सुन सकते हैं सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 बजे होगा फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। 12 बजे होगा आपकी फरमाइश, 12:30 पर सुनिए संग्रहालय से। 1 बजे सुनिए स्वास्थ्य दर्पण, लोक संगीत का प्रसारण किया जाएगा दिन के 1:30 पर। सुगम संगीत होगा 1:45 पर। इन सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी, इसमें कल आप सुनेंगे सवाल हमारे जवाब आपके, अंक 122, साथी होगी।

वार्ता नदियों की स्वच्छता, वार्ताकार होंगे रोहन सिंह यादव। फिल्म संगीत होगा 5:40 पर। शाम 6 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग का आनंद लीजिए 6:30 पर। कलाकार होंगे मुन्ना लाल खरे व साथी। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा 7:20 पर। इसमें आप सुनेंगे रमतूला कार्यक्रम, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की, साथ ही होगी भेंट वार्ता मछली पालन कैसे करें विषय पर। विषय विशेषज्ञ होंगे वीरन डेकवार। रात 8 बजे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। रात 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक। रात 10 बजे होगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी का गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये तो थे हमारे यहाँ से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से न्यूज हेडलाइंस अनुप्रसारित करेंगे।

0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश होलकर को उनकी मेधा, करुणा और लोक कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल पूरा हो गया है। जनगणना के द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम पेपर या आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर छतरपुर में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति की।
3: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 31 मई को पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना और तंबाकू से होने वाली बीमारियों और इससे होने वाली मृत्यु को कम करना, तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, तंबाकू सेवन से न केवल कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। ये दिन लोगों को तंबाकू छोड़ने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

0: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर छतरपुर में भी लोगों को जन जागरूकता फैलाने के लिए अनेक कार्यक्रमों से उन्हें जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति छतरपुर में और नशा उन्मूलन इकाइयों द्वारा नशा निषेध के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर नशे से होने वाली बीमारियां और नशा कैसे आपके सामाजिक, मानसिक और स्वास्थ्यगत जीवन को नष्ट कर देता है, हमें जानकारी देते हुए आप हैं नशा उन्मूलन की दिशा में कार्यरत और भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संजय शर्मा अर्जरिया।
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, वास्तव में जी विश्व का तो दिवस माना ही जाता है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यकता हमें भारत वर्ष में है, क्योंकि सबसे अधिक तंबाकू का जो सेवन किया जाता है वो भारत वर्ष में किया जाता है। ओरल जो तंबाकू खाते हैं किसके, वो हमारे भारत वर्ष में अधिक इसका सेवन किया जाता है। स्मोकिंग एक तंबाकू के रूप में जो होता है वो यूरोप में और अन्य देशों में किया जाता है, लेकिन जो घिसके तंबाकू खाई जाती है वो भारत वर्ष में बहुत अधिक खाई जाती है, जिसके दुष्परिणाम देखने को पड़ रहे हैं कि मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है और कई प्रकार के। मैं विगत 36 वर्षों से जो मानसिक विक्षिप्तों की सेवा करता आ रहा हूं, तो मैंने देखा है कि जो खाली पेट यदि जर्दा तंबाकू घिसके खाते हैं और एक दिन नहीं कई कई वर्षों तक खाते रहते हैं, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब हम पहली बार किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, जैसे कि हम तंबाकू खाते हैं, हमारा जो शरीर है वो ईश्वर की देन है, बहुत अच्छा शरीर है हमारा जो हमें ईश्वर ने दिया गया है, कि हम जब पहली बार नशा करते हैं तो हमारा शरीर मना करता है। जैसे हम तंबाकू खाते हैं हमें उल्टी होती है, हम तंबाकू पीते हैं तो हमें ठसकी आती है, हमारा सिर घूमने लगता है, हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें अजीब सा लगने लगता है, तो हमारा शरीर मना करता है कि ऐसे नशीले पदार्थों को हमारे शरीर में मत डालें। हमने प्रायः ये देखा है कि जब व्यक्ति अत्यधिक मेहनत करता है या टेंशन में रहता है, तनावग्रस्त रहता है, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करना प्रारंभ कर देता है। प्राचीन काल से ही भारत वर्ष में तंबाकू उगाई जाती है और तंबाकू खाई जाती है, उसके साथ चूना, कत्था, सुपारी ली जाती है, लेकिन जब इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है और खास तौर से खाली पेट, तो निश्चित ही इसके दुष्परिणाम होते हैं, वो कई प्रकार से सामने आते हैं। मुंह का कैंसर जो बहुत ही खतरनाक है, हम इसकी ओर पूरे विश्व में अग्रणी, जो कि एक वास्तव में हमारे लिए अभिशाप है, एक चैलेंजिंग है, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और खास तौर से आपके माध्यम से हम ऐसे बच्चों से निवेदन करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं, उनके माता पिता यदि तंबाकू खाते हैं तो बच्चे अपने माता पिता से कहें कि पिताश्री अब आप तंबाकू खाना छोड़ें, अन्यथा मैं भी खाऊंगा आपके साथ। जब बच्चे खाना प्रारंभ करेंगे पिता के साथ, तो निश्चित ही उन्हें शर्म लगेगी और वो उस नशे से दूर हो।
0: सर, लगातार आप कई राज्यों में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, और हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी आपको सम्मान मिला, भोपाल से भी सम्मान मिला जो SBI ने आपको दिया। तो आप क्या देखते हैं जो मानसिक रूप से लोग बीमार हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें लगता है कि ये तो सुपारी है, इससे क्या ही हो जाएगा, फिर भी लगातार इसकी गिरफ्त में आते हैं और देख रहे हैं कैंसर जैसी महामारी जो बीमारी है वो उनको होती है, और जहां मुखिया बीमार हुआ या फिर वो असमय मृत्यु के रूप में चला गया तो कितने कष्ट होते हैं। तो जो मानसिक रूप से लोग बीमार हो रहे हैं, शारीरिक रूप से, तो क्या कारण आप देख रहे हैं, कैसे लोगों की जो मनोवृत्ति है इस ओर झुक रही है। भारत सरकार लगातार काम कर रही है, पुनर्वास केंद्र काम कर रहे हैं कई, जो पुनर्वास केंद्र, फिर भी उनकी संख्या बढ़ रही है, माने नशे के लोग बढ़ रहे हैं, तो इस संदर्भ में क्या कुछ आपने शोध किया है, क्या देखा है।
1: निश्चित ही जब एक बालक या विद्यार्थी अत्यधिक मेहनत करना चाहता है, दिन रात अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसको रातों को जागना पड़ता है, या जो नाइट शिफ्ट करते हैं, तो वो किसी न किसी प्रकार का नशा करना प्रारंभ कर देते हैं। तंबाकू क्या है, एक सरल, सुलभ और सस्ता मिल जाता है, इसका नशा भी थोड़ा खतरनाक रहता है। तो कह सकते हैं कि जब विद्यार्थी रहते हैं तो वो रात को जागने के कारण स्टडी ज्यादा करते हैं, तो नशे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दूसरी बात है, यदि किसी को किसी भी प्रकार का तनाव होता है, जब वो तनावग्रस्त रहता है तो वह नशे का सहारा लेता है, और जब नशे की गिरफ्त में आता है, नशा एक ऐसा पदार्थ है, पहली बार तो शरीर मना करता है, और लेकिन जब आप उसको बार बार शरीर को पीते हैं या उसको देते हैं, फिर उसी समय पर उसी टाइम पर शरीर भी मांगने लगता है। यदि आप थोड़े से भी तनावग्रस्त हुए तो शरीर मानेगा, फिर यदि आप सुबह उठ के

0: शौच क्रिया के लिए जाते हैं, पेट साफ नहीं होता है, तो आप एक साइकोलॉजिकल है कि आप जब नशा करते हैं तो उनका पेट साफ हो जाता है। ये निश्चित है कि नशा तंत्र का तन मस्तिष्क को उत्सर्जित करता है, जागृत करता है, लेकिन आप ये सोचे कि उससे पेट साफ हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। नशा मुक्ति केंद्र जितने होना चाहिए हमारे देश में वो नहीं है। एक तो पहली चीज, नशा नहीं करना चाहिए। यदि आपने नशा कर लिया है और नशे की गिरफ्त में आ गए हैं तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कई ऐसे नशा मुक्ति केंद्र है कि वहाँ भर्ती रहकर विमुक्त हो सकते हैं। और कई बार कई ऐसे प्रकरण मेरे सामने आए हैं कि जो नशे से ग्रस्त हो गए थे, घर परिवार बर्बाद हो रहा था, वो नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचकर नशा से दूर हो गए हैं और आज सुखी जीवन जी रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से उन्हें निवेदन करना चाहते हैं कि शासन को नशा मुक्ति केंद्र अभी और प्रयास करना चाहिए और खोलना चाहिए, जो कि पूर्णतः निःशुल्क हो तो और अच्छा रहेगा, सुलभ रहेगा और व्यक्ति नशे की ओर अग्रसर नहीं होगा और मुक्त हो जाए।
1: जी, आज देख रहे हैं लगातार युवाओं की एक बड़ी आबादी नशे की गिरफ्त में आ रही है और कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं।
0: निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो युवा है वो शौक शौक में दिखाने के लिए सिगरेट ओस्ट वाहिनी का सेवन करते हैं। वो यदि एक लड़का नशे के छल्ले बनाता है तो दूसरा उसका अनुसरण करके प्रयास करता है और फिर वो धीमे धीमे लत की ओर आ जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड में प्रायः देखने को मिलता है कि वो गांजा पीने लगते हैं। अभी आपने तो वो पुरानी घटना बताई, हम अभी कल की घटना बताते हैं कि एक गांजे के सेवन करने के कारण उसने, उस व्यक्ति ने अपने शरीर का एक पार्ट भी काट दिया है। वो सब गांजे के नशे के कारण हुआ है। तो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा न करे, न तम्बाकू का करे, न गांजे का करे, न सिगरेट का करे, न अल्कोहल का करे। लेकिन जब नशा करोगे तो उसके परिणाम दुष्परिणाम होंगे। एक तो आर्थिक रूप से उसकी क्षति होगी, दूसरी सामाजिक क्षति होती है। शादी विवाह में दिक्कतें आती हैं, समाज में उसका पतन होता है कि फलाने का बच्चा नशा करने लगा है। तो नशा, हर प्रकार का नशा, सभी प्रकार के नशे खराब होते हैं। यदि आपको नशा करना है तो किसी अच्छी चीज का करो, जैसे किताबें पढ़ने का करें, बागवानी का करें, या किसी अच्छी चीज की ओर अग्रसर हो तो निश्चित ही वो तनाव नहीं ले। यदि आप तनाव लेते हैं और अत्यधिक तनाव लेते हैं तो फिर उस चीज को अचीव करने के लिए, जैसे आपने किसी चीज के गोल निर्धारित किए हैं कि हमें ऐसा करना है, इतना पढ़ना है, हमें ऐसी नौकरी चाहिए है, हमें ऐसा करना है, हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं। जब गलत रास्तों में चले जाने के कारण हम नशे का सहारा लेते हैं। तो एक तो पहली चीज, हम नशा ना करें, गलत रास्ता ना जाएं और अच्छा कार्य करें, सुपाच्य भोजन लें, अच्छा भोजन लें और पानी का ज्यादा सेवन करें।
1: एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी यानी ATF सेंटर बनाए हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी ये सेंटर है, अलग अलग राज्यों में है। तो इस संदर्भ में जाने कैसे उनका ट्रीटमेंट होता है, अगर कोई भी व्यक्ति इस सेंटरों तक पहुंचता है तो वो कैसे पहुंचे?
0: आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जब मैं नशा पे लेक्चर देने IPS और DSP को गया था तो मैंने भी इस पे रिसर्च और अध्ययन किया। हर जिले में एक ऐसा केंद्र है, वो भर्ती नहीं करते उन नशेड़ियों को, हर जिले में जिला अस्पताल में भर्ती तो नहीं करते हैं, लेकिन नशा छुड़ाने के लिए वो एक अच्छा प्रकार का नशा देते हैं, एक गोली खिलाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कार्यों में लगा रहे और खराब प्रकार का नशा न करे। तो उसकी मात्रा, दो गोली देते थे, फिर एक गोली करी, फिर आधी की, फिर धीमे धीमे ऐसा करते रहते हैं, हफ्ते में एक देने लगते हैं। तो यदि कोई आपके आसपास ऐसा कोई नशेलची है जो कि अत्यधिक हिंसक हो गया, वायलेंस फैला रहा है, नशा ज्यादा करने लगा है, तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में, जिला अस्पताल में ऐसा केंद्र है, वहाँ के प्रभारी डॉक्टर से मिले और इस निःशुल्क नशा केंद्र जिला अस्पताल में केंद्र है, उससे नशा छुड़ाने का प्रयास करें। लेकिन वो जिला अस्पताल भर्ती नहीं करता है, केवल उसको सुबह से एक दवाई दे देते हैं, वहीं जाके खाना पड़ती है, वो घर लाने के लिए नहीं देते हैं, तो धीमे धीमे उसकी नशा की प्रवृत्ति कम होती जाती है।
1: जी,
0: स्लोगन है, नशा नाश का कारण है, तो हम नशा ना करें। यदि आप नशा करते हैं तो निश्चित से हमारा नाश होना है, समाज में पतन होना है, आर्थिक पतन, सामाजिक पतन और सब प्रकार के पतन होते हैं, तो नशा नाश का कारण है।
1: श्रोताओ, हर वर्ष नशा निषेध दिवस की कोई न कोई थीम होती है। इस वर्ष नशा निषेध पर हम सभी संकल्प लें कि तंबाकू छोड़ेंगे, जीवन में स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नागरिकों को जागरूक करते हुए आप हैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर सुनील शर्मा।
2: देखिए, तंबाकू और गुटखा दो ऐसी चीजें हैं कि शरीर को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके साथ किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है, और आज पूरा शहर, पूरा प्रदेश, पूरा देश इसकी गिरफ्त में है। इससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है, बशर्ते लोग प्रयास करें तो मुक्त हो सकते हैं। जहां तक सवाल इसकी आदत का है, तो इसको आदत को छुड़ाने के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयां आती हैं। अगर रोगी चाहे और उसका इच्छा शक्ति हो तो वो छोड़ सकता है। बाकी जहां तक रहा

0: सवाल गुटखे का, ये गुटखा बहुत प्रचलन में है, लोगों के पास आर्थिक संकट होता है फिर भी वो गुटखा जरूर खाते हैं, बच्चे हों स्त्रियां हों पुरुष हों हर आयु के लोग इसको खाते हैं। इसमें कंटेंट जहां तक होता है, मिलावट जो होती है सुपारी होती है, तंबाकू होती है, और आपका ये कैल्शियम ऑक्सीडेट होता है, जिंक होता है, और कत्था होता है, चूना होता है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ये सब कुछ कर सकता है। अगर अपन देखें तो ओरल ल्यूकोप्लेकिया से होता है, सेमिकोसिस फाइब्रोसिस होती है जिससे मुंह खुलना कम हो जाता है, ये इसका खास लक्षण है। ये जीभ के कैंसर के लिए, मुंह के कैंसर के लिए, गले के कैंसर के लिए, पेट के कैंसर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत तेजी से होते हैं, मसूड़े इससे खराब होते हैं, हार्ट की बीमारियां इससे होती है, इसको पानी टोबैको हार्ट कहते हैं, जो नलियां होती है वो इससे बढ़ने लगती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एक जहां तक मस्तिष्क पे देखें इसका बहुत प्रभाव हो जाता है, इसका असर खत्म होती है, दिमाग के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है, उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, उसकी याददाश्त कम हो जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, पेट का अल्सर ये पैदा करता है इस तरीके से, और इसमें प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। ओलिगोस्पर्मिया होता है जिसमें क्या होता है कि लोगों में शुक्राणु की मात्रा कम हो जाती है, ये इसमें खास होता है।
1: जी
0: एसिडिटी खास बीमारी है, ब्लड प्रेशर इससे बहुत ज्यादा बढ़ता है, स्मरण शक्ति इससे कमजोर होती है, बहुत सारी चीजें शरीर में नुकसान पहुंचाता है। अगर छोड़ने की इच्छा शक्ति हो तो इंसान होम्योपैथी दवाई का सहारा लेके इसको छोड़ सकता है। बाकी जहां तक दुष्परिणाम है तो आप एक किताब लिखने में लगे, इसमें किताब लिख जाएगी, इतने ज्यादा दुष्परिणाम है इसके। याददाश्त आदमी की बहुत कम होती है, वो काम करके आता है उसे कंफ्यूजन हो जाता है, मान लीजिए लॉक लगानी है उसको लगा, लगाया कहीं लगा दोबारा रीचेक करेगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन किसी काम में नहीं लगता। इस समय जो वर्तमान में मानसिक व्यथा जो बिगाड़ने के दो मुख्य कारण है, एक मोबाइल और दूसरा गुटखा, इससे लोगों का मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। याददाश्त की कमी होना, मानसिक परेशानियां होना, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन आना, किसी बच्चे को देखो आप अगर आपस से गेम खेलते हुए मोबाइल ले लो आप देखिए तुरंत इरिटेट हो जाएगा वो, उसको ये नहीं पता कि आपस के कौन है, एकदम फ्यूरियस हो जाता है बच्चा।
1: जी
0: ये सब चीजें
1: बच्चों में ये किन कारण से, हम अगर कहें तो एक तरह का धीमा नशा ही है,
0: बिल्कुल
1: मोबाइल का नशा,
0: बिल्कुल धीमा नशा है मोबाइल का। ये पूरी तरीके से शरीर को, आंख को, मस्तिष्क को, कान को बर्बाद, आंख को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है, और इस नशे से लोगों को छुड़ाना चाहिए। हमने स्वयं देखा है, थोड़ा सा बच्चा इरिटेट होता है तो उसको समझाते बुझाते नहीं है, बाहर नहीं घुमाते हैं, खिलाते नहीं है, सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, फिर कहते हैं बच्चा मानता नहीं है। अरे आज से 20-50 साल पहले आदमी पैदा हो रहे थे, मोबाइल चला के खेल रहे थे, उसको आप प्राइज दीजिए, उसको समझाइए, खिलाइए, उससे बात करिए, वो समझेगा बच्चा। बच्चे का काम तो रोना शैतान करना है, इसका जिम्मेदारी थोड़ी है उसको मोबाइल ने पकड़ा दिया, किसी प्रकार का नशा दे देगा सो जाए, मोबाइल चला के वो हो जाए, इसका बहुत ज्यादा आंख पे और कान पे दुष्प्रभाव है ब्रेन के ऊपर, कभी नहीं देना चाहिए बच्चे को मोबाइल।
1: जी इसके दुष्परिणामों की हम बात करें तो कैंसर हम सब देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, और कई कारण तो ऐसे होते हैं कि वो तंबाकू के अलावा भी आपको नुकसान पहुंचाता है, तो क्या क्या ऐसी बीमारियां हो सकती हैं शरीर को, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और सामाजिक रूप से भी आपका पतन होने लगता है, तो हम जानना चाहेंगे।
0: देखिए अपन समाज में जब जाते हैं गुटखा खा के तो अपन को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, तो उसको अपन उस दृष्टि से बचना है। लोग सामने भले कुछ नहीं कहते, पीछे कहते यार बहुत बड़ा गुटखा खा के आता है, बात नहीं करने की इसको, मैनर्स नहीं है बात करने की। जहां तक बीमारियां हैं तो मैंने आपको बताई है, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर इससे होता है, एसिडिटी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ये आपका म्यूकोसा फाइब्रोसिस होती है, इसको OSM कहते हैं, ओरल सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस कहते हैं, व्हाइट हो जाता है शरीर, मुंह के अंदर झिल्लियां बन जाती हैं और मुंह खुलना बंद हो जाता है, ये बहुत बड़ी बीमारी है।
1: जी अब हम बात करेंगे इन बीमारियों से बचाव के लिए लोग क्या करें, कैसी जीवन शैली उनकी हो ताकि इससे बच सके।
0: अगर हम किसी बीमारी के कारण खाना शुरू किया, कहते हैं मसूड़े सो जाते हैं, दांत में दर्द होता है, तो आप दांत दर्द का इलाज कराइए। अब आपके सामने दो समस्याएं हुई, आपका दांत दर्द मसूड़े का दर्द तो है, वो एक तरीके से दबा हुआ है, ठीक नहीं हुआ है, जैसे कोई गोली खा के बुखार उतार ले तो बुखार तो ही उतरेगा, बीमारी के लिए तो इलाज करना पड़ेगा, मलेरिया फाइलेरिया कौन सा बुखार है, तो आपका दांत दर्द तो उससे दबा है। दूसरी आपने एक बीमारी अपनी बोनस में ली जो गुटखे का नुकसान है, अब आपको दो चीजों का इलाज कराने के लिए हो गया। अगर कोई परेशानी है उसका आप इलाज कराइए, नशा करना तो उसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। दूसरी बात कंपनी है, आप उस कंपनी को अवॉइड करें, आपकी इच्छा शक्ति को उस व्यक्ति से शर्त लगा के सब आप मुझसे बात करोगे तो गुटखा की बात नहीं करोगे, या मैं नहीं खाऊंगा आप खाइए आपको खाना है, तो वो इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए आपके अंदर। इसके बाद भी अगर तंबाकू खाने से कोई आपको नुकसान हो गया गुटखा खाने से, आप उसका ट्रीटमेंट करें, उसको छुड़ाने के लिए डॉक्टर आपको प्रयास बताएंगे, वो प्रयास करें, इच्छा शक्ति डेवलप करें, प्राणायाम करें और साथ में दवाइयां खाएं, इससे आपकी बीमारी भी हटेगी, दुष्परिणाम हटेगी और आपकी इच्छा गुटखा खाने की इच्छा कम हो जाएगी।
1: जी जी, होम्योपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट है जो व्यक्ति लेते हैं अगर तो नशे से वो बचे रह सके?
0: देखिए, इसमें दो तरीके से ट्रीटमेंट है। पहले, अगर आपको गुटखा छोड़ना है उसके लिए आपका एक अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको गुटखा खाने से दुष्परिणाम हो गए हैं तो कौन सा दुष्परिणाम है उसके हिसाब से

0: इलाज होगा।
1: आम जनता से आज इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, कैसे आपके जीवन को अगर आपको सुधारना है तो नशा छोड़ना ही होगा, क्या कुछ मैसेज आपके?
0: देखिए, व्यक्ति के जीवन का एक ही मतलब नहीं होता है कि वो दिन भर अपना व्यवसाय करे या जॉब करे और पैसा कमा के मकान बना के सो जाए। उसका अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति भी बहुत कर्तव्य होता है। उसको ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, बच्चों के सामने कि हम आज से कभी गुटखा नहीं खाएंगे। उसको प्रतिदिन ये सोचना है कि आज हमारे अंदर कौन सा अवगुण है जो हमें छोड़ना है। उसके छोड़ने की दृढ़ शक्ति हो, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। छोड़ने में जो परेशानी आती है उनको हम होम्योपैथिक दवाई से आपको दूर करने में आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात, अगर आप नहीं लेते हैं तो उन कंपनी को आपको हमेशा अवॉइड करना है जो कंपनी में लोग आपके यार दोस्त गुटखा खाते हैं, वो आपकी आदत लगा देंगे धीरे धीरे करके। आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होना चाहिए कि आप उनकी आदत छोड़वा दें, वो आपकी आदत शुरू न करवा पाए।
1: श्रोताओ, नशा नाश की जड़ है। नशा करने से कई तरह के दुष्परिणाम सामने आते हैं और नशे से हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है। नशे को समाज से दूर मिटाने के लिए कविता के माध्यम से संदेश देते हुए आप हैं कवि मनोज कुमार तिवारी।
2: वास्तव में आज तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि हम यदि तंबाकू का सेवन करते हैं तो इससे दूर रहें, क्योंकि यह निश्चित रूप से हमारे भीतर हमारे मुंह में छाले बनाती है और वही छाले कैंसर के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो गुटखा है, गुटखों से भी दूर रहें, और हम तो ये कहते हैं कि संपूर्ण नशों से ही दूर रहना चाहिए। नशा जो है नाश की जड़ है। एक रचना प्रस्तुत है, सुने। तंबाकू है धीमा जहर, कर देता जीवन को बेअसर, मुंह फेफड़े सब रोगी होते, सपने सारे अधूरे रोते अधूरे रोते। गुटखा बीड़ी सिगरेट छोड़ो, स्वास्थ्य की ओर कदम को मोड़ो, क्षणिक सुख का यह व्यापार देता केवल दुख अपार, देता केवल दुख अपार। युवा शक्ति का मान बढ़ाओ, तंबाकू से नाता मिटाओ, स्वच्छ तन और निर्मल मन, यही है जीवन का सच्चा धन, यही है जीवन का सच्चा धन। आओ मिलकर शपथ उठाएं, तंबाकू को दूर भगाएं, दूर भगाएं। वास्तव में हम तभी सफल होंगे जब हम तंबाकू खाना छोड़ देंगे, तभी इस दिन की सार्थकता होगी। तंबाकू दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हमारा यही निवेदन है कि इस दुर्व्यसन से दूर रहें।
1: श्रोताओ, नशे से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और मुंह का कैंसर, और भी मानसिक रूप से भी नशा हमें नुकसान पहुंचाता है। कैसे हम नशे से दूर रहें, इस संदर्भ में जागरूकता भरा संदेश देते हुए आप हैं डॉक्टर प्रदीप पौराणिक।
3: वैसे नशा करने के तो कारण कई हो सकते हैं। मानसिक रूप से परेशान हो, डिप्रेशन में हो आदमी, तो अपने हल के लिए तलाशता है, वो करने लगते हैं लोग। कुछ लोग शौकिया भी करते हैं, बहुत हल्का हल्का लेते हैं, एक टेस्ट के हिसाब से, एक तजुर्बा के भी लेके देखे कैसा होता है क्या होता है। धीरे धीरे एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, पड़ जाते हैं उसमें, और शुरू से ही अपने को रोक के रखे चीजों में ना पड़े, क्योंकि अगर एक बार अच्छा और ये चीज और है, करने वाला सोचता है हमें थोड़ी आदत है, हम तो ऐसे ही थोड़ा बहुत ले लेते हैं जब कभी, और धीरे धीरे जब उसको आदत में आ जाता है, एडिक्शन टाइप का हो जाता है, फिर वो छोड़ नहीं पाता।
1: ये तो बात हुई नशे के कारणों की। जो व्यक्ति नशा करता रहता है उसके स्वास्थ्य पर क्या दुष्परिणाम होते हैं, जब आपके पास लोग आते हैं तो क्या देखते हैं आप?
3: देखो, अलग अलग तरह के नशे रहते हैं। शराब है, जैसे वाइन है, तो इसमें लीवर वगैरह पे प्रॉब्लम आती है, जरूरत से ज्यादा पी लेते हैं, खाना ना नहीं खाई, एसिडिटी वगैरह, वोमिटिंग, ये इस तरह की चीजें होती हैं। और दूसरे नशे हैं, उनसे भी नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट तो पड़ता ही है कहीं, फिर इसीलिए छोड़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि शरीर मांगने लगता है वो चीज।
1: इन मामलों में आप कैसे उन्हें ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों को कैसे समझाते हैं, अवेयरनेस के लिए लोगों को कैसे बताते हैं कि ये नशा कैसे आप सबके लिए नुकसानदायक?
3: भाई, उससे जिस तरह का वो नशा करते हैं, पहले तो यही बताते हैं कि इनके शरीर पे क्या फर्क पड़ रहा है, कितना नुकसान करता है ये, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये बताते हैं। और छोड़ने का तरीका तो ये है, आदमी की खुद की विल पावर है, अगर उसके अंदर है तो छोड़ सकता है, अदरवाइज तो बहुत कठिन हो जाते हैं। कई नशे हैं ऐसे, और विल पावर बढ़ाने के लिए योगा है, मेडिटेशन है, और अपनी कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे गीता है। यदि बच्चे पढ़ें या माँ बाप शुरू से ही बच्चों को पढ़ाएं, मैं तो कहता हूँ बच्चा 8 आठ साल का हो छह साल का उसको गीता पाठ ऐसे ही सुनाने लगे आप, सुनते सुनते बच्चे थोड़ा बहुत एक आध अध्याय लेके थोड़ा सा याद होगा तो उससे काफी कुछ फर्क पड़ता है बच्चों पे। आज जो हम कहते हैं बच्चों को संस्कार देना चाहिए, कहाँ से संस्कार दें, माँ बाप के पास उतना टाइम नहीं है, पता भी नहीं है क्या

0: अच्छे संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं? केवल टोका टाकी करते हैं माँ बाप के, टाइम से उठो, टाइम से सो, जे करो, जबकि मेंटली उनको यदि डेवलप करा जाए तो वो अपने अंदर खुद चेंज ले आए। और डेवलप करने की सबसे अच्छा है मेडिटेशन और गीता। यदि आप बच्चे को गीता पढ़ाएं, समझाएं 10-12 साल की उम्र में, तो बच्चे को ये मालूम पड़ जाता है कि अपने आप को कैसे रोकना है। और जिस बच्चे में अपने आप को रोकने की प्रवृत्ति आ गई, वो इन चीजों में पढ़ ही नहीं सकता, और पढ़ जाएगा तो छोड़ भी जाएगा।
1: नशे से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उन संदर्भ में भी जानेंगे। व्यक्ति असमय ही काल के गाल में समा जाता है, तो इसकी जो प्रमुख रूप से लोग जानते तो हैं ही, फिर भी जन जागरूकता के लिए कि ये आपके शरीर में कष्टदायक बीमारियां हो सकती हैं।
0: जैसे आदमी शराब पीता है तो लीवर में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, सिरोसिस ऑफ लीवर होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तंबाकू खाने वाले के मुंह का कैंसर वगैरह होने का रहता है। और ये भांग है या आजकल और भी कई तरह के नशे आने लगते हैं, इससे नर्वस सिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो उससे क्या है कि आपके काम करने की जो है वही कम होने लगती है, और धीरे धीरे आप दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जैसे बच्चा पढ़ने वाला है, अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाता है, बिजनेस वाला है, बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाता है, तो उससे डिप्रेशन टाइप की चीजें आने लगती हैं। और समाज भी थोड़ा हेय दृष्टि से देखता है, उससे भी थोड़ा सा डिप्रेशन जैसी स्थिति निर्मित होती है। पहले तो बच्चे को केवल ये बताना कि वो बुरा है, गंदा है, ये न करके ये प्रॉब्लम कैसे हुई है, इस चीज को अपन को समझना चाहिए और कैसे इसको छोड़ सकता है, इसको भी उसको बताना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा और मानसिक तौर पर परेशान हो जाए। लोग क्या भला बुरा कहते हैं बच्चों को, उसके लिए थोड़ा सा एक सहानुभूति रखें, बार बार उसको समझाने की कोशिश करें।
1: इस अवसर पर नशे को कहें ना, इस संदर्भ में नशा कैसे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और इससे सचेत रहने के लिए अपनी कविता के माध्यम से संदेश देते हुए आप हैं शिक्षक बाबूलाल अहिरवार।
2: नशा उन्मूलन दिवस के उपलक्ष्य में मैंने ये गीत स्वयं रचित लिखा है, ये मैं प्रस्तुत आपके सामने करना चाहती हूँ।

0: आज के सुन लो इनको राज काज में हर क्षण बाधा डारे नशा नाश कर देते है कुमत करा के हारे। इसे हम और निवेदन है भैया, विनती है सभी जनन से कि नशा करो ना छोड़ो भैया नशा, चाहे वो तम्बाकू का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, गांजे का हो, शराब अफीम का हो, नशा से सभी से निवेदन है कि दूर रहें। मैंने लिखा कि नशा करो ना छोड़ो भैया नशा, जाते है शान हमारी कई मानो, जितने गांजा मदिरा छाने उनके हो रहे रोज धिंगाने, के जितने गांजा मदिरा छाने उनके हो रहे रोज धिंगाने, हो रही है तकरार। सो इसे भैया कई मान लो, इसे भैया कई मान लो, कर जीवन को ध्यान हमारी कई मानो, दारू के दोरे गुण पहचानो, तन मन धन को मिटे खजानो, के दारू के दुर्गुण पहचानो, तन मन धन को मिटे खजानो, कंगाली की खान। सो रखो बचा कर के सुंदर तन, रखो बचा कर के सुंदर तन, करो हरी को ध्यान हमारी कई मानो, बचे पास ना एक रुपया लत छूटे मुश्किल से भैया, के बचे पास ना एक रुपया लत छूटे मुश्किल से भैया, हो जे हो हैरान। सो बाबू लाल ललक भर पी लई, बाबू लाल ललक भर पी लई, बचे मसा के प्राण हमारी कई मां।
1: श्रोताओ, नशा व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आइए नशा आज ही छोड़ें और देश और समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान हम दें। इस संदर्भ में अपना संदेश देते हुए आप हैं शिक्षक आरपी गुरील।
2: तंबाकू निषेध दिवस पर एक गीत सुनाना चाहता हूँ। तंबाकू छोड़ो, जीवन जोड़ो, स्वस्थ रहो और आगे बढ़ो, नशे की राह को छोड़ दो भाई, खुशियों से अपनी दुनिया सजाओ, गुटखा बीड़ी सिगरेट छोड़ो, तन मन को तुम स्वस्थ बनाओ, परिवार की खुशियों के खाते नशे से अब

0: माता जोड़ो, तंबाकू छोड़ो, जीवन जोड़ो, स्वस्थ रहो और आगे बढ़ो। तंबाकू देता रोग अनेक, कैंसर का यह कारण बनता। आज सभी मिल शपथ लिए लें, नशा मुक्त भारत हम रास्ता। तंबाकू छोड़ो, जीवन जोड़ो, स्वस्थ रहो और आगे बढ़ो। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वस्थ का संदेश फैलाओ।
1: श्रोताओ, नशा हमारे लिए घातक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें सचेत करता है कि हम सभी तंबाकू के उत्पादों से बचे रहें और अपने जीवन में योग प्राणायाम के माध्यम से नशे को दूर करें। नशा निषेध संबंधी कविता प्रस्तुत करते हुए आप हैं सेवानिवृत्त ASI दिलाराम हरवार।
2: गीत सुनाना चाहता हूं, नशा से संबंधित है। छाड़ो।

0: श्रोताओं, नशा हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। नशे से बने हुए उत्पाद कोई भी हो हमारे जीवन के लिए घातक हैं। आइए नशा आज ही छोड़ें और अपने आसपास के लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। कई नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं। जिला चिकित्सालय इकाई द्वारा नशा मुक्ति के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए नशा आज ही छोड़ें। इसी के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर छतरपुर में आयोजित कार्यक्रम की ये रेडियो रिपोर्ट अब सम्पन्न हुई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति।
1: मीडियम विपर या आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर छतरपुर में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता थे रविन्द्र कुमार प्रजापति। मीडियम विपर या आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज के कलाकार है तातू रेगवार और साथी। तो आइए इनसे सबसे पहले सुनते हैं ये बुंदेलखंडी गीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
4: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
7: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: 90.
1: बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा का प्रसारण आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से किया जा रहा है। आज के कलाकार हैं तातू रेगमार और साथी। आइए इनसे सुनते हैं ये ढिमरियाई लोकगीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आइए अब सुनते हैं ये बारामासी लोकगीत। कलाकार हैं थातू रेगमर और साथी।

इसी लोकगीत के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा संपन्न होता है। मीडियम विपर्य आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको दे दें गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में एक आवश्यक सूचना। सभी सुनने वाले श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि तेज सिंह निरंजन, निवासी ग्राम पोस्ट गढ़ जिला जालून के रहने वाले हैं। तेज सिंह निरंजन दिनांक 20 अप्रैल 2026 से लगभग दिन के 11 से 12 बजे के बीच से लापता है। तेज सिंह निरंजन का रंग गेहुआ है, उम्र लगभग 55 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 7 इंच के लगभग है, चेहरा सामान्य है। तेज सिंह निरंजन की दाहिने बाजू में तिल का निशान है। जिस किसी भी व्यक्ति को तेज सिंह निरंजन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया कर उक्त नंबरों पर सूचना देने का कष्ट करें। नंबर है 7607859893 7607859893। दूसरा नंबर

0: नंबर है 9454403205। एक बार फिर से सुन ले, 9454403205। एक और गुमशुदा महिला के बारे में आपको जानकारी दे दें। गुमशुदा महिला का नाम है विनी देवी। विनी देवी की उम्र लगभग 35 वर्ष है। विनी देवी के पति का नाम नाहर सिंह यादव है। विनी देवी भैलाबली थाना रामपुर जिला जालौन उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। विनी देवी दिनांक 15 मार्च 2026 से सुबह करीब 10 बजे से अपने घर से अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ लापता है। विनी देवी की उम्र 35 वर्ष, चेहरा गोल, रंग गोरा है, कद करीब 5 फीट 2 इंच है, नाक कान चेहरा सामान्य है। सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि अगर विनी देवी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको प्राप्त होती है तो निम्न नंबरों पर आप सूचना देने की कृपा करें। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप, 9026900984, 9026900984। एक और नंबर नोट कर लीजिए आप, 9454403603। एक बार पुनः सुन ले, 9454403603। सूचना संपन्न हुई।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: पर आकाशवाणी का छतरपुर
2: ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पैसा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: भतीजे के घर रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनि

0: विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा,
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मध्य टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 89587573355 और 82183263866 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि किसान और गांवों की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की

0: दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
1: ऐसे में अगर घर में नहीं रखना चाहता और वो खेड़ तक पहुंचा देता तो वही मारा की वही गौशाला नगरी निकाय जब किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी कोई बदलता मुझे इस बात का संकोच है क्या नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साक्षी

0: बता रहा है भीतर तक ले गए और आज देश के अंदर हमारा सहयोग 12% था, इसको 20% तक ले जाकर हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ा दें।
1: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी, बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सातिपनी विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर।

0: पंचो राम राम। ग्राम सभा सुनने वाले सभी पंच भैया ने कहा रघु भैया की राम राम पहुंच जावे। देखो पंच भैया और बेरा भाई और हम हाजिर हैं अपनो मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा लेके। पंच भैया आज को दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे आज रानी अहिल्याबाई जयंती है। आज के दिन 31 मई का रानी अहिल्याबाई जयंती मनाई जाती है। वह मराठा साम्राज्य की महान शासिका कुशल प्रशासक और लोक माता के रूप में पूजनी महारानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस के सम्मान में मनाओ जाते हैं। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए देश के प्रमुख हिंदू मंदिरों को जीर्णोद्धार कराओ तो इनमें भी यह वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने भैया इंदौर की जगह महेश्वर यानी नर्मदा तट पर स्थित शहर को अपनी राजधानी बनाओ। उन्होंने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दो जिसमें प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियां अस्तित्व में आई और पूरे देश में उनने सैकड़ों घाटों कुओं सरायों और अन्य क्षेत्र को निर्माण कराओ। उनकी जयंती के दिन भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इंदौर और महेश्वर में पालकी यात्रा निकाली जाती है। उनके जन्म स्थान चौड़ी अहमदनगर और इंदौर के राजवाड़ा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विशेष पूजा अर्चना करी जाती है। तो भैया आज पूरा राष्ट्र रानी अहिल्याबाई की जयंती पे उन्हें सादर नमन कर रहे हैं। पंच भैया अपन देख रहे हैं कि कछु दिन से मौसम में बदलाव हो रहा और बहुत तेज लू चल रही और देश के कई हिस्सों में तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ो है भैया और लू लगबे की स्थिति भी गंभीर है। ईका देखते हुए पंच भैया गर्मी के मौसम में आवश्यक सावधानी जरूर बरतें। भैया जो छोटे बच्चा हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, खुले में काम करने वाले श्रमिक हैं, हृदय रोगी हैं, जो जिन्हें उच्च रक्तचाप है जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग गर्मी के मौसम में अत्यधिक सावधानी पूर्वक अपना ख्याल रखें। छायादार स्थान पर रहें। दोपहर 12 से 4 के बीच में तेज धूप में निकलने से पंच भैया बचें और जरूरी कामकाज सुबह सामने टाले में गर्मी के मौसम के बारे में जागरूकता फैलाएं और गर्मी से होने वाले नुकसान का भैया बताएं। अगर पंच भैया का लू लग जाए तो की लक्षण है भैया चक्कर आवो, सिर दर्द, मतली, शरीर को अत्यधिक गर्म होवो, निर्जलीकरण, मानसिक स्थिति में बदलाव, दौरा पड़ो या बेहोशी छा जावो लू के प्रमुख लक्षण है। अगर पंच भैया ऐसी स्थिति देखें तो तुरंत ठंडे में स्थान पर ले जाकर उन्हें आराम कराएं। इसके बाद वे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर स्वास्थ्य की जांच जरूर कराएं। लू लगने पर भैया शीतल व तरल पदार्थों को सेवन करें। नारियल पानी, नींबू पानी, मठा आधारित पेय लेवें। आम को पना बेहद लाभकारी है। शरीर के तापमान नियंत्रण करने के लिए बहुत आवश्यक है। खीरा, खरबूज, तरबूज, लौकी, टमाटर, नींबू को सेवन करें। ये भैया शरीर में शीतलता लाते हैं और शरीर की संवेदनशीलता के अनुसार रोकथाम के उपाय करें और भैया पानी को पर्याप्त सेवन करें। और देखो अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाएं। ई के पहले थोड़ी रुकत है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: ग्राम सभा कार्यक्रम में सभी पंच भैयान को एक बार फिर से स्वागत है। पंच भैया आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। पंच भैया आज के दिन तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य के सामाजिक और

0: आर्थिक नुकसान के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलावे के लाने मनाओ जात है। तंबाकू के सेवन से भी कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, दिल को दौरा जैसी जानलेवा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनके कारण दुनिया में लाखों लोग असमय मौत को शिकार हो जाते हैं। तंबाकू में भैया निकोटिन पाओ जात, ईखा लेवे से कुछ समय था तो पंच भैया का राहत मिल जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे व्यक्ति निकोटिन को आदि हो जाते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियों को शरीर घर बन जाते हैं। और भैया कोनो व्यक्ति अगर सिगरेट पिया था तो उनके अलावा उनके आसपास के लोगों का भी उनको दुष्प्रभाव पड़ा है। भैया जिंदगी से करें प्यार और तम्बाकू से करें इनकार। यदि आप अपने परिवार और बच्चों से प्रेम करते हैं भैया तो ई तम्बाकू की नशा का आज ही त्याग दें। कैसे भैया जो हमारे शरीर में धीरे धीरे जात है और शरीर का खोखला कर देते। WHO के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु के किशोर किसी न किसी रूप में भैया तंबाकू को सेवन करते हैं। इनकी संख्या 38 मिलियन है, जो यह दर्शाता है कि भैया जागरूकता की आवश्यकता आज के समय में बहुत अधिक है। आजकल भैया युवाओं में ई सिगरेट को चलन बढ़ो है भैया, जो कहने लगा जो कम हानिकारक है, जबकि यह मस्तिष्क के विकास, फेफड़ों की बीमारी और निकोटिन की लत के लाने भैया जिम्मेदार होता। तो भैया हम तो पंच भैया से यही कहें भैया कि तंबाकू खा आज ही छोड़ें और संकल्प लें भैया कि अपने परिवार के लिए तंबाकू को बिल्कुल त्याग कर दें। और देखो भैया अब समय हो रहा है धारावाहिक अटकन चटकन को, तो पंच भैया का सुनवा रहे हैं धारावाहिक अटकन चटकन को भाग 8। तो अपन सुने पन सुने धारावाहिक अटकन चटकन।
1: समझ में जा करी तुमने अहमदाबाद बे गुनिया बाबा सो भैया साजे सुनी हमने, पूजा पाठ ज्यादा नहीं बताऊ।
2: अच्छा
1: ना भी छिड़िया मंगाऊ तो ना कोकरा मंगाऊ, कोने कैसो सब बता दे।
2: अच्छा गुना
1: हाँ, अब ले है नारियल फारियल सो देखो जे है जो है सो।
2: हाँ हो तो आज अटकन भैया, चलो तो चलिए उधर।
1: हाँ काहे चटकन।
2: हाँ भैया अटकन,
1: आज तो गुनिया बाबा की दोगई में एक दो जनी बाई हरे बैठी दिखाती।
2: हो
1: बे पूरी पूजा पाठ बिस्तारे बैठी गुनिया बाबा, आज कछु ना कछु है।
2: अरे एक जनी तो बे ऐसे लग रही जैसे अड़ू लेके घर से आए हैं।
1: हाओ।
2: जिनको ब्याह हुआ वे परती और रश्मि भाव तो
1: भदरंगी से चुनरिया पहने।
2: सो बाल बच्चे नो ही हो तो उनके सो आई होंगे बाबा लो।
1: हाओ हाओ चटकन, और जो भी दूसरी जनी बैठी ना सो बे जरूरत सिंह की कक्को जू आए।
2: अच्छा अच्छा, राम राम गुनिया बाबा, राम राम राम राम कक्को जू,
3: राम राम राम
4: राम राम मटकन चटकन, राम राम। आओ आओ तुम और हैं तो कभू आउते ही नहीं है भैया, आओ आओ।
1: हाओ हाओ काहे कक्को जू।
3: हाँ
1: अपन कैसी आई हती है ते?
3: अब का बताइए अटकन चटकन, अपनी आफत बिफत का बताइए। मोरे ये कही तो लड़का और बहु ऐसी मिली, परमेश्वरी ऐसी मिली कि मैं कछु बता नहीं सकत। जब से उन्हें देरी के भीतरे पाँव धरो सो मोरे लड़का की तो भाग गई, फूट गए बिल्कुल। अब का बताइए कैसो नो नो मोरे लड़का को नाम, अब का बताऊ मैं अपनी बेफत।
2: अरे काहे कक्को जू, ऐसो का होगा कछु तो बताओ।
3: अरे अब जो ही नोई के दो ठैया हो गए बिटिया ही बिटिया, अब तीसरा होने सो मोहे लगा के फिर कहीं बिटिया ना हो जाए परमेश्वरी के। तो
1: कोजू पहली गलती तो जो ही है कि एक बिटिया हो गई थी सो ऑपरेशन जवाई करवा लेने है, तो फिर दूसरी में नहीं करवाओ ऑपरेशन, अब तीसरी। अरे ऐसे कैठे ये लड़का वाले चाहे तुम्हें कक्कोजू जो है सो।
3: जो ही तो हमने सोची हती अटकन कि इनको नाम सुनो तो गुनिया बब्बा को, सो हमने कही कि एक लड़का और हो जा तो बस फिर ऑपरेशन करवा देती।
2: अरे कक्कोजू अब गलती पे गलती ना करो हैं? अब कहीं चाहे लड़का होए और चाहे बिटिया, ऑपरेशन बिल्कुल करवाई देने अपन।
1: आओ
2: आजकल बिटिया तो लड़कन से ज्यादा ऊंचो नाव नहीं करती अटकन भैया।
3: इसे तो गुनिया बाबा लो तभी जिया भरवा हती में, और एक ठैया तबिजिया अड़वली की घरवाली को भरवा दई, जा बेचारी बहुत परेशान।
1: हाँ हाँ, जो तो साजो है कक्कूजू, अकेले अब कहीं बहू को ऑपरेशन हो ही जावे और अड़ूली से कहियो के पूजा

0: आर तो ठीक है, करने ही आऊ, संगे संगे भुजाई की दवाई अवाई करवा डालो। अरे आजकल चटकन भैया अस्पताल में सब सुविधाएं नहीं हो गई।
1: हो सब सुविधाएं हैं।
2: काय ए अटकन, काय अटकन, मैंने सुनी के कहूं कहूं तो पीढ़ी में पतो पर जात के लड़का है के बिटिया सो जरूरत सिंह से कह दो के ऊ पनमेश्वरी की जांच करवा आवे और बिटिया हो तो माए होते पेट में।
1: अरे कक्कू जू है, तुम्हारी जुबान ही नहीं कटिया है, काहे अपन हलके में बिटिया नहीं है तिनका। ऐसी गलती ना कर बैठियो, ऐसी आंच जांच के चक्कर में नहीं पन्ने अपन का। और पतो है, है? भ्रूण हत्या तो हत्या है ही है, संगे संगे कानूनन अपराध सोईया है।
0: पहला जो बताओ कक्कू जू कि जब तुम हत्या करो हो तो वह हत्या ना कहा है और हत्या तुम्हें ना लगे जो है सु। और देखो जोन भ्रूण की हत्या करी जात सु उ भ्रूण की आत्मा पेट में काकात बता चटकन कह देता।
1: बिल्कुल बताओ अटकन भैया काकात
0: कि माता मुए पेट में मारे बाबुल परे पछारे। माता मुए पेट में मारे बाबुल परे पछारे और लड़का काका संगे ले आए बिटिया कहा वो जा रहे। करना पाए कोख में रक्षा कैसे करे हैं बारे।
1: सही है।
0: और कहा था अरुण जो भ्रूण परीक्षण भारी भव उतारे।
1: अटकन भैया कैसी नोनी बात करी अपन ने।
3: अरे अटकन चटकन भैया, एक दिन अखबार में मैंने सो पड़ो हतो।
1: कैसो गुनिया बाबा
3: के एक जनन ने भ्रूण परीक्षण करवाओ हतो और भ्रूण की हत्या कर दई सो भैया बे के बे और संगे संगे उ डॉक्टर भैया दो ही जनन जेल में पड़ी।
0: अरे ऐसे गुनिया बाबा एक नहीं मुलक के किस्सा हैं, कुल केसा हो गए। अरे ऐसे तो हरा हरा जो सब खत्म हो जा दो चाल चलन
1: हो असके जेल ही जाने पड़े।
2: हमें तो समझ आ गई, हमें तो नहीं करने।
0: अरे कक्कोजू तुम कुल देर से मुंह बना रही बुरा उसो, फिर मुंह में धुतिया लगा लेती छींक रही का, और जब छींक आ रही तो छींकती कह नहीं।
2: अटकन चटकन कछु ना पूछो।
1: काई?
2: जरूरत सिंह के दद्दा कान लगाते कि जब जरूरत की मताई तुम्हें छींक आवे तो तुम जो समझ लियो करे कि हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही।
1: अच्छा।
2: सो तुम मोरे एंगर आ जाओ करे।
0: सो ही में कहे छींकती कह नहीं है।
2: ई में जो है कि उन्हें मरे दो बरस हो गए और मैं उनकी एंगर अबे जागो नहीं चाहत। कैसे बे तो बिना नाती को मोह देखे चले गए, अकेले मोह तो अबे नाती को मोह देखे।
3: अरे कक्कोजू, जरूरत के दद्दा ने जिंदगी भर खूब कमाई करी, एन जोर जोर के धर गए हते। जिंदगी भर उन्हें यही कहो बचाओ बचाओ जा सब ऐसे कही।
2: जा तो साची बात आ करी तुमने गुनिया बाबा, जब वे एक दिन आई नदिया में डूबन लगे थे सो तान तान के चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ करते ही रहे और मुंह छोड़ के चले गए रामधाम।
3: तुम कछु नहीं कर पाई। अच्छा अच्छा बताओ अटकन चटकन भैया।
1: हाँ बाबा।
3: अपन और कैसे आए हते और कक्कोजू। हाँ? अपन अब एक काम करो के अपन का? जाओ।
2: हाँ।
3: और ई बहू खा लवा ले जाओ, जित तो पूजा पाठ को हमने सामान बताओ है।
2: हाँ।
3: उत्तो करती जाइयो।
2: हाँ।
3: और फिर जब ग्यारस की रात आ है सो फिर ई बहू हाँ लवान ले आइयो।
2: हाँ।
3: सो
2: हाँ।
3: बस काम हो जाए।
2: हाँ ठीक है गुनिया बाबा, हम जाई थे जैसे गुनिया बाबा तुम बता रहे वैसे ही हम कर है, अकेले गुनिया बाबा हमारी भली करियो।
3: हो जाए भला हो जाए।
2: हाँ जाई थे, राम राम।
0: आप गुनिया बाबा ऐसा है कि हमने सुनी आती कि अपनी पुरानी गड़िया में कहूं धन अनगढ़ू। सो बताओ अपन
3: कछु। अटकन चटकन, अपन गुनिया बाबा की देरी पे आए हो तो निश्चित है कि जो धन मिल है जरूर। अकेले ई में मेहनत बहुत है और संगे संगे पूजा पाठ को सामान भी लगे।
1: पहला का करने आ है बाबा जो तो बताओ।
3: सबसे पहले तो जो करने आ है के जौन दिना पुख नक्षत्र में रात के ठीक 12 बजे होवे। बात सुनत जइयो।
1: हो बाबा।
3: थोबे की जरखा खोदने पर है।
1: अच्छा अच्छा।
3: फिर ऊ पौधा के 101 चक्कर लगाने पर है।
1: ठीक ठीक।
3: और एक आदमी की खपड़िया चाने आ है। सो जर ऊ में धरने आ है। फिर कोनो नदिया नरवा के बीच धार में निर्वस्त्र होके सवेरे

0: चार बजे तक मैं अपन खा एक मंत्र बता हूँ, वो मंत्र को जाप करने आ है सो बस।
1: का अटकन भैया?
2: हाँ,
1: ई कड़कड़ात ठंड में रात के 12 बजे से 4 बजे लो ऊपर से बीच नदिया में जो गुनिया बाबा तो अपन के प्राण ले जाऊत है, जब मर जे भी सो काहो तू धन को गुनिया बाबा, जो धन जेठ मासन में खोद भी हम तो हमें नीचा हो न धन।

0: गांव में आज पहली बार आओ मैं। अब देखा तो कुआ बेदत है मुझे चक्कर में। अरे कुआ मोसे धन दुगनो करवाऊ थे, ऐसो नहीं के कहूं बिलोरा हो जावे, कहूं पुल ना खुल जाए तो सब डर हो रहा है। जात हो मैं ई कुलिया में तो कोनी दिखाता। अरे ई कुलिया में तो बे बैठी दूर है पोर के दूर है दीदी की एंगर एक जनी बाई जूसी बड़े आदमी सी लग रहे जे गाना गुड़िया अच्छो पह रहे जी। मौका सु अच्छो है दोपहरी को सबरे कड़ गए हुई है खेती किसानी कर बे कुंगन पे इन्हीं से जाके पूछा तो कुआ जी। जय हो देवी जय हो दूनर देव की, आज तुम्हारे कैसी देवी के दर्शन पाके हम धन्य हो गए। आहा, अरे का ऊंचो मातो है देवी अपन को, कैसो नोनो भाग है अपन को। आहा, बताओ तो हमें दिखा रहा है कि ई घर में धन दौलत की बरसात होवे बारी है। अरे सुख शांति को राज रहे सुख शांति को। तुम्हारे भाग बता रहे हैं कि तुम्हारे घर में कोनो बड़े अफसर जरूर हैं। जय दूनर देव की।
1: अफसर तो नहीं है बाबा, अकेले सरपंच हैं। सो अफसर से कम है का? संसार भर के अफसर जब आउत सो इतनी पोर में तो परे रात।
0: जय हो जय हो। अरे आज सरपंच साहब घर नहीं है का?
1: हाँ बाबा, बे अपनी बहन लो आ गए न्योते, काल पर लो आ है।
0: देखो देवी तुम्हारा भागा हमें इतने खेच ले आओ, नहीं तो हमें फुर्सत है का? देखो हमारे दुनिया भर के प्रमाण पत्र रखे, ये पढ़ो तना पढ़ो अपन, देखा तो जाओ ऐसी ऐसी हमने काम करे ऐसा धन दुगनो करो कि का बताइए, पढ़ो तना अपन प्रमाण पत्र।
1: अरे हाओ हाओ, देख तो रही मैं कि दुनिया भर की सीले मोहरे लगी, छपे छपाए कागज सब कछु तो लाए अपन।
0: देखो हम देशन देशन जाके दुनिया भर के दुख दूर करवाए थे, ग्रह नक्षत्र शांत करके धन दौलत से संपन्न करा रही थे। पढ़ो जी सब प्रमाण पत्र हमारे, देखो तो पढ़ो।
1: हाओ हाओ, काहे मुए कौन विश्वास नोई है, मैं कौन गैर पढ़ी लिखी आ हूँ, जे सब कागज पढ़ाई नोई रही मैं। अपन तो ऐसो कर दो कि ये घर की सब परेशानी दूर हो जावे, बस कोनो कमी ना रावे, ऐसो उपाय करो बाबा बस।
0: हाओ हाओ, हमें ऊपर वाले ने एक ही लाने पठाओ है थे कि तुम जाओ संसार भर के कष्ट हरो, अरे धन दौलत से सब संपन्न रावे, अब आज के बाद तुम्हें कोनो कमी न रहे देवी।
1: तुम्हारी जय हुई बाबा जय हुई। अब अपन तो जो बताओ कि ई के लाने हमें का करने पड़े।
0: अरे देवी कछु बिलात नहीं करने देवी।
1: हाँ।
0: बस दुना देव खां खुशी करवे हाँ, तनाक सी पूजा करने पड़े।
1: अच्छा
0: हाँ। हाँ, हाँ। अकेले
1: हाँ।
0: पाभी भीतर बारे कोठा में।
1: अच्छा,
0: जा को आना पावे और ना जा पावे।
1: हाँ हाँ हाँ, तो चलो बाबा भीतर चलो, भीतर के कमरा में उते को नहीं जा।
0: इतने ठीक है लो।
1: हाँ जो है
0: अब इतने हम राजी हैं।
1: हाँ हाँ ठीक, लो जा कनक है लो जो चौक पूरा।
0: हाँ
2: देखो पंच भैया, अब सुन रहे थे अपन धारावाहिक अटकन चटकन को भाग 8, और देखो अब पंच भैया का सुनवा रहे हैं एक वार्ता, हरी खाद का उपयोग, वार्ताकार हैं डॉक्टर मनोज कुमार, तो अपन सुनाए जा वार्ता।
3: नमस्कार किसान भाई, आज का हमारा विषय है हरी खाद का उपयोग।

लाभ। हरी खाद क्या है? हरी खाद में उपयोग होने वाली ऐसी फसलें जैसे ढेंचा, शनई, लोबिया, मूंग, उड़द आदि, साथ में बरसीम, जिन्हें फूल आने से पहले मिट्टी में पलट दिया जाता है, जिससे जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन तथा अन्य पोषक तत्व मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरता, संरचना, जल धारण क्षमता एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में सुधार करते हैं। हरी खादों की आवश्यकता क्यों, हमारी खेती में हरी खादों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो एक लंबे समय से हम अपनी कृषि में रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करते आ रहे हैं, जिससे हमारी मृदा में, जो मृदा की संरचना है, उसमें असंतुलन हो रहा है, पोषक तत्वों की मात्रा में असमानता आ रही है और हम बाजारू रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता पर बढ़ते जा रहे हैं। उस निर्भरता के कारण हमारी जो कृषि है उसकी लागत में बढ़ोतरी आ रही है और आय में कमी आती जा रही है। इससे हमारी मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना भी बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण उत्पादन लागत में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट आ रही है। किसान भाई, हम अपनी खेती में हरी खाद फसलों को उगाने की विधि एवं समय कैसे चयनित करें? तो खेत खाली इस समय, किसान भाई, मई का समय है, अच्छा समय चल रहा है, खरीफ मौसम से पहले का समय है। तो जो किसान भाई खरीफ में अपने खेतों में धान है, ज्वार है, बाजरा है, तिल है, मूंग है और ऐसी बहुत सारी फसलें उगाते हैं, तो हमें उन जो अभी खेत खाली पड़े हुए हैं उनमें हमें हरी खाद लगाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे जो कृषि लागत है वो कम हो और हम जो रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं उस निर्भरता में कमी आए। तो अभी हमारे खेत खाली पड़े हुए हैं, उन खेत की अच्छे से तैयारी करके हमें 3 से 4 बार जुताई करके अपनी मिट्टी को भुरभुरा बनाएं और हल्की नमी होने पर खेत में जैसे ढेंचा है, शनई है, लोबिया है, मूंग है, उड़द है आदि फसलों की बुआई करें। बुआई के बाद जब हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तो हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर कहीं मौसम द्वारा थोड़ी बूंदाबांदी या हल्का पानी मिल जाता है तो हमारी फसल अच्छे से खड़ी हो जाती है और हमारी फसल में अच्छी बढ़वार होती है। ये फसलें बहुत तेजी से बढ़ने वाली होती हैं। जब हमारी फसलें 40 से 45 दिन या 45 से 50 दिन की हो जाएं, फूल आने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फूल आने से पहले मिट्टी में पलट देना है और 2 से 3 बार जुताई करके अच्छे से मिला देना है। ये इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब हम मिलाएं तो उस मिट्टी में हमारी थोड़ी उपयुक्त नमी हो और नमी होने पे जब हम उसमें मिट्टी में हरी फसल को मिला देंगे तो वो अच्छे से सड़ जाएगी और सड़ने के बाद 2 से 3 हफ्ते बाद जब सड़ के तैयार हो जाए तो हम अगली फसल, जो हमारी मानसून सीजन में खरीफ मौसम की फसलें हैं, उनको हम आसानी से लगा सकते हैं और जो हमारी निर्भरता है रासायनिक उर्वरकों पर वो हमें कम होगी और हमें कम उर्वरकों का उपयोग करना पड़ेगा। अब इसी में कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो कम दिन वाली भी हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, लोबिया की फसलें हैं, इन्हें हम 35 से 40 दिन में, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी हरी खाद की फसलें हैं उनमें फूल ना आ पाए, क्योंकि फूल आने से पहले जो हमारा तना होता है उसका कोमल होता है, उसको सड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर फूल आने के बाद जब हमारा उसका तना, उसकी शाखाएं ज्यादा कठोर हो जाती हैं तो उनको सड़ने में समय लगता है और खाद बनाने में देरी होती है। किसान भाई, हमें इस हरी खाद से क्या लाभ प्राप्त होगा? तो हम ये लाभ के बारे में बताते हैं कि जो हरी खाद है, हरी खाद से हमारी मिट्टी की जो जैविक कार्बन मात्रा है वो बढ़ेगी, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, तो ये दलहनी फसलें चाहे ढेंचा हो, शनई हो, लोबिया, मूंग, उर्द, ये हमारी वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं और इसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करती हैं। मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार आएगा, मिट्टी में जो जल धारण क्षमता है ये जल धारण क्षमता बढ़ेगी और इसका जो संचयन है उसमें भी बढ़ोतरी आएगी, जल संचयन में बढ़ोतरी आएगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता में वृद्धि होगी, मिट्टी झरण रुकेगा, खरपतवारों नियंत्रण होगा, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता में कमी आएगी।
फसल की उपज एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी, उत्पादन लागत में कमी एवं आय में वृद्धि होगी। हरी खाद की जो फसलें हैं उन फसलों में हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है वो हमें देखना है कि एक हेक्टेयर में अगर हम अपने हरी खाद फसलों को लगाते हैं तो कौन सी फसलें हमें कितने बीज लगाना पड़ता है, उस बीजों की मात्रा आप लोग नोट कर सकते हैं। हरी खाद

0: के लिए ढैंचा, ढैंचा में हम 50 केजी, 45 से 50 केजी सीड जो बीज है उसको प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं। और शन की बात करेंगे, शनई की, तो उसमें हम 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका उपयोग करते हैं। मूंग की बात करते हैं तो उसमें हम 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर करते हैं। उर्द में भी 20 से 25 केजी बीज की मात्रा हम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं। लोबिया में 30 से 35 किलोग्राम बीज की मात्रा को उपयोग करना है, और बरसीम को भी 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जब हरी खाद हम बनाते हैं तो इतने बीज की मात्रा हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे प्रति हेक्टेयर अच्छा ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा कार्बनिक पदार्थ है वो हमें प्राप्त हो। साथ में जो ढैंचा की फसल है, ढैंचा से हमको 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो सकता है। शनई में हमें 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन प्राप्त हो सकता है। मूंग से हमें 20 से 25 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो सकता है। उर्द से हमें 20 से 25 केजी नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो सकता है। लोबिया 25 से 30 केजी नाइट्रोजन हमें प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो सकता है। बरसीन में भी हमें 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो सकता है। साथ में हमारी फसलों को बहुत सारा जो हमारी मिट्टी है, हम एक ही प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, और जो असंतुलन हुआ है उस असंतुलन को भी संतुलन में बदलने का कार्य हमारी हरी खादें करेंगी और हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने का कार्य करेंगे। साथ में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हरी खादें उगाते समय, तो एक हमें सबसे पहली सावधानी रखनी है कि फूल आने से पहले फसल को मिट्टी में पलटें। ये हमें विशेष ध्यान देना है कि फूल ना आ पाए हमारी फसलों में, और हमें उन्हें पलट देना है जिससे उनमें कोमलता रहेगी और वो जल्दी सड़ जाएंगे। बहुत सूखी या बहुत गीली अवस्था में पलटने से बचें। जब मिट्टी में ज्यादा नमी हो तब ना पलटें, या फिर बहुत सूखी हो मिट्टी वहां पर उपयुक्त नमी में ही हमें उसको पलटना है। पलटने के बाद जब हम हरी खाद को अपने खेत में पलट दें तो हमें हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो अच्छे से सड़ जाए उस समय से। अगर उपयुक्त है तो हमें, अगर उपयुक्त नमी है तो ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन उपयुक्त नमी नहीं है, नमी कम है, तो हमें हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता है अगर उपलब्ध है तो। और अगर ऊपर से मानसून सीजन अगर बारिश हो जाती है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। फसल को पकने ना दें, वरना सड़ने में समय लगता है, लाभ कम होता है। दलहनी फसलों में जो हम फसलों का चयन करते हैं वो केवल हम दलहनी फसलों का चयन करते हैं हरी खाद के लिए, क्योंकि उनमें नत्रजन, जो नत्रजन है वायुमंडल से नत्रजन स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है, जिससे हमारी मृदा में नत्रजन की मात्रा विद्यमान होती है, तो ये हमें विशेष ध्यान देना है। रासायनिक उर्वरकों पर बढ़ती निर्भरता एवं कृषि लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए कृषक भाई खेतों में हरी खाद का उपयोग करें, जिससे कृषि में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और कृषि लागत में कमी आएगी। साथ साथ मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और उत्पादन के साथ साथ आय में भी बढ़ोतरी होगी। और आप जो हमारी रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है उस निर्भरता में कमी आएगी। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को धन्यवाद।
1: देखो पंच भैया, अब सुन रहे थे अपन वार्ता हरी खाद का उपयोग, वार्ता कर रहे थे डॉक्टर मनोज कुमार। और भैया अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाएं और सुनत है एक ठैया गारी पंचम सिंह खेंगर की आवाज में।

तो पंच भैया अपन सो अबे अपन सुन रहे थे जगारी पंचम सिंह खेंगर की आवाज में, और समारोह आज की सीख को वैसा है जैसे समझा था हंस वो निकला कौआ। भाई कई बार अपन भैया बाहरी आभूषण देख के या बाहरी दिखा वेशभूषा देख के पंच भैया विश्वास कर लेते कि भैया जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन कभी का होत के व्यक्ति के वेशभूषा से उनके ऊपर विश्वास तो कर ले, लेकिन उनके अंदर का है वो पंच भैया नहीं समझ पाऊ। तो और भैया जब बाद में समझ में आऊ थे पछतावे के सिवा कछु नहीं होते। तो अपना पंच भैया यही क्या वो है कि भैया कोई भी व्यक्ति पे विश्वास करें तो सोच समझ के करें। जाहती आज की सीख और पंच भैया का सुनवा रहे हैं एक चेतावनी प्रकाश यादव और साथियों से। पंच सुना जा चेतावनी।

तो पंच भैया अबे सुन रहे थे अपन चेतावनी प्रकाश यादव व साथी इनकी आवाज में। तो और देखो अब हुरी चलवे की बीरा, तो पंचन का बता दिया जाए कल के कार्यक्रम। कल पंच सुन है रमतुला कार्यक्रम, प्रस्तुति हुई है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। पंच सुन एक भेंट वार्ता मछली पालन कैसे करें विषय पर बीरन रेखवार से स्वप्न अग्रवाल की बातचीत। और आज की सीख में पंच सुन है जी के कुल की जोन है लाए रहत है टोन, सिंह वाक्य चैन इन्हें सिखावत कौन। और पंचन से हुई चर्चा, तो अब ले जाए विदा। तो पंचो राम राम।

अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम विपर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में, जिसमें हम आज मन की बात के 134वें संस्करण में उठाए गए प्रमुख विषयों और उनसे जुड़े संदेशों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में खेल, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अनेक प्रेरक विषयों को स्थान दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अशोक जी, मन की बात के इस संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और इनमें कौन से विषय आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे?
3: देखिए, महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश के जनता के साथ संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम आज की बात करें तो आज तो सबसे प्रमुख बात जो प्रधानमंत्री ने की वो थी मौसम को लेकर, कि लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी और उसके साथ साथ उन्होंने जो गर्मी में किससे निपटने के घरेलू नुस्खे भी बताए। और जो हमारे पेय जल हैं, या जैसे हमारे देश में आम के बारे में, शरबत के बारे में, दक्षिण भारत के, तो उन सब की भी चर्चा की। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो जहां जहां भी कुछ एक अचीवमेंट करते हैं उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो आज उन्होंने जो खेल हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो नए कीर्तिमान हुए हैं, उनकी भी चर्चा की। उसके साथ उन्होंने जो अपने विदेशी दौरे हुए उसमें उनकी चर्चा की कि कैसे हमको हमारे पुराने विरासत, जो ताम्र पत्र वापस किए गए, और इसी तरह से वही नीदरलैंड की यात्रा के दौरान हुए। फिर तो इस तरह के उन्होंने 5-7 जो बहुत मुख्य मुद्दे थे। फिर उन्होंने स्विमिंग क्लब की बात की, नदियों को सफाई करने के बारे में जो युवा अभियान चला रहे हैं उनकी भी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौसम की बात

0: तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। लेकिन हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने जिस तरह से आज 100 मीटर की दौड़ में 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, और 2 जो एथलीट थे विशेष तौर से उनकी चर्चा भी की और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और काफी लंबी समय तक बातचीत की, तो ये खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने का जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प है वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया गया।
1: और सबसे पहले खेलों की ही बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय विषय है। भारतीय एथलीटों की हाल की उपलब्धियों को भारत में खेल संस्कृति के विकास से आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने पहले अभी बताया कि पीएम खेलों का और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों का अक्सर उल्लेख करते हैं।
0: बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब जब हमारे देश के खिलाड़ी चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो तो उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बात करते हैं, और कई बार तो हमारी जैसे T20 की क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत कर आई तो उनको अपने घर पर बुलाया और एक एक के साथ अलग से बात की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के जो लोग हैं देश हित में समाज हित में जब ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे होते हैं और जब उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उन्होंने एथलीट्स के साथ की कि देश की ऐसी उपलब्धि जो हुई है और खासतौर से झारखंड के रांची में जो इस समय नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ उसमें 800 एथलीटों ने भाग लिया जो देशभर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उन्होंने वीरेंद्र वीर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना, कुलदीप कुमार इनके अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए रिकॉर्डों की चर्चा की। और 2 एथलीट हम बात करेंगे तो वीरेंद्र वर सिंह और अनिमेश, इनके साथ तो टेलीफोन पर भी बात की और उनके संस्मरण सीखे, बात की और उनको खूब प्रोत्साहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक तरह से उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो है वो खेलों के बारे में इतने चिंतित हैं कि आज मन की बात के लगभग 10 मिनट तो उन्होंने खेलों के बारे में चर्चा की।
1: अशोक जी, विदेशों से वापस लाई जा रही भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए क्या महत्व है, इस पर आपकी राय जाने, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
2: नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी और ये जो पहल है और ये जो सब कुछ अभी प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है, भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है।
0: देखिए, प्रधानमंत्री को पिछले 12 वर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों ने कितनी ही ऐसी भारत की जो विरासत है वो वापस लौटाई है। अगर उसकी कैटलॉग बनाई जाए तो हजारों में है, और ये केवल प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की स्थानीय सरकार ये कोशिश करती है कि हम प्रधानमंत्री को उनकी विरासत किस तरह से लौटा सकते हैं। और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे तो वहां पर उनकी जो बातचीत हुई और उसमें विशेष समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के भी मौजूद थे, और उस विशेष समारोह में जैसा भी हमने सुना

0: चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को सौंपी गई। एक विशेष कार्यक्रम हुआ और उसमें देश विदेश से लगातार अब संदेश मिल रहे हैं, लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया भर में तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है, क्योंकि इस ताम्र पट्टिकाओं के प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा थी और इससे जुड़े हुए जो बातें प्रधानमंत्री ने स्वयं साझा की, इनमें से 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से जैसा हम अभी सुन रहे थे, राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज चोला के एक वचन को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है। जो उस समय चोला वंश की जो उपलब्धियां थी उसका भी वर्णन मिलता है, तो इससे पता ये चलता है चोला साम्राज्य जो था उसकी समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की भी इससे जानकारी मिलती है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसकी भी अभी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी जो धरोहर है, ये भारत में जब वापस आएंगी तो भारत की धरोहर संस्कृति विरासत के बारे में हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उनकी भी जानकारी बढ़ेगी।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं में खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: अशोक जी, जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है उसे आप भारत के भविष्य के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं, और युवाओं में खासकर जो खगोल विज्ञान को लेकर जो अब दिलचस्पी बढ़ रही है उस दृष्टिकोण से?
0: देखिए, रात को तारों को निहारना ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। तो एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा लोग टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ पुस्तकें, लाइब्रेरी, टेलीस्कोप की सुविधाएं भी हैं। तो इसकी तरफ युवा वर्ग को आकर्षित करने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे हमने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद हैं, और ये जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पांचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। और हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में लोगों में उत्सुकता जगाई है, तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और आज के युवाओं ने भी इस प्रकार से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री की एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: अशोक जी, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और नदी स्वच्छता जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
0: आज एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर विजुअल भी दिखाया गया कि कैसे भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के उस घटना स्थल पर किस प्रकार से काम कर रही है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी और ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये जो एम्बुलेंस है उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची, और फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। तो एक जीवन जो है

0: उसको लौटाया गया। ये एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है ये एक चलता फिरता अस्पताल है और इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विशेष स्ट्रेचर्स हैं, बचाव के उपकरण हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंसे या नदी से कट जाए तो उसकी तुरंत सहायता की जा सकती है। तो जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर को भी बचाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ध्यान इन बातों की ओर भी जाता है कि कैसे देश में इस प्रकार का जो प्रकृति की धरोहर है उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल वाला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का यह संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव है। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम डगर विकास के। विषय है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना और ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से, साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुंच रही है। श्रोताओं, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देती हुई आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में।

0: मीडिया की प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता आचार्या।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते, तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम नरोरा एकेडमी भी गए थे, जहां पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद एजुसेट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को, स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया। जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को, मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किन्हीं कारणों से, तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बाद का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास साधन है, ना उनके पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का, हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज, वैल्यू एडिट कोर्स बनाया गया है। वैल्यू एडिट कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है, जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है, प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है, उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित। तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, जीआई टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में बीएसी के वैल्यू एडिट कोर्स के टीचर्स नहीं है या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
0: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है, इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं। इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं।
1: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, पीएम ई विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षा

0: लोगों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर खोज सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे IIT है, JEE है, NEET है, PSC है, सारी भाषाओं में बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। PME विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
1: श्रोताओं, PME विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुंच सकते और ये शिक्षा काफी प्रभावी भी हो रही है। PME विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के PME विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
2: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक बृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को TV, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो IT मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है। दीक्षा पोर्टल में स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और NCERT द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तब हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं, NCERT की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटली लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
1: श्रोताओ, PME विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपने शिक्षा को पंख दे रहे हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से MA के छात्र सौरभ द्विवेदी।
3: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है, तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ, उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे, जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, 2-3 लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही, तो उसमें हम उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है, जिसको पढ़ने में समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
1: सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे स्वयं पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जो नए विद्यार्थी से जुड़ना चाहे या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकते हैं?
3: जो स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा, उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है,

0: उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉग इन का। यदि आप पहले से सॉम पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉग इन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है जो कॉन्सेप्ट है हम उसे क्लियर कर सकते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
0: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिया हूँ, मुझे पढ़ना है, मैं तुरंत अपने फोन में लॉग इन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉग इन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है, हम कहीं भी कभी भी पढ़ देते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
1: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
0: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी है इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि हम ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई वजन हो रहा है, हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हूँ, हम जितने ज्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
2: श्रोताओं, पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़े और अपने सपनों को पंख दे। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र हरवार और प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति, योगदान आकाशवाणी छतरपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: मीडियम विपर्य आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: दोनों को ये एक साथ डस जाएगी।
1: अभी आपने सुना आनंद बख्शी की शब्द रचना को बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में। सुर था किशोर कुमार का, फिल्म थी पतिता।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर के आप सुन रहे थे फिल्म सौतन का गीत। गीत सावन कुमार का था, संगीत उषा खन्ना का था, आवाज थी किशोर कुमार की।

0: अभी आपने सुना फिल्म कामचोर का एक गीत। गीत इंदीवर का था, संगीत दिया था राजेश रोशन ने, आवाज थी किशोर कुमार की। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा

0: नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट

0: फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी।

0: on the archival inputs of All India Radio.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज.

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना राधा।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन, स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान।

0: से बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। मैं तेरे को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
3: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
2: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
3: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
2: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह

0: मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है,

0: एक्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत राम चंद्र।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ, आकाशवाणी और दूरदर्शन के

सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

0: बांसुरी।
1: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

संस्कृति के उपकरण बदल गए, बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You were listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिन्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ निन्नू कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर पुयर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सुरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकटरमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकटरमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में

0: 3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम एफ 444 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। कल अपनी प्रातःकालीन सभा में सुबह 5:57 पर इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए।